0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं।

0: Class 32 as one of best third place teams. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त सुबह के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक लाकर दीनदयाल ने पूरे अजमेर में खलबली मचा दी थी। हेडमास्टर के द्वारा यह सूचना महाराजा सीकर तक भी पहुंची। हेडमास्टर महाराजा के पास जाकर बोले, महाराज, हमारे ही स्कूल का एक लड़का बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आया है। यह सुनकर महाराज बोले, अच्छा, क्या नाम है विद्यार्थी का? हेडमास्टर बोले, दीनदयाल। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद हेडमास्टर बोले, महाराज, दीनदयाल ने बोर्ड की परीक्षा में इतने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कि आज तक किसी भी विद्यार्थी ने इतने अंक नहीं पाए हैं। हेडमास्टर की बात सुनकर महाराजा बोले, यदि ऐसा है तो वो बालक निश्चय ही पुरस्कार का हकदार है। उस बालक को हमारे पास भेजिएगा, हम उसे पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे ताकि आगे चलकर वो पूरे भारत देश का नाम रोशन करे। खबर पाते ही दीनदयाल महाराजा सीकर से मिले और उन्हें प्रणाम किया। दीनदयाल के संस्कार देखकर महाराजा बहुत खुश हुए। वो उससे बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और क्या करते हैं? दीनदयाल चुप रहा और रुआंसा होकर बोला, महाराज, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे मेरे मामा मामी पढ़ा रहे हैं, अब वो ही मेरे माता पिता हैं। दीनदयाल का जवाब सुनकर महाराजा बोले, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा प्रबंध कर दूं कि तुम्हें किसी वस्तु की कमी ना हो। यह सुनकर दीनदयाल बोले, महाराज, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस जवाब से तो महाराजा बहुत ही खुश हो गए। इसके बाद वो दीनदयाल से बोले, बेटा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, तुम्हें 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति उस समय तक दी जाएगी जब तक तुम अध्ययन करोगे। इसके बाद महाराजा ने उन्हें एक स्वर्ण पदक और प्रारंभ के प्रवेश और पुस्तक आदि के खर्चे के लिए 250 रुपए दिए। इस प्रकार दीनदयाल जी को 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, एक अजमेर बोर्ड की ओर से और दूसरा महाराजा साहब की ओर से। दीनदयाल पुरस्कारों को पाकर बेहद खुश हुए और वो अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगे, और इस मेहनत का रंग आज तक भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान करता रहा है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। सुबह के 6:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस बालकांड भाग 99।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बाल कांड भाग 99। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप

0: व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग आप सभी को।

और आप सभी हैं अपनी दोस्त कुसुम के साथ। और जिन मीटर्स पर आप हमें सुन रहे हैं वो है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और गीतों भरी गुड मॉर्निंग शुरू करते हैं हम इस गीत के साथ जो इसे गाया है सोनू निगम ने।

वाकई आप सा कोई भी नहीं, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके जैसा कोई भी नहीं। और देखिए ना, आपके संदेश का है हमें इंतज़ार, और जिस ईमेल आईडी पर हमें संदेश आप हमसे साझा करेंगे, अपना भेजा हुआ संदेश भेज जिसमें आप कहेंगे अपनी ढेर सारी दिल की बातें, उसके लिए हम आपको बता दें अपना ईमेल आईडी, वो है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com। और भाई आज है शनिवार की सुबह, जी हाँ कल होगी रविवार की सुबह, और ये जो 2 दिन होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी ज़िंदगी में। जितनी भी वर्किंग क्लास हैं या घर में रहने वाले हैं, सभी का एक कुछ नया अंदाज़ होता है इन दोनों दिन की सुबह में, क्योंकि एक दिन वो होता है जिसके अगले दिन हमें काम से थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, या हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि हम आज काम ना करें। और वो संडे कुछ ऐसा है कि सभी इस दिन को चाहते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई इस दिन आराम करने का मन होता है, कहीं घूमने का मन होता है, कुछ दिल की बातें कहने का मन होता है ना, या फिर अकेले ही ग्रीनरी के बीच, जी हाँ जहाँ हरा भरा वातावरण हो वहाँ घूमने का मन होता है। और कई हमारे लिसनर हैं जिनका सिर्फ गाना सुनने का मन होता है। तो देखिए भाई, सुबह सुबह हमें संदेश मिला गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और कहते हैं आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, कृपया हमें कोई भी सदाबहार नगमा सुनवा दें। जी हम तो आपके साथ हैं ही, फिलहाल आपके साथ है आपकी दोस्त कुसुम। संदेश भेजिए, कीजिए अपने दिल की बात, क्या किया आज सुबह उठकर आपने, जी हाँ सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम और उसके बाद दूसरा काम बताइए ना, जल्दी से ईमेल कीजिए, और ईमेल आईडी है ip radio delhi@gmail.com। तब तक सुनते हैं ये गाना।

वाकई हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें आसमान छू ले। जी हाँ, यदि अपने काम में कामयाबी का ना पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत दुखदायी होता है, इसलिए हर इंसान आसमान छूना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है। देखिए ना, हम भी सुबह सुबह कामयाब करना चाहते हैं अपने इस कार्यक्रम को कि आपके संदेश आएं और हम आपकी बातें शेयर करें अपने बाकी लिसनर्स के साथ कि क्या किया आपने सुबह उठकर। लेकिन आप जो हैं संदेश शायद भेज रहे हैं लेकिन रास्ते में होंगे। हमें जो संदेश मिला वो दिग्दर्शन गौर जी का था और सुरेश मालोदी जी ने भी संदेश भेजा हमें। अनिल कुमार गवानकर जी का भी संदेश हमें मिला। और देखिए ना, ipradiodelhi@gmail.com है हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत, गुड मॉर्निंग भरी। जी हाँ, गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

लिसनर कितनी बात मानते हैं और इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग कर दी है आप सभी ने मेरी। क्या कहते हैं मंटू शर्मा जी, कहते हैं सुबह उठकर क्या करते हो भाई, कहते हैं आपको मेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। मैं सुबह उठकर रेडियो को याद करता हूँ जी, सुबह सुबह देश दुनिया की खबर मिलती है, आपकी प्यार भरी बातें सुनते हैं, कुछ रोचक जानकारियां देते हो जी, सुबह सुबह ये सॉन्ग अच्छा रहेगा जी। वाह क्या बात है। और कहते हैं हमको ये मधुर गीत सुना दो, ये छोटी बहू का एक गीत सुनना चाहते हैं और इनका नाम है मंटू शर्मा, गांव शेरडा, तहसील भादरा, भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हैं ये। अगला संदेश मिला है सुनील कुमार जी का, कहते हैं हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मेरी इंतहा ए निगारिश यही है, हर अकीदत मंद की दुआ कबूल फरमाना, इस गरीब की सिफारिश यही है। क्या बात है। सुनील कुमार गुन, सुचिता नैनीश संगरूर पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने संदेश भेजा, इसे कहते हैं कामयाब होना। जी हाँ, मेरे प्रोग्राम को भी कामयाबी मिली, मुझे भी संदेश मिला कि मैंने पूछा आप सुबह उठकर क्या करते हो, देखा बता दिया ना। अब हमारा काम है कि मंटू शर्मा जी की पसंद का गीत सुनाए, फिल्म छोटी बहू से कुमार सानू के स्वर में, लीजिए सुनते हैं।

बिल्कुल, जो अपना लगे उसे अपना बना लो और अपना बनाते चलिए, सबको खुशियाँ बांटते चलिए और सबसे प्यार से बात करते चलिए। और गुड मॉर्निंग, ये है हमारी गीतों भरी, और इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग का आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। और इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त को।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आपके साथ रही आपकी दोस्त कुसुम। इजाजत दीजिए, नमस्कार, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पड़ाव में, जिसमें हम सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। लेकिन भूलिएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रमों के साथ और आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। फ्रीक्वेंसी वही, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 10-10 पर रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लेकर आपके पास आएंगी हमारी दोस्त दीक्षा। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
4: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े

0: आने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल

किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ

0: मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion यूरोग्वे क्रैश आउट ऑफ फीफा।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी

0: में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में दो बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और 2 तरफा तावुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक ख़ास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वजीर आजम के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4,000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है जिसकी वजह से ज़्यादा माली फ़ायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। ये सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं और ये सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वज़रा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर ओहदेदार और माहिरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ

0: अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निज़ाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुज़ाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के अवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगे मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीजे का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी मुआहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने ज़ैली हिमालयी मगरी बंगाल सिक्किम आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा साहिली आंध्र प्रदेश साहिली कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरला माहे

0: और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के FIH प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमेरिका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजीर खारजा जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और NCB की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वज़ीर आज़म के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक हानि करता है बल्कि अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। नशे के प्रभाव से बच्चे, बुजुर्ग और युवा कोई भी अछूते नहीं हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष 26 जून को नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत,

0: इस विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
1: श्रोताओं, हर वर्ष 26 जून नशीले पदार्थों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और ये 7 दिसंबर 1987 को यूएन जनरल असेंबली में डिसाइड किया गया था। इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर निमेश देसाई, जो कि पूर्व डायरेक्टर है इभास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, बहुत ही जाने माने मनोचिकित्सक हैं। हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम गोयल, जो कि डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत और सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सजीला मैनी, जो कि बहुत ही सीनियर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल। ये माना कि आज का सामाजिक जीवन भी विषमताओं से भरा हुआ है, प्रत्येक मानव मस्तिष्क नाना प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त है और ये कुंठाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाती हैं, कभी खुद को नशीले पदार्थों या धूम्रपान का सेवन कर या फिर किसी और के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करना। दोनों ही स्थितियां सामाजिक दृष्टि से भयावह हैं, आप मानते होंगे। इससे प्राय सभी सहमत है कि नशे का प्रारंभ किशोरावस्था में किया जाता है। आज के संदर्भ में स्कूलों विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राएं हों अथवा कार्यरत मजदूर या खिलाड़ी, धुएं के छल्ले सर्वत्र उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, शायद मानसिक तनाव, उदासी, चिंता, शायद कुछ वजह हो सकती है, और ये सब जानेंगे हम अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर निमेश देसाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि हर वर्ष ये जो 26 जून है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, तो जैसे हर वर्ष कोई ना कोई थीम दिया जाता है, तो क्या हम साल में एक दिन थीम देने से क्या हम इस समस्या पर कंट्रोल कर सकेंगे और इस थीम का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप बताएं।
2: मुझे लगता है सोचने लायक बात यह है कि जैसे आपने मुद्दा उठाया, क्या साल में एक दिन किसी थीम पे या किसी इश्यू पे चर्चा करके सामाजिक समस्याएं हल की जा सकती है? कतई नहीं। हमें किसी भी ऐसे महत्व के मुद्दे पे साल भर गौर करना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक का दिन ज्यादा और एम्फेसाइज हो जाता है, सबको याद हो जाए कि भैया ये मुद्दा भी मायने रखता है। जो रासायनिक पदार्थों के सेवन की बात है, सामाजिक रूप से सेवन पहला चरण है। कभी कभार कोई रासायनिक पदार्थ ले लिया जिससे थोड़ा नशा हो, थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, उसका नेक्स्ट लेवल होगा हैबिट हो जाए, आदत, और फिर तीसरा चरण होगा लत की बीमारी या व्यसन की बीमारी। तो यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो इलीगल ड्रग्स है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, यूएन का प्रोग्राम, इसलिए ऑफिशियली रहता है एम्फेसिस अवैध ड्रग्स पे। लेकिन अगर सामाजिक रूप से सोशली सोचें और पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जनस्वास्थ्य की तरफ से सोचें, तो हमें तंबाकू और शराब जैसे जो नशीले पदार्थ है उनको कतई हमारी दृष्टिकोण से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग लाइफ, जीवन बचाने वाली जो बात है, सच्चाई ये है कि जबकि अवैध पदार्थ से बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत ज्यादा हद तक बीमारियां होती है शराब और तंबाकू के सेवन से
1: जी।
2: तो अगर रासायनिक पदार्थ का बड़ा सा परिपेक्ष रखा जाए, तो एक वो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स, दूसरा है स्पेक्ट्रम ऑफ यूज फ्रॉम सोशल यूज टू एडिक्शन। तो करीब करीब पूरे समाज में काफी हद तक ये मुश्किल फैली हुई है। और संक्षेप में एक बात कर ले जो आदमी करेंगे शायद, लेकिन हम श्योर हमारे श्रोताओं को इंटरेस्ट रहेगा, नॉन केमिकल एडिक्शन से उसमें भी अब फोकस होने लगा है, मोबाइल टेक एडिक्शन।
1: डॉक्टर सजीला मैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सीनियर मनोवैज्ञानिक है। ये जानते हुए कि आज का यूथ भी ड्रग्स की तरफ लालायित है और सब ये मानते हैं कि भी किशोरावस्था में शुरू किया, ये मनोवैज्ञानिक एंगल इसका क्या है?
3: कोई भी इंसान जब शुरू करता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा, वो शुरू शौक शौक में करता है, उसको मजे मजे में करता है, उसको पता ही नहीं होता। वो उसको शुरू में पूछो कि तुम्हें आदत लग जाएगी, वो अगर एक दिन भी नहीं करता तो कहता मैं तो कहाँ करता हूँ, मैं तो पेरेंट्स होते तो नहीं करता, ये छुट्टी पे जाता हूँ, ये माँ बाप होते हैं तो कोई नहीं करता हूँ। तो उसको तब तक, जब तक उसको आदत उसके सर पे जड़ के बोलती नहीं है ना, तब तक वो मानता नहीं कि मुझे जो है का ग्रस्त मैं हो चुका हूँ। तो इसकी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे प्रिपरेशन स्टेज है, शुरू में उसके घर में देखता है किसी को अगर पेरेंटल स्मोकिंग है तो फिर शुरू में नफरत करेगा, पेरेंट्स मेरा स्मोक कर रहे हैं या कुछ कोई अल्कोहल ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे माँ बाप का आचरण होता है, धीरे धीरे बच्चा भी उसी चीज़ों में चला जाता है। और दूसरी चीज़ है पीयर प्रेशर, आजकल इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है कि लोगों को अगर वो इस चीज़ का सेवन ना करें तो ग्रुप के बाहर हो जाते हैं, आप समझिए ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं, एक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे

0: पे आजकल आता है सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है यूथ, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है डोंट केयर एटीट्यूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप जो बोले बोले या जो करें उसको फर्क नहीं पड़ता। और आजकल ये भी देखा गया है जो कैनबिस है वो इतना कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर, और एज ऑफ अपटेक आपकी रेगुलरली डिक्रीज होती जाती होती जाती। तो बेसिकली क्या है, इंसान शुरू होता है धीरे धीरे करके उसको हैबिट लगती है, फिर उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है वो, ठीक है। कोपिंग मतलब वो एक टिपिकल एक बंदा जो स्मोक करता है उसका देखिएगा, उसकी दिन की शुरुआत जो है वो सिगरेट से शुरू होती है और दिन का खात्मा सिगरेट से होता है। तो अगर 20 बार ले रहा है तो 20 बार दिन में वो सिगरेट पी रहा है, वो खुश है तो पीता है, दुखी है तो पीता है, काम बहुत है तो पीता है, काम नहीं है खाली बैठा हूँ टाइम पास कैसे करूँ तो पीता है, टॉयलेट जाना है तो पीना है, खाना खाना है तो पीना है, चाय पीनी है तो पीना है, हर चीज़ के साथ एसोसिएटिव इफेक्ट है वो इंसान को मार देता है। और कभी भी कोई भी नशा जब भी कोई स्ट्रेस होता है उसमें ज़्यादा बढ़ता है।
1: The reasons for starting are psychological and social, कौतूहल, पीयर प्रेशर, बाकी सामाजिक मुद्दे। जो एंड स्टेज है, सेकंड हाफ है, आदत या लत की बीमारी, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बायोलॉजिकल होता है। वो जो एडिक्शन का प्रोसेस ब्रेन में हो गया, उस रासायनिक पदार्थ ने ब्रेन के कुछ हिस्सों पे ऐसा असर शुरू कर दिया कि अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो पदार्थ नहीं लिया तो तकलीफ होगी। हाँ। तो हमें चाहिए कि सामाजिक रूप से ये समझ ले कि जो लत की बीमारी के शिकार है उनको चाहिए इलाज और सहानुभूति।
2: जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनुपम गोयल। आप जैसा डॉक्टर सजीला भी कह रही हैं और डॉक्टर निमेश भी कह रहे हैं कि मेनली ज़्यादातर हम अगर बहुत ज़्यादा इलिसिट ड्रग्स की ना भी बात करें, शुरुआत में जो है स्मोकिंग से शुरुआत होती है, अल्कोहल से शुरुआत होती है, चाहे वो सामाजिक इशू पे है, पीयर प्रेशर के ऊपर है, और ये दोनों के केसेस रिलेटेड आपके पास निश्चित रूप से आते हैं क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट डिजीज और अल्कोहल रिलेटेड हार्ट डिजीज। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, आप क्या समझ, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं या बिल्कुल नहीं?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके डेफिनेटली बहुत साइड इफेक्ट हैं, शौक में शुरू होते हैं, एडिक्शन बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्मोकिंग से शुरू करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ब्लड थिक होता है, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन आता है, यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं। आपको ख्याल होगा 20-25 साल पहले कोई यंग लड़का अगर चेस्ट पेन से आए, यंग क्या 40 साल से भी छोटा, तो हम लोग सोचेंगे हार्ट का तो नहीं होगा, गैस होगी, मस्कुलर पेन होगा। बट जहां स्मोकिंग का नाम आ गया, पता लग गया कि ये स्मोकिंग करते हैं, अब वो स्मोकिंग आप नॉर्मल टबैको कह लें, वीड कह लें, कैनबिस कहें, तो उन सब से ब्लड थिक होके हार्ट अटैक का रिस्क 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और ये सब नॉर्मल हेल्दी आर्टरीज हैं जिनमें सडनली हार्ट अटैक की वजह से क्लॉट बन जाता है और पेशेंट का हार्ट डैमेज हो जाता है। सो ये सचमुच में रियलिटी है। और बहुत एक अच्छी बात पता लगी लेडीज, जब भी जैसे आपने बात छेड़ी, हम सब में साइड इफेक्ट है स्मोकिंग के, अल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी, क्लॉट बनने की टेंडेंसी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली लेडीज में ये इफेक्ट और भी प्रोनाउंस्ड होते हैं। जैसे जेंट्स में मान लो 2-3 times रिस्क बढ़ गया हार्ट अटैक होने का स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर, अनफॉर्चुनेटली यंग गर्ल्स में ये रिस्क 4-5 times हो जाता है। तो हमें इस होड़ से बाहर निकलना होगा। इट्स नॉट कूल टू स्मोक। स्मोकिंग के डेफिनेट साइड इफेक्ट है कैंसर, तो पूरी दुनिया सब जानती है, हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, हाथ पांव की नसें कमजोर होके बहुत बार एम्पुटेशन की जरूरत पड़ जाती है, स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक हो जाते हैं। ये सब चीजें बहुत रियल हैं और हर रोज होती हैं। तो जिसको भी लगता है कि मैं तो वैसे ही पी रहा हूँ, मैं कभी भी छोड़ दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल की वेट मत कीजिए, आप अभी से छोड़ दीजिए। आप जितना देर लगाएंगे छोड़ने में, आपके लिए छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे अभी अभी हमारी बात हुई, क्योंकि ये ब्रेन के बायोलॉजिकल सेंटर को अफेक्ट करता है, फिर वो जरूरत बन जाती है।
2: जी अनुपम जी, जैसा आप कह रही हैं कि स्मोकिंग के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, यंग एज में लड़कियों में भी, लेडीज में भी काफी ज्यादा केसेस देखने जा रहे हैं, तो क्या इसका हार्ट के अलावा ब्रेन पर ऐसा कहीं कोई असर आता है?
3: जैसे अभी बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया, ये शुरुआत शौक से होती है, फिर एडिक्शन हो जाती है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन के एक सेंटर को इसकी आदत पड़ गई। अब अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको कोचता रहेगा, तो वो स्टेज आने से पहले ही हम रुक जाएं तो वो आसान है, हालांकि रुकना तो हर स्टेज पे ही होगा। और वेपिंग कहें ठीक है, कम नुकसान है, पर नुकसान तो है। जो स्मोकिंग करते हुए वेपिंग पे आ जाएं, चले कुछ बेटर स्टेज पे हुए, पर जो नहीं करता वो वेपिंग करने लगे ये सोच के कि इसके नुकसान नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि नुकसान तो है। और ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क है, हाथ और पांव की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, हार्ट की मसल्स वीक होके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं
2: जी। निमेश जी, कौन कौन सी दवाइयां ज्यादा देखी जाती हैं, मतलब इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की बात?

0: कर रहे हैं।
1: चाय, कॉफी, कैफीन, तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू वाला पान मसाला, इसको हम भूले नहीं, शराब, सारे फॉर्म्स, अब आए अवैध दवाओं पे। हमारे समाज में प्रणालीगत रूप से कैनाबिस और अफीम ओपियोइड का सेवन रहा है, अगर हम गौर करें बहुत सारे प्रांतों में। अब 20वीं और 21वीं सदी में आ गए ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसका असर दिमाग पे और ज्यादा तीव्र होता है। तो जो अफीम गाँव में कस्बों में इस्तेमाल होता था या कैनाबिस भांग यूज होती थी, उसके मुकाबले अब पदार्थ और ज्यादा तीव्र हो गए, ये समस्या है। और बहुत सारी जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है उनमें और बहुत सारी दवाइयां, पार्टी ड्रग्स, एमडीएमए और एलएसडी और वो चलती हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर ज्यादातर जनता की बात करें तो ओपियोइड्स, जैसे आपने कहा, सारी अफीम से लेके हेरोइन, स्मैक और कैनाबिस के सारे प्रोडक्ट्स। एक मुद्दा मैं यहाँ डॉक्टर साहब ये भी टेबल पे लाना चाहूंगा, जो बहुत सारी नींद की दवाइयां है और गलत फहमी है, मानसिक रोग के लिए जो दी जाती है वो दवाइयां एडिक्टिव अब नहीं रही है, लेकिन जो नींद की दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयों का मिसयूज भी होता है, या पेन किलर जो है, मॉर्फिन का सारा ओपियोइड का ग्रुप में आ गया और बेंजोडाइजेपिन्स। तो संक्षेप में सलाह ये भी कर दी है कि जो दवाइयां ब्रेन पे असर करती है उसको खुद ब खुद या केमिस्ट से पूछ के लेना न शुरू करें, न जारी रखें, डॉक्टर से सलाह करके करें।
0: जी अनुपम जी और सजीला जी, दोनों से मैं आपसे इस विषय पर जानकारी जानना चाहूँगा। ये जो नींद की दवाइयाँ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और हर के साथ पेशेंट आके कहता था मुझे नींद नहीं आ रही, वो दवाइयाँ अगर एक हफ्ते या 15 दिन महीने के लिए लिखी जाए वो सालों साल चलती है, और सालों साल चलते, तो क्या कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान हो सकता है या होगा, एडिक्शन है वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी उसकी नींद की दवाइयाँ, उस पर आप क्या कहेंगे?
2: कार्डियोलॉजिस्ट नींद की दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते,
0: नहीं
2: करते, क्योंकि हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मरीज को नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारी बात क्या होता है, मरीज लेटा, उसका सांस फूला, उसको उठ के बैठना पड़ता है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं सो पा रहा है। सेकेंड, किसी पेशेंट को स्नोरिंग है, वो सोते हुए स्नोर कर रहा है, तो उसके जो गले में सांस लेने वाली नसें हैं वो सिकुड़ गई, तो उसके उठ के बैठना पड़ता है। तो ये सब हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की कोशिश ये होती है कि हम नींद ना आने की वजह ढूंढें, अगर कोई ऑर्गेनिक वजह है तो वो ठीक की जाए, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को सीपैप लगाया जाए, जिसको फेलियर में है उसको डायूरेटिक दे के उनकी लंग्स को क्लीन किया जाए। ऐसे ही सोने का एक एनवायरनमेंट होता है, अगर हम अपने रूम में टीवी लगा के रखेंगे एंड 10-11 बजे तक चाय कॉफ़ी पियेंगे तो नींद नहीं आ पाएगी। तो सबसे जरूरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नींद की दवाइयां शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप सबसे आसपास देखिए कि किस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है।
0: आप क्या कहेंगे? जैसा हम भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे?
3: अल्कोहल की जब भी कोई मेडिकेशन अक्सर शुरू होती है तो सेडेटिव उसका इम्पैक्ट होता है, वहां से शुरू, तो लोग अल्कोहल तो छोड़ते नहीं है, ठीक है, वो अलग लग जाती है उनको। और जो जो सेडेशन की जो हैबिट है, ये हैबिट फॉर्मिंग है, पहले एक गोली से असर होगा, फिर दो से वही सेम असर होगा, असर वही रहता है, ठीक है, फिर चार से असर होगा, फिर आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 60 गोली और 100 गोली दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 100 गोलियां कंज्यूम करते हैं और फिर भी आराम से जाग रहे हैं, उनको नींद की गोली से असर, नींद नहीं आ रही है, उनको अपनी नॉर्मल होने के लिए ये नींद की गोली की सेवन की जरूरत है। इस तरह के ये सेडेटिव एक तरह से नशा बन गया है उनका।
0: डॉक्टर अनुपम जी, जैसा सजीला जी कह रही है कि इतनी ज्यादा एडिक्शन है, और एडिक्शन में आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो सोशल फैक्टर है वो है एल्कोहल का, तो शराब का आप क्या समझते हैं? वो तो साइड इफेक्ट है, चले अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर, लेकिन तो आप क्या समझते हैं कि अल्कोहल का क्या कुछ हार्ट पर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो लगे कि भाई निश्चित रूप से अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, या पिए तो कितना?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्कोहल हर लिहाज से बुरा है, फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, फाइनेंसिस के लिए, उसके लिवर के लिए और हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा। अल्कोहल से कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट फेलियर कर जाता है, हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है, या तो लीवर फेल होगा या हार्ट फेल होगा। हार्ट की वजह से बहुत सारे विटामिन्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। हार्ट डिजीज का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है अल्कोहल से। और जैसे अभी आपने कहा, जब अल्कोहल पीने बैठते हैं तो बहुत कॉमन है कि साथ में स्मोकिंग होगा या साथ में कुछ और भी गलत चीज़ चीज ली जाएगी तो वो इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है।
3: मैम आपसे हम एक चीज जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैम, कि लोग ये बोलते हैं, हमें आके बोलते हैं सब, कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं दो ड्रिंक सेफ है, ठीक है, ये दो ड्रिंक का क्या हिसाब है, क्योंकि दो ड्रिंक हमारी 60 ml की भी हो सकती है, 120 ml की भी हो सकती है।
1: चूंकि सामाजिक रूप से सदियों से शराब का सेवन चला आ रहा है, मेडिकल एसोसिएशन ने मैक्स लिमिट फिक्स कर दी कि भी अगर सेवन हो रहा है परिवार में समाज में तो इसे ज्यादा ना करें। इसका ये कतई नहीं हो सकता कि जहां शराब का सेवन है नहीं वहां शुरू किया जाए। तो हम उन समाजों की बात करें जहां अपर लिमिट फिक्स की गई कि अगर परिवार में है, तो अक्सर ये होता है पब्लिक हेल्थ में और यंग ग्रुप्स में कि भाई सेफ लिमिट है तो दो तक ले सकते हो।
2: कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कहेगा कि अल्कोहल लीजिए वो सेफ है, ये आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलना शुरू कर लिया है। जो भी हमारे पास आए हैं जितना लिटरेचर है, अल्कोहल चाहे कम हो चाहे ज्यादा नुकसान करता है। हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लेना चाहे हफ्ते में 2 pack 30 ml पर आवर अल्कोहल से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ये बात बिल्कुल सच है। पहले था कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ जाता है रेड वाइन से, वो आप खजूर खा लीजिए, आप साथ में अंगूर खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। रेगुलर वॉक कर लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। आप उसके लिए एक और एडिक्शन को मत पालिए।
1: सी जो सेफ्टी की बात हो, एक तो डॉक्टर मैनी जैसे कह रही है वो अमेरिका में यूरोप में कर दिया, दूसरा जो डॉक्टर अनुपम कह रही ना वो गाइडलाइंस बनी थी खासकर ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि वाहन चलाने की जो सेफ्टी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इतने ज्यादा 1 या 2 घंटे में हो जिससे आपका मोटर कोऑर्डिनेशन बैठे। उस आधे घंटे की एक शाम की जो गाइडलाइन है उसको जीवन में लागू करने की गलती ना करें।
3: बिल्कुल
0: जी। तो अब हम इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा किसी पोर्ट पे पकड़ी जा रही है 80 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है, कहीं 100 करोड़ की पकड़ी जा रही है। अच्छा, कोकेन के बारे में मैं बताऊं, इवन खिलाड़ियों में भी देखा जाता है, तो आप क्या कहना चाहिए कोकेन कैनाबेस और ये इतने ज्यादा इसका प्रचलन क्यों होता जा रहा है? और उनमें भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोकेन का भी साइड इफेक्ट है, क्या हार्ट रेट बढ़ाता है, क्या नुकसान करेगा? पहले निमेश जी आप बताएं।
1: बहुत ब्रीफली, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो है स्टेरॉइड से लेके और सारी, वो एक मुद्दा है
0: जी, वो अलग इशू
1: है। उसका जो ढांचा है कंट्रोल का वो भी अलग रहेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के तहत। खुले समाज में वहां पे जैसे आप कह रहे हो जो इलीगल मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट्स पुश करेंगी, तो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का काम रहेगा किसी एक एरिया में थानेदार, दिल्ली बंबई शहर में कमिश्नर या किसी राज्य में डायरेक्टर जनरल ये तय करे कि जी मैं अपने एरिया में ड्रग्स बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये हुआ लॉ एनफोर्समेंट, कानून का अमलीकरण। एक गलतफहमी ये भी हो जाती है कि जी सरकार इसको परमिट कर दो फिर हम यो ओवर क्यों ना लें, तो ये गलतफहमी भी ना हो दे, और वो हो सबलीकरण से, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से जो किक चाहिए, जो एक्साइटमेंट चाहिए, वो तो वैध है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन उसके अरासायनिक तरीके ढूंढे जाए। स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, जो भी हो, अलग अलग व्यक्ति के लिए। बिल्कुल
0: डॉक्टर अनुपम जी, ये जो कोकेन है इसके बारे में बड़ा ज्यादा है, कहते हैं बहुत ज्यादा एडिक्टिंग है, साइड इफेक्ट और हार्ट की रेट बढ़ा देता है, हार्ट पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है, क्या कहना चाहेंगे?
2: हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम कोकेन को परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग कहते हैं। कोकेन लेने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देयर वुड बी सिंपैथेटिक ड्राइव, अगर मोटे शब्दों में बोलें तो ये ड्रग हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाते हैं, जो फाइट और फ्राइट वाली टेंडेंसी है, हार्ट रेट दौड़ने लगेगा, एरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट पे जोर बहुत आ जाता है। लॉन्ग टाइम यूज करने से हार्ट की मसल्स थिक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट वुड कम एज अ सरप्राइज, बट इट इज अ परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग। तो जो लोग भी ड्रग ये ले रहे हैं, मेरी उनसे या किसी को भी आप गाइड करना चाहें तो बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये ना सोचें कि पूरी दुनिया लेती है, हार्ट अटैक इज अ वेरी रियलिटी विद दीज ड्रग्स। जो इनफेक्ट जो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स या कोई भी एडिक्ट्स हैं जो एडमिट होते हैं, हमारे पास हमारे यहाँ से बहुत डाटा नहीं है, बट अमेरिका में हार्ट अटैक होने से 4th time इज द नीड फॉर एडमिशन। एक तो इन लोगों में साइकोसिस हो गया, थोड़ा हेल्यूसिनेशन हो गई, उसके बाद बाद हार्ट अटैक इज द मोस्ट कॉमन अकरेंस जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट्स को हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके इल इफेक्ट उनको बताएं, समझाएं, ताकि वो समझ सके कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, इसको लाइटली नहीं ले सकते।
0: तो कहने का मतलब है कि एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, जहां तक
3: लेना ही नहीं चाहिए, एक बार भी लेना नहीं चाहिए।
0: एक बार एडिक्शन की बात अगर हम कहते हैं तो सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, इवन कई अस्पतालों में, पुलिस स्टेशंस में भी डी एडिक्शन क्लिनिक्स खुले हुए हैं। आप भी गंगाराम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डी एडिक्शन सेंटर्स चलते हैं, टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स चलते हैं।

0: तो इनका क्या रोल है, इनका क्या महत्व है और क्या रोल है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? इस समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? एक बंदे की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? पेरेंट्स की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या
1: देखो
0: सिर्फ
1: पेरेंट्स की
0: सारी जिम्मेदारी
1: जिम्मेदारी है,
0: सरकार की है?
1: पेरेंट्स की
0: किसकी
1: जिम्मेदारी है।
0: जिम्मेदारी है?
2: देखिए, एक एक एक ढांचा तो स्वास्थ्य की समस्याओं का ये है, अगर हम गौर करें कि बदनसीबी से हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक, अस्पताल तक तभी जाते हैं जब बीमारी हो जाए, तो यही यहाँ लागू होता है। व्यसन की जो बीमारी है, ये बड़ी कड़वी और बदनसीबी की सच्चाई है कि व्यक्ति विशेष या परिवार या मित्रगण अंतिम चरण में शायद व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी नहीं सफल होते। अगर अगर लत आदत बनने लगे तभी से इलाज या कुछ काउंसलिंग शुरू कराइए। अगर लत की बीमारी हो गई तो जरूर इलाज करवाइए, जल्दी से करवाइए। और अगर थोड़े समझाने से, थोड़ी जबरदस्ती से, थोड़ा कानून की मदद लेके, पुलिस की मदद लेके उस व्यक्ति को इलाज के लिए जाना पड़े तो वो करिए। ये तो हुआ ट्रीटमेंट। और दूसरा मुद्दा, शायद हम बात करें शायद समझ ना रहे, सामाजिक रूप से लोग उस सीमा तक ना पहुंचे, प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे हो बड़े स्तर पे समाज में, लेकिन सेविंग लाइफ वाला वो रहेगा खास ट्रीटमेंट।
0: फैमिली का या समाज का क्या दायित्व है कि इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके?
1: जैसे कि अभी सर ने बोला था, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हुआ ट्रीटमेंट, दूसरा हुआ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बहुत लंबे स्तर पे होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर जिस तरह से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट घुसाया है, उस तरह से एक हेल्दी लिविंग का कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन ड्रग्स ऑल्सो, इन रिलेशनशिप ऑल्सो, जो लोग वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो वो प्रिवेंशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। जैसे अभी ये डिस्कस हुआ, क्या होता है जो हमने देखा अपने पेशेंट्स के अंदर, कई बारी जो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों से माँ बाप डरते हैं, आप समझिए ये डर नहीं होना चाहिए, बच्चों से डरते, बच्चा क्या करता है जो ड्रग लेता है वो ऐसे करके हाथ दीवार पे मार देगा, डरते हैं अरे कुछ करना ले, ठीक है सो करने दो, ऊंचा बोलेगा, चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा, उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कहीं आपको देखे कुछ करता हुआ, नशा करता हुआ, तो उसी समय पुट योर फुट डाउन, बोले कि आपको ये करना है, ट्रीटमेंट लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ पूरा ऑप्शन दीजिए उसको, और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट सेंटर में ला के उसको पूरा छुड़वा दिया जाए।
0: तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नशीले दवाएं, नशीले पदार्थ आपके जीवन में अंधकार फैला देंगे और आपके स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई, आपकी इनकम, आपकी रेपुटेशन और पारिवारिक रिश्तों पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव डालेंगे, और इनसे इन्फेक्शस डिजीज जैसे एड्स, HIV वगैरह तक भी लग सकते हैं, और आप धीरे धीरे उदासी का शिकार हो जाते हैं, उदास जुर्म की दुनिया में भी प्रवेश कर जाते हैं और क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें, परिवार की सपोर्ट एवं मेडिकल हेल्प या काउंसलिंग की निश्चित रूप से ज़रूरत है, सहायता लें उनकी। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर निमेश देसाई, डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर सजीला मैनी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: थैंक यू भाई।
3: युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
4: दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है और काफ़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी कई जगहों पे आ रही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि देखा गया है कि अगर लू लग जाती है किसी को और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो ऐसे में इसकी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इनफैक्ट 50-70% डेथ रेट इसमें होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद अपना बचाव करना है कि 12 से 4 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी धूप पड़ती है, या तो ऐसे समय में नहीं निकलें या अपना जो भी काम है उससे पहले कर लें, बाद में कर लें, और अगर निकलना भी है तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप निकलें। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कैप लेके निकल सकते हैं, छतरी लेके निकल सकते हैं, पानी, तरल पदार्थ आप जरूर रखें बॉटल में, चाहे वो ठंडाई हो, ORS हो, या फिर आपने नींबू पानी का घोल बना लिया हो, या इस तरह की कोई भी जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको आप लेके चलेंगे और बीच बीच में सेवन करते रहें उसको, ताकि आपको ये जो लू लगने की समस्या ना आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कपड़े जो पहनते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, जो बिल्कुल टाइट फिटिंग सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो ना पहने, और कॉटन वाले जो हल्के रंग के, जो वाइट या उसके हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, ताकि जो इवेपोरेशन है, जो बॉडी को कूलिंग होती है या बॉडी का जो हवा लगनी है वो भी लगते रहे। सिंथेटिक कपड़ों में हवा बॉडी को नहीं लगती है और इवेपोरेशन भी नहीं होता है, ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं लू लगने के। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या आती है, आपको हीट क्रैम्स आते हैं या मूर्छित वाली ऐसी स्थिति या वॉमिटिंग, नोजिया या उल्टियां आने ना, दस्त आ जाना, तो इससे डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। या फिर लक्षण भी अगर जैसे मान लो गफलियत में कोई जा रहा है या फिर दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल में जाना अनिवार्य हो जाता है ताकि

0: जानकारी से और समय पे सही निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।
1: अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में सुनिए ये वार्ता, महासागर संसाधनों से बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता। आलेख डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता, विज्ञान लेखक और संचारक, और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कृषि, उद्योग, स्टार्टअप या डिजिटल तकनीक की तस्वीर उभर आती है। लेकिन एक ऐसा विशाल संसाधन है जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी कई बार हमारी सोच से बाहर रह जाता है। महासागर के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। सदियों तक हम इनके महत्व को नहीं समझ पाए या पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। भारत का समुद्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम भूमिका निभाता है। भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र केवल पानी का विस्तार नहीं, बल्कि संभावनाओं का अथाह भंडार है, जिसमें जैविक, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की भरमार है। महासागर संसाधनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में, जैविक संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन में बांटा जा सकता है। जैविक संसाधन की बात करें तो वो पोषण और रोजगार के आधार हैं। जैविक संसाधनों में मछलियाँ, झींगे, केकड़े, समुद्री शैवाल, सीवीड और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा

0: मछली उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत है, जो विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मत्स्य पालन केवल भोजन का साधन नहीं बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत भी है। देश में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाल के वर्षों में एक्वाकल्चर यानी कृत्रिम मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिला है, जिससे उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। समुद्री शैवाल यानी सीवीड की अधिक खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों, कॉस्मेटिक्स और जैव ईंधन के निर्माण में किया जाता है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ये आय का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके सफल प्रयोग देखे जा रहे हैं। खनिज संसाधन भविष्य की औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं। असल में महासागर की गहराइयों में कई प्रकार के बहुमूल्य खनिज छुपे हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं। ये समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले छोटे छोटे गोलाकार पत्थर होते हैं, जिनमें निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैगनीज जैसी धातुएं पाई जाती हैं। ये धातुएं आधुनिक तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वर्तमान समय में भारत इन धातुओं के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन महासागर संसाधनों के दोहन से इस निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसी दिशा में भारत सरकार ने गहरे समुद्र मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्र की गहराइयों में मौजूद संसाधनों का अध्ययन, अन्वेषण और सतत उपयोग किया जा रहा है। इस मिशन का महत्वपूर्ण पहलू मानव युक्त सबमर्सिबल मत्स्य 6000 है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक 6000 मीटर की गहराई तक जाकर शोध कर सकेंगे। मत्स्य 6000 भारत के गहरे समुद्र मिशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी घटक है, जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों में मानव युक्त अनुसंधान को संभव बनाना है। ये एक अत्याधुनिक मानव युक्त सबमर्सिबल है, जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये समुद्र की लगभग 6000 मीटर गहराई तक सुरक्षित रूप से जा सके। इतनी गहराई पर अत्यधिक दाब, कम तापमान और पूर्ण अंधकार जैसी चुनौतियां होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। मत्स्य 6000 में 3 वैज्ञानिकों की बैठने की क्षमता होगी, जो विशेष रूप से बनाए गए दाब यानी कि रोधी टाइटेनियम से बने गोलाकार केबिन में बैठकर समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करेंगे। इस सबमर्सिबल में अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे, रोबोटिक आर्म और सैंपल कलेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वैज्ञानिक समुद्र तल से खनिज, जैविक नमूने और अन्य महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित कर सकेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जैसे बहुमूल्य खनिजों का अध्ययन करना है, जिनमें निकल, कोबाल्ट और तांबा जैसी धातुएं होती हैं। ये धातुएं आधुनिक उद्योगों, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मत्स्य 6000 समुद्री जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन से जुड़े पहलुओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहल भारत को गहरे समुद्र अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री अनुसंधान और संसाधन प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा। अब सुनिए एक और वार्ता, नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण और विकास। वार्ताकार हैं इंदु शेखर शुक्ल, विज्ञान शिक्षक।
1: नवीकरणीय ऊर्जा को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में सल्फर का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफी कम करता है। नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि वे कभी भी समाप्त नहीं होते, या कह सकते हैं कि उनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस और कोयला जैसे ऊर्जा के स्रोतों को सीमित संसाधन माना जाता है, और इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा अन्य परंपरागत विकल्पों की अपेक्षा एक बेहतर और सस्ता स्रोत है, जैसे जैसे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, नए और स्थायी रोजगारों का भी निर्माण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई नए रोजगारों का सृजन हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिए जाने से दुनिया के कई देशों में इसका काफी बढ़ चढ़कर प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफी स्थिरता आई है। कई अध्ययनों में ये सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है, और सरकारें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर जो भी निवेश करती हैं उसका स्पष्ट प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में देखने को मिलता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस कार्बन और सल्फर आदि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण भी काफी महंगी प्रक्रिया हो गई, जिसके कारण उनकी कीमतों पर काफी असर पड़ा है। जीवाश्म ईंधन का परिवहन काफी जोखिमपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके रिसाव से गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग में भी काफी ज्यादा योगदान देते हैं। आइए समझते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति। स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की कतार में शामिल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए विकसित भारत 2047 विजन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से राष्ट्र को $30 trillion की विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जानते हैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइड्रोजन के विकास के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का वैश्विक लक्ष्य रखा है, जो भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करेगा। आइए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख पहलुओं को समझते हैं। सौर पैनलों या पवन टर्बाइनों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने में मदद करता है। सरकार साइट अर्थात स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे रही है। आइए सुनते हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जो वर्ष 2014 में मात्र 3 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 129 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन शामिल है। सौर ऊर्जा अब भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, तथा भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उच्च सौर विकिरण तथा भूमि की उपलब्धता के कारण पश्चिमी तथा उत्तरी राज्य सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु शीर्ष सौर उत्पादक राज्यों में शामिल हैं, जिनमें राजस्थान की सौर क्षमता अत्यधिक है तथा वहां निरंतर विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। रूफटॉप सोलर का प्रसार भी पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं से प्रोत्साहित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लगभग 24 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए हैं। साथ ही पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों को ग्रिड कनेक्शन के साथ एकीकृत किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की बढ़ती चुनौती के बीच भारत जल निकायों तथा कृषि भूमि पर सौर पैनलों की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जैसी परियोजनाएं इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ये प्रणालियां जल वाष्पीकरण को कम करती हैं तथा जल के प्राकृतिक शीतलन प्रभाव के कारण पैनलों की दक्षता में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा द्वि उपयोग भूमि नीति के तहत सौर पैनलों को इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है कि उनके नीचे फसल उत्पादन संभव रहे। इससे किसानों को खाद्य उत्पादन से समझौता किए बिना विद्युत विक्रय के रूप में आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है। आइए परिचित होते हैं पवन ऊर्जा के विकास क्षेत्र में। भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार हो रहा है, जो वर्ष 2025 के मध्य तक 51 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है। इसकी शुरुआत एक टरबाइन से होती है, जिसे हवा चलने पर घुमाया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। आधुनिक पवन टरबाइन हल्की हवाओं को भी बिजली में बदलने में अत्यंत कुशल है। बिजली उत्पादन के दौरान ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। यदि हम ऊर्जा के लिए कम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं और उसकी जगह पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का एक और लाभ ये है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ये हवा से प्राप्त होती है, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और कभी समाप्त नहीं होता। पवन ऊर्जा का दोहन आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, न केवल इसलिए कि इसका उत्पादन सस्ता है, ये एक स्थानीय संसाधन पर निर्भर करता है और स्थानीय रोजगार सृजित करता है। पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 30% की वृद्धि हुई है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के लिए ग्रिड आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं भूतापीय ऊर्जा को। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक ऊष्मा ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग खाना पकाने, नहाने, कमरे को गर्म करने, बिजली उत्पादन और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधनों के दहन से बिल्कुल अलग है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में तेजी से आकर्षक बन रही है। समझते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से देश का विकास। जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। विद्युत शक्ति के जनन की विधियों में जल विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का एक तिहाई भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। न केवल गिरते हुए जल में निहित ऊर्जा का उपयोग शक्ति जनन के लिए किया जा सकता है, वरन बहते हुए पानी में भी निहित गतिज ऊर्जा का उपयोग भी शक्ति जनन के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना होता है जहां बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जा सके और उसमें निहित शक्ति को विद्युत शक्ति के जनन के लिए जल को आवश्यकता अनुसार नलों अथवा खुली नहर के द्वारा बिजली घरों में प्रयुक्त किया जा सके। उपयुक्त स्थान की तलाश के लिए वर्षा तथा जमीन दोनों का अध्ययन करना होता है। बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां न्यूनतम मूल्य में बना बांध अधिकतम पानी जमा कर सके। बात करते हैं आधुनिक समय में बायो एनर्जी की। बायो एनर्जी ऑर्गेनिक पदार्थ से मिलती है, जिसे बायोमास कहा जाता है, जैसे लकड़ी, खेती के अवशेष, गोबर और ऑर्गेनिक कचरा। इसे पारंपरिक उपयोग में सीधे जलाना शामिल था, जबकि आधुनिक बायो एनर्जी प्रोसेस्ड बायोमास को और उन्नत रूपांतरण तकनीकों पर निर्भर करती है। आधुनिक रूपों में बायोगैस, बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायोमास पैलेट्स के फॉर्म में शामिल है, जो स्वच्छ और अधिक कुशल है। ये तकनीकें फसल के अवशेषों को खुले में जलाने और बिना मैनेज किए कचरे के निपटान को कम करने में भी मदद करती है। बायोमास का उपयोग नवीकरणीय बिजली, ऊष्मीय ऊर्जा या परिवहन ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
0: और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं और आप सुनिए कार्यक्रम, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: आप सादगी पसंद इंसान सन, वो हमेशा सादे लिबास ही पाउंदे सन, पर उन्हां ने अपने दरबारियां नूं सुंदर ते कीमती पोशाक पहन के आउण लई इजाजत दित्ती हुई सी। वो आप सूरमिया वांग कमर कस्सा सजाउंदे सन। वो अपने आप नूं महाराजा घट ते अपनी प्रजा दा सेवादार ज़्यादा समझदे सन। वो जानदे सन कि किसी भी राज दी असल ताकत उसकी फौज दे नाल नाल प्रजा भी हुंदी है। इसलिए वो लोकां दी भलाई नूं अपनी जिम्मेवारी समझदे सन अते अपनी प्रजा दी जरूरतां ते खुशी नूं जानण लई वो कई वार भेस बदल के भी घूमदे सन। एक वार जदों राज विच अकाल पै गया तां महाराजा ने खजाने खोल दित्ते कि प्रजा आके लै जावे, तां उत्थे एक बुजुर्ग दादा ते निक्का पोतरा लैण आए, पर बुजुर्ग होण कारण उसदे कोलों पंड चुकी ना गई। तां महाराजा रणजीत सिंह आप चेहरा ढक के उन्हां दी पंड चुक के उहदे घर छड के आए। बुजुर्ग दे पुछण ते उन्हां ने दस्सिया कि ओह महाराजा रणजीत सिंह ही हन। इउं कई वार शेरे पंजाब ने आम जनता दी मदद कीती। मददगार होण दे नाल नाल ओह सुभाअ पक्खों दयालू भी बहुत सन। एक वार दी गल है, जदों जंगलां विच्चों लंघ रहे सन तां उन्हां ने उत्थे कुछ बच्चियां दी टोली वेखी जिहड़ी बेरी तों पत्थर मार के बेर तोड़ रही सी। महाराजा रणजीत सिंह बच्चियां नूं वेखण लई रुक गए ते अचानक एक पत्थर आके महाराजा दे वज्जिया ते उन्हां दे मत्थे तों लहू वहिण लग पिया। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन नाल संबंधित अजिहियां कई कथावां सानू इतिहास विचों मिलदियां हन। महाराजा रणजीत सिंह वर्गा धर्म निरपक्ष राज अज तक कोई नहीं कर पाया, इसे लई अज तक उन्हां दे समय वाला पंजाब मुड़ नहीं बन सकिया। उन्हां दा जीवन नौजवानां लई एक प्रेरणा स्रोत है। वह पंजाब की धरती ते जम्मिया अजिहा पुत है जिस दी वीरता दी गाथा सारे संसार विच सुनाईयां जांदियां हन। सानू उनां दी जित्तां दे नाल नाल उनां दे आदर्शां नूं भी याद रखना चाहीदा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब दी रूह शान अते गौरव दा प्रतीक हन।
1: वार्ता तुसी सुन रहे सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह विषय ते वार्ताकार सन डॉक्टर गुरप्रीत कौर। अज अंतरराष्ट्रीय कौमांतरी सूखम लघु ते दरम्याने उद्योग दिहाड़ा मनाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति रोजगार तो विहुणा ना होवे ते किसी नूं भी बेरोजगारी का सामना ना करना पवे, इसलिए अज दी नौजवान पीढ़ी डिजिटल युग च हर पासे मल्ला मार रही है, नवीआं नवीआं काढ़ां कढ़ रही है ते उन्हां दे हुनर ते कला नूं सरकार भी पछाणदी होई अपने रोजगार सिरजण दे मौके दे रही है। नवे ते छोटे पद्धर ते उद्योग लगाउण दे लई जिवें मशीनां डिजिटल साधन प्रदान करन लई सरकार दे वल्लों कई योजनावां चलाईयां गईयां ने। इन्हां योजनावां तों लाहा लैंदे होए नौजवान पीढ़ी जां कोई उद्यमी छोटे पद्धर ते अपना काम शुरू कर सकदा है। नौजवानां दे सिर ते जदों काम करन दा जनून सवार होवे तां फिर उह कुछ वी कर गुजरदे ने, भावें उह काम करन दा जज्बा होवे जां फिर प्यार मुहब्बत दी गल, फिर तां इंसान नूं कुछ सुझदा नहीं। ते गायक गुरदास मान अपने सुफियाना कलाम च इश्क हकीकी दी गल करदे हुए नजर आ रहे ने। ते आओ फिर सुनदे आं नी मैं कमली यार दी कमली।

बाबा बुल्ले शाह दी काफी तुसी सुन रहे सी ते गायक सन सुरेंद्र कौर। आस है कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होवेगा। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नू इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के

0: गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement ahead of his 3-day visit to Seychelles, Mr. Modi said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared diplomatic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in this program. Secretary, Department of Atomic Energy, Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle, utilizing the nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalapakkam. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a productive roundtable interaction with the Asia House and senior executives from leading global firms in London. During the meeting, discussions on strengthening economic ties and exploring future opportunities were deliberated. In a social media post, Mr. Goyal said that India and the United Kingdom are poised to deepen their economic partnership through the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction even more severe. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran overnight. Meanwhile, Iran's state news agency reported that Islamic Revolutionary Guard Corps Navy has announced that it had targeted U.S. military positions in the region in retaliation for American airstrikes against Iranian coastal areas. In the FIFA World Cup 2026, two-time world champion Uruguay knocked out of tournament after losing 1-0 to Spain in the final Group H clash at Guadalajara Stadium in Mexico this morning. In the another Group H fixture, tournament debutants Cabo Verde advanced to the round of 32 after a goalless draw with Saudi Arabia at Houston Stadium in United States. And that is the end of this news bulletin.
4: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। जी हाँ, समय हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और वो भी आपकी पसंद। जी हाँ, आपकी पसंद के इस फिल्म संगीत में हम लेकर आएंगे एक से बढ़कर एक चुनिंदा गीत आपकी ही पसंद के, और आप हमें संदेश भेजिए कि आज सुबह उठकर आपने क्या किया। सबसे पहले क्या किया आपने? आपने ईश्वर को नमन किया, धरती माता को नमन किया, आपने अपने बड़ों को नमन किया, और उसके बाद आपने क्या किया? ये है मेरा आज का एक टास्क जो आपको पूरा करना है, और इसका जवाब आपको देना है ipradiodelhi@gmail.com पर। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com पर। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं, कल है संडे तो कल आपके क्या प्लानिंग है, घूमने की, ट्री प्लांटेशन की, या फिर आप कहीं अच्छा सा एक लंच करना चाहते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई गेट टुगेदर है, या फिर आपने क्या सोचा है। चलिए बात करेंगे, एक बार फिर से बता दूँ, ipradiodelhi@gmail.com पर आप हमसे अपने संदेश को साझा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ और फिर लेंगे आपके संदेश, लेकिन एक संदेश हमारी तरफ से आपको, लीजिए सुनते हैं।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी हाँ, सावन की झड़ी की बात करें तो हमारे पास संदेशों की झड़ी लग चुकी है। और संदेशों की झड़ी में पहला जो संदेश मिला ठीक 10:10 पर, वो मिला हमें अनारकली बाजार जगराओं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह का, इन्होंने सुनना चाहा है एक बहुत ही प्यारा सा गीत। कोशिश करेंगे कि हम आपको सुनवा पाएं। और जो अगला संदेश मिला इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत छाबड़ा जी का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। रविंद्र सिंह छाबड़ा जी ने एक बार फिर से हमें संदेश भेजा, लिखते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। क्या बात है, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया, मेहरबानी। मेहरबानी कैसी, आपकी पसंद का आपका अपना कार्यक्रम है। संजय ढींगिया जी संदेश भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, साथ में है नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। और अगला संदेश मिला है यासीन अनजान जी का, कहते हैं प्रसारक जी को मेरा प्यार भरा आदाब। पहली बात, प्रसारक जी नहीं है, कुसुम जी हैं आज आपके साथ। जी हैं, कुसुम लता जी। और इन्होंने संदेश भेजा है दादा बाबू रोड गिरडा झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। हिरमानी वर्मा जी का संदेश मिला, दतरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा।

वर्मा, नौखिलाल वर्मा, और इन्होंने भी एक गीत सुनना चाहा है। नरेंद्र शर्मा जी का संदेश हमें मिला है, जेटली जी हैं ये, नरेंद्र शर्मा जेटली पूरा नाम है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, इन सभी ने संदेश भेजा। फागुराम यादव जी संदेश भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तनुजा जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, किसी भी गीत में शामिल करें ऐसा कहते हैं। अकरम हुसैन जी कहते हैं मैं इंतजार में हूँ, धन्यवाद। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज कहते हैं हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। क्या बात है। सतीश अनेजा जी संदेश भेज रहे हैं, नमस्कार जी, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे, जिंदगी पर चुप इसलिए हैं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, वाकई ऐसा होता है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी के साथ है बिमल अनेजा। और गव्या मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं, इनका हमने सबसे पहले संदेश ले लिया है। अनवर साबरी जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है शन्नो, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ जी हैं इनके साथ। और नितेश देवांगन जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करे, कर लिया जी। अब्बासी जी संदेश भेज रहे हैं, और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी के साथ है निगहत प्रवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। कौशल्या देवांगन जी के साथ हैं रोशन लाल देवांगन जी, हेमलता डिंपल देवांगन जी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं बहुत ही एक प्यारा सा गीत। मांगेराम जी संदेश भेज रहे हैं, ठीक है हम संदेश की जो झड़ी है फिर से एक बार इसको कोशिश करेंगे पढ़ने की, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

वाकई जिंदगी एक बहुत ही सुहाना सफर है। और देखिए, इस सफर में मेरे साथ जुड़ चुके हैं रमेश चौहान जी। कहते हैं इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है, और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान के साथ है मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। बहुत ही सुंदर नाम है सभी के। और ये हीरावन शिंदे जी का हम संदेश ले चुके हैं। वैसे तो किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी और सिद्धार्थ जी ने हमें संदेश भेजा। गगनदीप थांदी जी हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं। नवा शहर पंजाब से तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। अभी मांगे राम जी संदेश भेज रहे हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से। सतौड़, मांगे राम सतौड़, रितु सिंह, नमस्कार नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करता जी, कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमारी ईमेल शामिल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया कि सुबह उठकर उन्होंने क्या किया और कल का क्या प्रोग्राम है ना। ईमेल आईडी फिर से बता देती हूँ, iprradiodelhi@gmail.com। और आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम लता। जी हाँ, कुसुम दो हैं, मैं हूँ कुसुम लता। किशोर जी ने संदेश भेजा है, हिवराले जी हैं ये, किशोर हिवराले जी पूरा नाम है, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, कल्याण मुंबई से संदेश भेज रहे हैं। और ये भी एक गीत सुनना चाहते हैं। सतीश अनेजा जी का संदेश ले चुके हैं, और एक और संदेश मिला पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि, श्रीमती शीतल, कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। ये अकरम हुसैन प्रिंस का संदेश ले चुके हैं। और इसके बाद हमें जो संदेश मिला धर्मेंद्र छिपा जी का है, भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार कहते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप, बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं। क्या बात है, धन्यवाद आपका। स्वर्ण सिंह जी संदेश भेज रहे हैं, और इनका भी हम संदेश ले चुके हैं, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से, फिरोजपुर पंजाब से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल, अविराज सिंह, और भी संदेश लेते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। रोशन देवांगन जी ने भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेजा। आज हम सुबह उठ के सबसे पहले ऊपर वाले को प्रणाम किए, फिर 85 मित्रों को गुड मॉर्निंग भेजा और आपके लिए भगवान जी से प्रार्थना की कि हमारे चहेते कुसुमलता जी को हमेशा स्वस्थ रखें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश मिला रमेश चौहान जी का और कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें। इनका संदेश हम पहले ले चुके हैं और इसके अलावा हमें जो संदेश मिला वो है, बहुत सारे संदेश आ चुके हैं और हमें ढूंढने में कि पहला हमारा संदेश कहीं खो ना जाए और कोई रह ना जाए, इसी चक्कर में हम इधर उधर जब करते हैं अपने माउस को कंप्यूटर के तो वो आपका संदेश ऊपर नीचे हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, कमल मरावी जी का संदेश मिला लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से। कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ कहते हैं नमस्ते जी, अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। जी आपकी पसंद का कार्यक्रम है और आपकी पसंद के गीत भी चल रहे हैं, जो भी लिसनर्स कह रहे हैं हम कोशिश

करते हैं सुनवा पाए। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने संदेश भेजा। इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। कौशल्या देवांगन जी ने एक बार फिर से संदेश भेजा और बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हैं हेमलता, डिंपल देवांगन और रोशन देवांगन। और मसरूर हसन जी ने संदेश भेजा आपको, प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। कहते हैं एनी सॉन्ग, क्या बात है। राजकुमार डूडी जी संदेश भेज रहे हैं गांव फरासी हिसार से। प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी हैं इनके साथ। दिनेश वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। दिनेश वर्मा जी और करुणा वर्मा जी हैं। पूनम गगनेजा जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं राम राम जी, प्लीज प्ले एनी सॉन्ग जलालाबाद वेस्ट से। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित्त। लीजिए सुनते हैं आप सभी में से किसी एक की पसंद पर ये गीत।

देखिए, जब हमारे लिसनर हमें जवाब देते हैं तो हम रोक नहीं पाते और गाने को सोचते हैं कि सुनवा देंगे फिर, लेकिन हम पहले संदेश शामिल करें। अब्बासी जी ने संदेश भेजा है, कल हम दिल्ली घूमने आ रहे हैं, बहुत मस्ती करेंगे, आपके पास भी समय हो तो आकाशवाणी भी आ जाएंगे आपसे मिलने। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदेश का, जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे किया, आपने जवाब दिया। उत्तम कुमार भगत जी ने भी संदेश भेजा है, श्वेता भगत हैं, किसु तासु अर्णव।

आनंद सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, और ये उत्तम कुमार भगत ने संदेश भेजा पांखुड़ झारखंड से। क्या बात है, बहुत सारे लिसनर्स हैं हमारे कि संदेश भेजते रहते हैं, और एक बार नहीं कई कई बार संदेश हमें मिल जाता है कई लिसनर्स का। तो और नासिर शेख जी का संदेश मिला फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, इनके साथ है नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद, सबीहा मिखाइल, जैनब मुजावर। धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। राजेश वर्मा जी हैं, कहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, कहते हैं धन्यवाद जी। सरफुद्दीन अंसारी जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें, बक्सर बिहार से हैं, और फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू जी इनके साथ, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। सरफुद्दीन अंसारी जी का संदेश तो हमने अभी अभी लिया, और रविंदर सिंह छाबड़ा जी का भी संदेश लिया, इन्होंने जवाब दिया है, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं ये रविंदर सिंह छाबड़ा जी। सुबह की पहली किरण के साथ आंख खुली, मन में नई उम्मीदें जागी, दिन की शुरुआत मुस्कान, कृतज्ञता, सकारात्मक विचारों के साथ की ताकि पूरा दिन ऊर्जा और खुशियों से भर जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता संदेश भेज रहे हैं। रोजी डे कैस्ट्रो संदेश भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, इनके साथ हैं जॉन डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो और विलिस डी कैस्ट्रो। किसी भी गीत में शामिल कर लेना, आपका तहे दिल से शुक्रिया। भाई शुक्रिया कैसा, आपका अपना कार्यक्रम है। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी संदेश भेज रहे हैं। निसार अली कहते हैं आरजे जी आपको प्यार भरा आदाब, प्लीज किसी भी गीत में शामिल करें। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका हर दिन खुशियों वाला हो। धन्यवाद जी। नीटू मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू और भाविक, इन सभी ने हमें संदेश भेजा। रजक मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान, इन सभी ने संदेश भेजा हनुमानगढ़ राजस्थान से, प्यार भरा नमस्कार कहते हैं। धन्यवाद जी। राजेश सेन संदेश भेज रहे हैं, सुबह सबसे पहले उठकर माता पिता की फोटो को प्रणाम किया, फिर नहा धोकर मंदिर की ओर गए, और फिर भगवान के दर्शन किए और काम पर निकल गए। बहुत अच्छी बात है, देखिए आपने कितना अच्छा, मतलब बारी बारी से एक एक काम अपने पूरा किया, और वो भी सुबह सुबह। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, अशोक पटेल, मनोज हिरवे, इन सभी ने संदेश भेजा। सुनते हैं गीत और फिर लेते हैं आगे के संदेश।

आप धीरे धीरे गीत भी सुनिए और साथ में हम संदेश भी पढ़े देते हैं ताकि हमारे किसी भी लिसनर का संदेश छूट ना जाए। भूषण खेरा फजिलका पंजाब, भूषण खेरा जी के साथ हैं विशाल खेरा, विष्णु खेरा और ये शाहनी तिविशानी खेरा, वानी खेरा सभी परिवार के सदस्य हैं। मल्होत्रा मोहाली से संदेश भेज रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से, मोहाली पंजाब से ये संदेश भेज रहे हैं। सरफुद्दीन अंसारी जी कहते हैं मैं तो सुबह उठकर उस खुदा को याद कर लेता हूँ जिसने जहाँ को बनाया। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। सत्येंद्र चंसौले जी कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें। इनके साथ हैं आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से संदेश भेज रहे हैं। और देखिए बसंत कुमार सिन्हा जी संदेश भेज रहे हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। इनके साथ हैं रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्ही मुन्ने, अन्विका, तनुश्री और भूषण खेरा जी का हमने संदेश लिया, चंसौलिया जी का भी ले लिया है संदेश। संदीप मक्कर जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं सबसे पहले उठकर उससे भगवान का शुक्रिया किया, शुक्र है भगवान का दो वक्त की रोटी दे रहा है इज्जत की। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरेया, जालंधर से। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा संदेश है। जयराम सिंघणकर जी संत पोफाली, जिला यवतमाल से संदेश भेज रहे हैं। दिशांत कुमार सिंघणकर और अर्पिता जी हैं इनके साथ। गुलाब दास मानिकपुरी से संदेश भेज रहे हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से। इनके साथ है राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, कहते हैं हम रोज सुबह उठकर सबसे पहले गाय माता को प्रणाम करते हैं उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। क्या बात है। नाने लम से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी, नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें। जी बिल्कुल। और अब्बासी जी ने संदेश एक बार फिर से भेजा, सुभाष योगी जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है सुशील योगी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। और हम देखें तो दीपेश वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं, ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें। तुलसी मस्किन जी कहते हैं होस्ट मैडम जी को सुबह की नमस्ते। भाई ये होस्ट मैडम जी का नाम है कुसुमलता। जी हाँ मस्किन जी, आप तो आवाज़ से ही पहचान गए होंगे। कहते हैं फिल्म एक जो है सावन की झड़ी, अभी सावन आया नहीं है, कोई बात नहीं, गाना है पसंद आया, कोशिश करते हैं कि जब हम दुआ करेंगे तो सावन भी जल्दी आएगा और वर्षा भी जल्दी आएगी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा से संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। क्या बात है। हिमकेश्वर साहू जी संदेश भेज रहे हैं, साथ में है करण, राहुल साहू, चंपा साहू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लालगिरी जी का हमें संदेश मिला, कहते हैं पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें किसी भी सॉन्ग में शामिल करें। इनके साथ हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। राघव बघेल जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़। संदीप मक्कर जी का संदेश लिया, रवि कुमार राहुल जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं इनके साथ है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। रवि कुमार राहुल जी के साथ रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द राहुल। और पीएस नावकर जी का संदेश मिला, इन नलेश्वर नगर नरवेल जिला बुलढाणा से पीएस नावकर, निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से, सोपान ताड़े, नारायण इंगले और आशीष मुहेरकर। बोधराज खोरवाल जी कह रहे हैं कल रविवार है, काफी दिन हो गए हैं अपने भाई से मिले, कल मैं

ऐसे मिलने जाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है मिलना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनों से मिलते रहना चाहिए भाई। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी के साथ है कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। प्रकाश गोगिया जी कहते हैं, नमस्कार जी, हमारा कल का एक विशेष कार्यक्रम तो नहीं है, हाँ यदि आप अच्छा सा नाश्ता कराए तो हम आपके स्टूडियो में आ जाते हैं, यदि आप कनॉट प्लेस और जंतर मंतर चिड़ियाघर घुमाने ले जाए तो हम आपके स्टूडियो में बिल्कुल आएंगे। कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं है, हम हैं आकाशवाणी के पुराने श्रोता प्रकाश चंद्र गोगिया, मनोहर लाल गांधी, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, सत्य प्रकाश गोयल, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मेहर अरोड़ा जी संदेश भेज रहे हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। मेहर अरोड़ा जी के साथ हैं ममता कीर्ति भूमिका। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और ज्ञान भूषण जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं, नमस्कार, मैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, मैं सुबह 4:30 बजे उठा, सर्वप्रथम हाथ जोड़कर दोनों हथेलियों को रगड़ा, अपनी आंखों पर रखा, ऐसा मैंने 5 बार किया, तत्पश्चात गर्म पानी पिया और मेरे घर के पास अटल पार्क है जिसमें 1 घंटा योगा करके आया। क्या बात है, बहुत ही अच्छा किया आपने, वाकई दिनचर्या एक सुबह उठकर अगर अच्छी शुरू हो जाती है तो सारा दिन अच्छा होता है। अनिल मोहन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। धन्यवाद आप सभी का। और देवशंकर तामुरिया जी का भी संदेश मिल चुका है, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें, इनके साथ है अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। कोशिश रहती है कि किसी का संदेश रह ना जाए। राधेश्याम देवांगन जी भी जुड़ चुके हैं इंद्रनगर भावपुर से, राधेश्याम देवांगन जी के साथ है चंपा देवांगन, राजू नेहा और जगदीश देवांगन। प्रवीण रामपारा जी कहते हैं गांधीग्राम से, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोरी जी से संदेश भेजा है। सीताराम कांगड़ा जी भी जुड़ चुके हैं एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा जी के साथ है बबीता बौद्ध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बौद्ध। लीजिए सुनते हैं अब ये गीत।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान पूजा हमें संदेश भेज रहे हैं। आपकी पसंद आदरणीय मैडम जी नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। हम अभी ऋषिकेश में आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। क्या बात है, सामाजिक और धार्मिक यात्रा पर आपके कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और नाने लमसे जी कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें, ये हमने कर लिया। फिलहाल कोई संदेश नहीं बचा है तो छोड़े जाते हैं आपको इस आज के इस कार्यक्रम के आखिरी नगमे के साथ में, और ये भी है आप में से ही किसी की पसंद का। फिलहाल दीजिए अपनी दोस्त कुसुम को इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे वसुंधरा रतुरी का गाया राग मधुवंती।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे वसुंधरा रतुरी का गाया राग मधुवंती। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के

0: 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Rubio also said the relationship between Prime Minister Modi and President Donald Trump is very close, adding that it is important for diplomacy. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
2: और मैं हूँ मनीषा बोस। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे साथ आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं FM गोल्ड के साथ साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों और मनीषा तुम्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी अक्सर बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से आसान बनती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिन को बेहतर बनाती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमें अपने लक्ष्य के और भी करीब ले जाती हैं। कुछ नया पढ़ना, समय पर काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी आदत हमारा जीवन बदल सकती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का हमारा जो सवाल है इसी बात से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कि वो कौन सी आदत है जिससे आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान, बेहतर और खुशहाल बना दिया है। अपने विचार, अपने अनुभव, कहानियां हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। और ये भी हो सकता है, बताइए आप बोलिए।
1: और हो सकता है कि आपकी एक अच्छी आदत किसी और की जिंदगी को भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो इंतजार रहेगा आपके जवाब का। खत लिखिए, हम उसे जरूर पढ़ेंगे।

0: साथियों, ये गीत आप सुन रहे थे आए दिन बहार के फिल्म से, और गायिका थी आशा भोसले। और देखिए ये गीत जैसा था, खत लिख दे बाबू, और खत आ चुके हैं मंजुला जी के मुस्कान से पता चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपके सांवरिया ने भेजा या नहीं भेजा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास मेल आ गए हैं। तो ये लिखा है अंशु माला ने दिल्ली से, बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि मेरी एक छोटी सी आदत सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना, देखने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन एक छोटी सी आदत पूरे दिन का मूड और ऊर्जा तय करती है। दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित काम से होती है तो मन को हल्का और सकारात्मक भी रहता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी बात और लिखी है कि ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिला है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, एक विरासत में ऐसी आदत को अपने साथ लेकर चलना बहुत ही बड़ी खूबी है। और अगला जो संदेश है वो भी हमारे एक बहुत ही प्यारे श्रोता साथी का है, और उनका नाम है नवीन भाटिया जी, और ये हैं मोती नगर नई दिल्ली से, जिन्होंने लिखा है, जब से मैं एफएम गोल्ड पर जुड़ा हूँ तब से मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। यानी कि उनकी ये आदत जो है हमारे एफएम रेडियो से सुनने की, जुड़ने की, ये आदत उनको सबसे बेहतरीन बनाती है।
1: बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत विचार लगता है मनीषा कुछ बताने वाली है।
0: बिल्कुल मेरे पास है दोस्तों, क्योंकि आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने बताया कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी में आपको आपकी खूबी से मिलाती है। उसी तरह दिन की शुरुआत अगर हम किसी अच्छे विचार के साथ करते हैं तो दिन भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो होता है, जब वो अपने आज के आनंद को जीते हुए क्या कभी कल के बारे में सोचता है, कोई योजना बनाता है? सोचिएगा, किसी छोटे बच्चे को याद करके आप सोचिए कि जब वो किसी पानी से भरे तालाब को या पोखर को पार करता है, या कभी उस पोखर को जब वो देखता है पार करता है तो उसे समुद्र की तरह समझता है जब पार करता है। मतलब उसका जो ख्याल है अपने जीत के जश्न को मनाने का होता है, और वो इस तरह अपनी जीत को पाता जाता है, महसूस करता जाता है।
1: और याद कीजिए अपने बचपन के सभी उस क्षण को जो भरपूर आपने जिया था, पूरी तरह से वो उस पल में ही मिल जाया करता था, बिना किसी पूर्वाभास के, फिक्र और चिंता के बगैर, बीते हुए कल के बोझ या आने वाले कल की व्यग्रता के बगैर, क्योंकि वो वर्तमान के अलावा कहीं और होना जानता ही नहीं था। और हाँ, वो कला बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी सिद्धि थी जो हर पल को जीना जानती थी।
0: बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। और देखिए, बचपन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से जादू ही नहीं होता दोस्तों। दरअसल बचपन का जादू तो ध्यान की जो गुणवत्ता होती है उसमें छिपा होता है, यानी वो जब जहाँ होता है तब सिर्फ वहीं होता है ना। फिर बड़े होने के साथ हम अपने आप को, स्वयं को विभाजित करना सीख लेते हैं। हमारा एक हिस्सा कहीं और बैठा होता है और हम दूसरा हिस्सा कहीं और होता है। हम तन से कहीं और होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। तो यही बात जो होती है वो हमारे एहसास को बदलती जाती है।
1: और यकीन मानिए, एहसास की परतों को हटाते ही बचपन का जादू ठीक वहीं मिलेगा जहां हमने छोड़ा था उसे। और अभी इसलिए सोचिएगा जरूर कि आखिरी बार कब वास्तव में आप वहां गए थे और आप कहां हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त को फिल्म थी सुजाता।
1: और दोस्तों आज का दिन उद्यमिता की दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। और छोटे और मध्यम उद्योगों के वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान को सम्मान देने का ये दिन 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की शुरुआत की थी।
0: और दोस्तों उसी तरह 27 जून का वो दिन है जो हमें भारतीय इतिहास के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाता है। अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और समाजवेशी शासन के लिए प्रसिद्ध पंजाब के इस शेर को हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं।
1: और दोस्तों आज का दिन इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी, जिन्हें दो दशकों तक दौड़ के मैदान पर उनकी तेज गति के कारण पायोली एक्सप्रेस, उदन परी और गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा गया, जी हाँ आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोल्ली गांव में जन्मी पिलावुल्ला कंडी थेक्के परमपिल उषा यानी एथलीट पीटी उषा, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
0: और आज 27 जून की वो तारीख है दोस्तों जब हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार आरडी बर्मन, राहुल देव बर्मन जिन्हें प्यार से मंचमता भी कहते थे, उनकी भी जयंती है। भारतीय फिल्म संगीत को एक नई पहचान देने वाले रॉक, जैज और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बेहतरीन मिश्रण से संगीत जगत को सजाने वाले इस महान संगीतकार को आज हम नमन करते हैं।

0: दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे अभी फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। और हमेशा की तरह आज भी हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो है, आपकी कौन सी आदत में ऐसी है जो आपको सफल बनाती है, जिसके बारे में आपको हमें संदेश भेजना है fmgolji@gmail.com पर।
1: और मनीषा, इसी बीच एक मेल हमारे पास आ गया है रश्मि का गुरुग्राम से। वो लिखती है कि मेरी छोटी सी आदत है कि ऑनलाइन कुछ खरीदने के पहले 10 बार कार्ट में डालना और फिर बिना खरीदे बंद कर देना और फिर दावा करना कि वाकई क्या ये ज़रूरी है, फिर ये तय करना कि क्या ये ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें कार्ट में डालते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, वो बहुत प्यारा सा संदेश है, ये है राजेश्वर राव जी का। और इन्होंने कहा है कि इनकी एक आदत है कि ये जब भी अपनी कार में ड्राइविंग के दौरान बैठते हैं तो वो अपनी ग्लास रखते हैं। तो हमें अपने इस चैनल के माध्यम से ये सबको ज़रूर बताना चाहिए कि हमें प्लास्टिक जो ग्लास होती है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक के यूज़ से, उसके प्रयोग से बचना चाहिए, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध रख सकें, उसे साफ रख सकें। बहुत सुंदर संदेश आपका, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा राजेश्वर जी।
1: और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा, ये किसको पसंद नहीं होता। यात्रा केवल नए स्थान देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों, नए विचारों से जुड़ने का अवसर भी है। और जब यात्रा का आनंद किताबों से जुड़ जाए तो सफर और भी यादगार बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी हिंदी यात्रा वृत्तांत पुस्तकों के बारे में बताएंगे जिन्हें हर यात्रा प्रेमी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदी यात्रा जो है साहित्य की, उसमें महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांस्कृत्यान की पुस्तक मेरी लद्दाख यात्रा, इसके बारे में। ये पुस्तक जो है वो भौगोलिक सुंदरता, वहाँ के लोगों के जीवन और बौद्ध संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है उनके इस लेखन में। राहुल सांस्कृत्यान केवल स्थानों का वर्णन नहीं करते थे दोस्तों, बल्कि वो पाठक को उस वातावरण का हिस्सा बना देते थे। ये पुस्तक लद्दाख को अगर आप समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसकी सुंदर जो प्रस्तुति है उसका एक माध्यम है।
1: और अब बात करते हैं उमेश पंत की।

0: पुस्तक दूर दुर्गम दुरुस्त की। यह पुस्तक उन रास्तों की कहानी है जहां हर कोई नहीं पहुंचता। लेखक ने दूरस्थ और कम चर्चित स्थानों, जिसको कि आजकल हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अनरियल वाली जगहों की यात्राओं को संवेदनशीलता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक पढ़ते हुए महसूस होता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्तों को जीने का अनुभव है। और अगली पुस्तक है कच्छ कथा, जिसके लेखक है अभिषेक श्रीवास्तव। चलो मनीषा तुम बता दो।
1: बिल्कुल, इसका नाम आते ही ना मंजुला आंखों के सामने सफेद जो रंग होता है, लोक संस्कृति, रंग बिरंगे उत्सवों की छवि उभर आती है। ये पुस्तक कच्छ की मिट्टी, वहां के लोगों, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का ऐसा परिचय कराती है दोस्तों कि पाठक स्वयं को उस धरती पर महसूस करने लगता है। ये केवल यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक और खाद्य इतिहासकार पुष्पे पंत की पुस्तक नैनीताला नैनीताला की। इस पुस्तक में नैनीताल और उसके आसपास के पहाड़ी जीवन को बेहद आत्मीयता से चित्रित किया गया है। लेखक केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करते बल्कि वहां की संस्कृति, खान पान, लोगों और स्थानीय जीवन के विविध रंगों को भी सामने लाते हैं। यह पुस्तक पाठक को पहाड़ों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अक्सर कहा जाता है कुछ यात्राएं पैरों से पूरी होती हैं और कुछ किताबों से।
1: वाह, क्या बात कही मंजुला जी। और कुछ किताबों से पूरी होती है, यह आपने बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में किताबों से जुड़े रहने से हम अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये पुस्तकें केवल स्थानों की जानकारी नहीं देती हैं बल्कि उन जगहों की आत्मा से भी हमें परिचित कराती हैं। यदि आप यात्रा के शौकीन हैं दोस्तों, या भविष्य में किसी सफर की योजना बना रहे हैं, तो इन हिंदी पुस्तकों को अपनी पढ़ने की सूची में जरूर शामिल कीजिएगा।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म 12 o'clock से।
1: और साथियों, घर आंगन कार्यक्रम में आज की प्रश्नोत्तरी फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपने

0: अपना रेडियो अभी ट्यून किया है तो सुनिए वो प्रश्न है आज का कि आपकी कौन सी आदत है जिसने आपको सफल बनाया है। और पहला संदेश मेरे पास है जो है दीशिता सोइन का, जिन्होंने लिखा है कि हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना और सकारात्मक रहना मुझे स्ट्रेंथ देता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही।
1: और अनन्या श्रेष्ठा का भी एक मेल आ चुका है जो लिखती हैं कि मुझे जर्नलिंग करने का बहुत शौक है और बहुत ही फायदा हुआ इससे, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुई है, फोकस बढ़ गया है और यादों को जो संभाल कर रखने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देते रहते हैं, तो मंजुला जी के पिटारे में एक और जानकारी है, मैं चाहती हूँ आप बताओ, शुरुआत करो।
1: तो अब हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की पारंपरिक थाली और उसके महत्व के बारे में। तो मनीषा बिहार में जो ये है आर्द्रा नक्षत्र, जिसको साधारण भाषा में कई लोग आर्द्रा नक्षत्र भी बोलते हैं, उसकी विशेष सांस्कृतिक और कृषि महत्व है। पीढ़ियों से यहाँ इस नक्षत्र के दिन खीर पूरी, जो मौसमी सब्जी, रसीले आम और जामुन खाने की परंपरा चली आ रही है। और ये केवल एक भोजन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परिवारों को जोड़ने वाली एक सुंदर विरासत है।
0: बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, मुझे भी इसकी जानकारी है। और श्रोताओं, इसमें दाल भरी पूड़ी जो होती है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। वैसे ही खीर जो है वो शुभ अवसरों का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। और जो आम है फलों का राजा, ग्रीष्म ऋतु की मिठास और प्रकृति के उपहार का प्रतीक है और इसीलिए इस थाली में ये सब कुछ सजा होता है।
1: और मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम की मिठास, खीर पूरी का स्वाद, यही तो है बिहार की पहचान। और इस नक्षत्र के आगमन पर भगवान इंद्रदेव का स्मरण किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी वर्षा होती है जिससे खेतों में हरियाली और किसानों के जीवन में समृद्धि आती है।
0: हालांकि ये परंपरा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, लेकिन ऋतु परिवर्तन का स्वागत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और नई कृषि जो है उसके लिए ऋतु का आगमन उत्सव के समान होता है। और ये बिहार तक सीमित नहीं रहता, भारत के कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये परंपरा वर्षा ऋतु और कृषि चक्र के आरंभ का स्वागत करती है।
1: बिल्कुल, यही भारत की खूबसूरती है। परंपराएं भले अलग हो लेकिन प्रकृति का सम्मान, अन्नदाता के प्रति आदर और परिवार के साथ उत्सव मनाने की भावना पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तो आइए इस आर्द्रा नक्षत्र पर हम सब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोएं, किसानों के परिश्रम का सम्मान करें और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें।

0: पराया धन। इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा और किशोर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गया है, रमीशा जैन है दिल्ली से। वो लिखती हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आदत जिसने मेरे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों को परिवर्तित किया, तो मेरा उत्तर होगा कि वो आध्यात्मिक साधना और सनातन जीवन पद्धति को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाना। यही वो परिवर्तन है जिसने मुझे भीतर तक दृढ़ बनाया, मुझे संभाला और प्रत्येक कठिन क्षण को मेरे पथ को आलोकित किया।
0: बहुत सुंदर विचार आपने लिखा हुआ है। और मेरे पास हमारी एक नियमित श्रोता साथी हैं, उनका भी संदेश आ चुका है। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने लिखी है कि बिजली, पानी, पेट्रोलियम ऐसे जितने भी उत्पाद हैं और गैस का उपयोग

0: बहुत सोच समझ कर हम करते हैं, अन्न को भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और यही आदतें हमें हमारे जीवन में सफल बना रही हैं।
1: और एक और मेल है गौरी शंकर जी का कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बचपन की बातें अच्छी बुरी आज भी याद आती है, सुबह जब हम योग करते हैं तो विचारों में बदलाव जरूर आता है, विचार अच्छे ही आएंगे और काम करेंगे तो वो सही ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल करने के लिए।
0: और मंजुला जी, एक बहुत सुंदर सा संदेश है उत्तर प्रदेश भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता का। ये लिखते हैं कि हर दिन सुबह से रेडियो सुनते हुए अपनी दिनचर्या को हम पूरा करते हैं और गीत संगीत सुनकर सुकून पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और देखिए आपके सुकून को हम बरकरार रखें, यही हमारी कोशिश रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे अजरक प्रिंट की, एक ऐसी हस्तकला की जो अपनी सुंदरता, जटिलता और प्राचीन इतिहास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अजरक की परंपरा इतनी पुरानी है, इसकी जड़ें उन सभ्यताओं तक पहुंचती है जो मिस्र के पिरामिडों के समय में अस्तित्व में थी। कुछ इतिहास का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह की छपाई और ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, मुझे इसके बारे में एक जानकारी ये भी है मंजुला जी कि जो अजरक शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द अजरक से जुड़ा माना गया है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों नीला रंग। यही गहरा नीला रंग अजरक की सबसे बड़ी पहचान है, और भारत में ये कला मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में विकसित हुई। खत्री समुदाय के लोगों को आप जानते होंगे, उनके जो कारीगर हैं वो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। उनके लिए अजरक सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि विरासत और पहचान का प्रतीक भी है।
1: और अजरक प्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया, एक कपड़े को तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं, इसमें 14 से 16 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रंगों, लकड़ी के ब्लॉकों और पारंपरिक तकनीकों की मदद से हर डिजाइन को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है।
0: और नीले रंग के इंडिगो, लाल रंग के लिए मदार की जड़, पीले रंग के लिए अनार के छिलके, काले रंग के लिए लोहे के घोल का उपयोग किया जाता है। यही प्राकृतिक रंग अजरक को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाते हैं दोस्तों। अजरक की डिजाइनों में तारे, वृत्त, जालियां और अन्य ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। ये केवल सजावट नहीं है बल्कि प्रकृति, संतुलन और ब्रह्मांड के प्रति मानव के जुड़ाव को भी दिखलाती हैं।
1: बहुत ही खूबसूरती से तुमने बताया। और समय के साथ अजरक ने पारंपरिक परिधानों से निकलकर वैश्विक फैशन के जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज साड़ी, दुपट्टे, कुर्ते, जैकेट और आधुनिक परिधानों में भी अजरक की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अजरक केवल प्रिंट नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही कला, संस्कृति और शिल्पकारों की मेहनत की जीवित कहानी है, और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपरा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी हमारे जीवन को रंगों से भर रही है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म धर्मकांटा से।
1: और दोस्तों अब एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में हम सभी का जागरूक होना जरूरी है। बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो घरों की छत से ही रोशन कर रही है हमारे भविष्य को, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
0: और ऊर्जा की खपत को देखते हुए सरकार ने 2024 से शुरू इस योजना का लक्ष्य रखा है 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का, ताकि लोग खुद अपनी बिजली बना सकें और स्वावलंबन से जुड़ सकें।
1: क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली इस योजना से कार्बन उत्सर्जन को रोकने और देश को टिकाऊ विकास की ओर ले जाने का प्रयास है। और इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना है, यानी कम बिल और ज्यादा बचत।
0: और अगर आप इस स्कीम से जुड़ते हैं तो इसके लिए 78,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी और छत पर सोलर पैनल लगाना भी आसान हो जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक पीएम सूर्य पर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, फिर छत पर सोलर पैनल लगवाएं, फिजिबिलिटी जांच पूरी करें और सब्सिडी प्राप्त करें।
1: आवेदन के लिए आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और नवीनतम बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक, इसकी जरूरत पड़ेगी। हर घर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हर घर की छत जब बनेगी पावर स्टेशन तो एम्पावर होगा हर घर।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है दिल ने फिर याद किया। और इसी के साथ हम अपने आज के इस खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला और
1: मनीषा को इजाजत। लेकिन हम फिर मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से

0: In New Delhi, he said, in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The vice president noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high quality standards. US Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force. He said this hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a social media post, Mr. Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue and warned that violence would receive a military response. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi and in some parts of the northeast India. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साल 1973 की एक ऐसी फिल्म की जिसने प्रेम, त्याग और रिश्तों की जटिलताओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया। इस फिल्म का नाम है दाग। इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी नजर आए थे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगर हम संक्षेप में कहानी की बात करें, एक मिनट, कहानी की बात हम करते रहेंगे लेकिन शुरुआत हम करते हैं इस फिल्म के एक बहुत ही सुंदर गीत से।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग का ये बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, आप भी हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से कैसा लगता है। हमारे इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना आपके मन में जो बात है वो लिख सकते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी है सुनील की, जो प्रेम करता है सोनिया से। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे मृत समझ लिया जाता है। हालात के दबाव में वो दूसरी शादी भी कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसका पहला प्यार उसके जीवन में लौटता है, तो उसके सामने रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनाओं का कठिन संघर्ष खड़ा हो जाता है। यही द्वंद्व इस फिल्म को भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। और अगर हम इस फिल्म के किसी रोचक तथ्य की बात करें, तो ये फिल्म उस समय के लिए एक बहुत ही साहसिक विषय पर आधारित थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो विवाह जैसी संवेदनशील सामाजिक विषय को अत्यंत संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उस समय पर दो विवाह होना, दो शादियां होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, और इसको बड़े पर्दे पर दिखाना एक सच में बहुत ही साहसिक काम था। दर्शकों ने इसकी कहानी और अभिनय को खूब सराहा। तो इस फिल्म की हम बात करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और शानदार गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। तो अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये सदाबहार गीत हम और तुम और हम, किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में। इस गीत के शब्द लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, जिसे इस संगीत इसका संगीत दिया था इस फिल्म का। जो गीत लिखे थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने, जिसने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म दाग के लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। ये उनके शानदार अभिनय की एक और बड़ी उपलब्धि थी। तो इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
2: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म दाग की। यश चोपड़ा की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता श्रोताओं ये रही है कि वो रिश्तों की भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे। दाग भी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारी और त्याग को समान

महत्व दिया गया है। इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस फिल्म के गीत इतने शानदार हैं कि श्रोताओं ने ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है हमें मेल पर कि हम इस फिल्म के गीत भी बराबर सुनाते रहें। तो चलिए सुन लेते हैं एक और गीत जो कि लता जी ने गाया है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आप अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। ये फिल्म उस दौर की सफल फिल्मों में शामिल रही और इसकी सफलता ने यश चोपड़ा के स्वतंत्र निर्माता के रूप में करियर को एक नई उड़ान दी। इस फिल्म के गीतों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है। गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि पात्रों की भावनाओं को भी अभिव्यक्त

करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये इसके अगर आप सिर्फ गीत भी सुनेंगे तो आपको कहानी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। फिल्म के संवाद और गीत इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं और लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए। हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, जो रेडियो प्रेमी हैं और रेडियो पर इस गीत को, इस फिल्म के गीतों को और साथ साथ कई सारे फिल्म के गीतों को सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मन की बात भी हमें बताते रहिए कि आप और कौन से गीत सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो आइए इस फिल्म का एक और सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

फूटे या माथा।

श्रोताओं, हमें लगातार इस कार्यक्रम में लोगों के मेल प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से सोनीपत शांतिनगर से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी इस फिल्म के गीतों को सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया भी इस फिल्म के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण सिंह ने भी मेल किया है और इनके परिवारी जनों का नाम शामिल करने के लिए इन्होंने कहा है, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, इन्होंने सराहा है और हम भी आपके मेल का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए हमारे कार्यक्रमों का। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत तैयार किया था जो आज भी सदाबहार गीतों की सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, दाग के संगीत में भारतीय शास्त्रीयता और मधुरता दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ साथ चलिए हम इसकी बातें करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग के बारे में कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं थी आपके साथ सुनिधि गुप्ता। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम और जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।

0: ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में शामिल होने अज तो सोमवार तक सेशल्स के दौरे पर ने। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की शलाघा करते हुए कहा कि भारत ने शानदार आर्थिक तरक्की की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत उसके एमएसएमई सैक्टर के योगदान विच है। भारत के किदंबी श्रीकांत, रौनक चौहान ते देविका सिहाग कैलिफोर्निया में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सैमीफाइनल पहुंच गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सेशल्स के दौरे पर ने। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य मेहमान होंगे। श्री मोदी पहले 2015 में सेशल्स गए सन। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री फौज के दो जहाजों समेत भारतीय रक्षा बल की एक टुकड़ी गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेगी। दौरे दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी नाल गलबात करेंगे ते दोहां देशों विचकार दुवल्ले संबंधां दी समीक्षा करेंगे। आपसी हित के खेतरी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की नैशनल असैम्बली संबोधन करेंगे ते प्रवासी भारतीयों नाल मुलाकात करेंगे। भारत सेशल्स संबंध इतिहासक सभ्याचारक लोगों दरमियान संपर्क ते आधारित ने। एक मुख समुद्री भाईवाल वजो सेशल्स खेतरी सुरक्षा ते समावेशी विकास लई भारत दे महासागर दृष्टिकोण विच एक मुख भाईवाल है। यह विकासशील देशों प्रति भारत की वचनबद्धता नूं भी दर्शाउंदा है। यह दौरा दोहां देशों विचकार लंबे समय तो चली आ रही दोस्ती ते सारे खेतरां च दुवल्ले संबंधां नूं वधाउण लई उन्हां दी सांझी वचनबद्धता नूं होर मजबूत करेगा। इस दौरान सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच स्थाई मैंबरशिप लई भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे तो पहला विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा है कि मौजूदा विश्व व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की लोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी वड्डी आबादी, वध रहे विश्व प्रभाव, शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षी कूटनीति में योगदान कारण सुरक्षा परिषद की स्थाई मैंबरशिप का हकदार है। भारत सेशल्स ने संबंधां नूं मजबूत अते इतिहासिक दसदिआं श्री बैरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फेरी दोहां देशों विचकार सहयोग नूं होर मजबूत करेगी। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर तों भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। यह सेवा शुरू विच राज दे 14 वड्डे शहरों में शुरू की गई है। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा,
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड वालों अमूल, इफको ते नाबार्ड समेत 8 प्रमुख सहकारी संस्थावां दे सहयोग नाल विकसित की गई भारत टैक्सी ड्राइवरां नूं सीधे तौर ते वध तों वध वित्तीय लाभ पहुंचाउण लई जीरो कमीशन माडल ते काम करदी है। श्री शाह मुख पहलकदमियां की शुरुआत करन ते

0: बेल्जियम ने न्यूजीलैंड नूं 5-1 नाल हरा दिता है। अंत विच चोणवीं खबरां ते इक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैशल्स के राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में शामिल होने लई अज तों सोमवार तक सैशल्स के दौरे ते ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की शलाघा करते हुए कहा कि भारत ने शानदार आर्थिक तरक्की की है। भारत के किदंबी श्रीकांत रौनक चौहान और देविका सिहाग कैलीफोर्निया में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सैमीफाइनल पहुंच गए हैं। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरका अकदार और मफाद रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम का शर्फ हासिल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का काम अंजाम दे रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम मोदी अपने दौरे के दौरान सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। आज उनके प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन्स में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहेली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना साझेदारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जनूब के तई वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद उसत देने के मुश्तरका अज़्म को तकवीत फराहम करेगा। सुपर्णा साइकिक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: सेशल्स ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सेशल्स आमद से कबल सेशल्स के वज़ीर ख़ारजा बेरी फोर ने कहा है कि मौजूदा आलमी निज़ाम और बैनुल अक़्वामी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ाइक़ का बेहतर अक्कासी कर सकें। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी रसूख, अमन कायम करने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की ये कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिर खा इकतसादी तरक्की की है और वह आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमेरिका के करीब तरीन दफाई शराकत दारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क्यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मौसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी और सदर डोनाल्ड

0: ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफी करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के लिए यह एक अहम बात है। उम्र दाखला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर के महामंदिर में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया। इमदाद बाहिमी पर मबनी अपनी नौइयत की यह पहली टैक्सी सर्विस है और इसे अगले 2 साल के दौरान मुल्क भर के 500 शहरों और कस्बों तक तौसी दी जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी इमदाद बाहिमी के शोबे में तब्दीली लाने की सिमत में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इस सर्विस की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह सर्विस इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्राइवरों को आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मिल सके और मुसाफिर मुनासिब खर्च पर महफूज सफर कर सकें।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: जनाब अमित शाह ने अमूल इमदाद बाहिमी तहरीक की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टैक्सी भी इमदाद बाहिमी के इसी जज्बे के तहत काम करेगी और इज्तमाही मिल्कियत के तवस्सुत से आवाम को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। जनाब अमित शाह ने इन दिनों गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन जखीरा गाहों के अलावा साहिली रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। मारूफ तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, तहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके पास पसमानदगान में उनकी अहलिया पूर्णिमा भाग्यराज, एक बेटा, एक बेटी और पोते पोतियां शामिल हैं। भाग्यराज एक मुमताज फिल्मसाज थे जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद स्क्रीन प्ले और हाजिर जवाब मुकालमों की वजह से तमिल सिनेमा में एक खास मकाम रखते थे। उन्होंने कई कामयाब तमिल फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने मकबूल हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता भी उसकी भी हिदायतकारी की थी। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय, डीएमके के सरबराह और साबिक वजीर आला एमके स्टालिन समेत कई अहम शख्सियात ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत नजर किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम कल चेन्नई में अदा की जाएगी। कोलकाता के तारातला इमारत की गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बकिया इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडालाखारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरफहरिस्त हो गया है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशभा समुंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अगले कलीदी साथियों में सबसे ज्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 से बराबर रहा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a 3-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. More from our correspondent.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faur said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence and its contribution to peacekeeping, maritime security and multilateral diplomacy. Four said Seychelles supports India's candidature and believes India's inclusion would strengthen global balance and promote peace. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration

0: Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IFFCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में

0: मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। हमारा अगला कार्यक्रम है एक ही कलाकार। तो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी फिल्म के संगीत के उस जादूगर को जिसने अपनी धुनों से संगीत की दुनिया को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचंदा के नाम से जानती है। दोस्तों, 27 जून यानी आज ही के दिन सन 1939 को जन्मे पंचमदा महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। कहा जाता है कि बचपन में वो जब रोते थे तो उनकी आवाज़ प यानी पांचवें सुर जैसी लगती थी। इसी कारण अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें प्यार से पंचम कहना शुरू कर दिया और यही नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पश्चिमी गीत, जैज, लैटिन और रॉकिन, इन सभी शैलियों का ऐसा अनूठा संगम उन्होंने अपने संगीत में किया कि हर धुन आज भी नई जैसी लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके एक सदाबहार गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सुनिधि गुप्ता। तो अभी आपने सुना पंचम दा का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत होगा तुमसे प्यारा कौन। श्रोताओं, आरडी बर्मन कई गीतों में रोजमर्रा की चीजों से ध्वनियां तैयार करते थे, जैसे कि कभी कांच की बोतल से, कभी कांच के ग्लास से, कभी कंघी से, कभी बोतल से, तो कभी सांसों की आवाज का प्रयोग करके वो बिल्कुल नया संगीत रच देते थे। जी हाँ, उस दौर में ये प्रयोग बहुत ही अनोखा माना जाता था। तो आरडी बर्मन की बातें करते रहेंगे, लेकिन उनके इतने सारे फेमस सॉन्ग्स हैं तो हमारे श्रोतागण भी बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं उनका एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपको बता दें कि पंचम दा केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन माउथ ऑर्गन वादक और गायक भी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी थी? महबूबा महबूबा, दम मारो दम के हिस्से और कई अन्य गीतों में उनकी विशिष्ट आवाज ने अलग ही रंग भर दिया था। उनका मानना था कि संगीत सीमाओं में नहीं बनता, इसलिए वो हर नई धुन के साथ कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास जारी रखते थे। तो आइए सुन लेते हैं उनका एक और गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों, आरडी बर्मन ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो किसी भी गीत की रिकॉर्डिंग से पहले घंटों तक वाद्य यंत्रों के संयोजन पर काम करते थे, यानी कि उन्हें जोड़ तोड़ उनकी चलती रहती थी। उनके ऑर्केस्ट्रा में भारतीय और विदेशी वाद्य यंत्रों का अनूठा मेल देखने को मिलता था। इसी कारण उनके गीत आज भी नए संगीतकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। चलिए, ये बातें चलती रहेंगी और हम पंचम दा के बारे में जानते रहेंगे। सुनते हैं उनसे जुड़ा एक और यादगार गीत।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कलाकार आरडी बर्मन की, यानी कि राहुल देव बर्मन की, हमारे पंचमदा की जीवन यात्रा और उनके संगीत और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को हमने इस कार्यक्रम में जाना। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि कल्पना, मेहनत और जुनून साथ हों तो संगीत समय की सीमाओं को पार करके अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी उनकी धुनें हर पीढ़ी के दिलों में बसती हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने उनके बारे में, उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जाना, उनसे जुड़ी बातें की, उनके जुड़े गीत सुने, और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। अभी हमें समय इशारे कर रहा है कि आज का कार्यक्रम हमें समापन करना होगा, और चलते चलते हम छोड़ जाते हैं आपको उनसे ही जुड़े एक और गीत के साथ। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। मुझे यानी अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए हमारा आकाशवाणी दिल्ली का इन प्रेस चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रिज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन। अरे वंदना बहना, आज चो मुरझाई सी लग रही है, कछु खाए के ना आया इनका?
1: अरे सखी, गर्मी के मारे ने थकान जी है जाए और कछु बात ना है। मैं तो कलेऊ में दूध को दरिया उखाए के आई हूँ।
0: बड़ो ही पौष्टिक कलेऊ करियो है आज।
1: और का, तुम बताओ तुमने कहा करो कलेऊ?
0: अरे बहना, मैं तो हमारे कृष्ण कन्हैया की पसंद को कलेऊ करके आई हूँ, नेक बताओ तो कहा।
1: सखी, माखन रोटी या छाछ होएगी?
0: हाँ हाँ, रोटी के ऊपर माखन धर के खायो बहना, बड़ो ही स्वाद लगे है।
1: स्वाद के संग विटामिन डी ते भरपूर। सखी, ऐसे ही ना है खाना जाके काजे मैया ते झगड़ते।
0: और का बहना, याई ते माखन रोटी ब्रज को पारंपरिक कलेऊ है, और बहना ब्रजवासी अंट शंट कलेऊ ना करें, छाछ दही दरिया जे ही करें। और अगर ब्रज के कलेऊ की बात करें तो ब्रज साहित्य में कलेऊ को कई जगह वर्णन कियो गयो है।
1: हाँ सखी, सूरदास जी ने तो कई कलेवा के पद रचे हैं।
0: हाँ बहना, सही कह रही हो। एक पद है सूरदास जी को, करहूं कलेऊ कान प्यारे, माखन रोटी दियो हाथ पर, बलि बलि जाऊं जुखा हो ललारे, टेरत ग्वाल द्वार हैं ठाड़े, आए तब के होत सवारे, खेलहूं जाए घोष के भीतर, दूरी कहूं जन जइहूं वारे, टेर उठे बल राम श्याम को, आवहु जाही धेनु बन चारे, सूर श्याम कर जोरी मात सो, गाई चरावन कहत हहारे।
1: सखी, कलेऊ का एक और पद है, कनक कटोरा प्रात ही, दधी घृत सु मिठाई, खेलत खात गिराह वही, झगरत दो भाई, अरस परस चुटिया गहें, बरजती है माई, महा ढीट माने नहीं, कछु लहुर बड़ाई, हंसी के बोली रोहिणी, जसुमती मुस्काई, जगन्नाथ धरनी धरई, सूरज बली जाई।
0: मतलब कलेऊ करते करते हु झगड़ते दोनों भैया।
1: हाँ सखी।
0: एक और पद है बहना, कमल नयन हरि करो कलेवा, माखन रोटी सध्य जाम्यो दही, भांति भांति के मेवा,
1: खारिक दाख चिरौंजी किसमिस, उज्जवल गरी बादाम, सजरी छेव छुआरे पिस्ता, जे तरबूजा नाम। सखी, ब्रज में कलेवा में फल, छाछ, दूध, दलिया, सत्तू, बेड़ी, जलेबी और रबड़ी को चलन है। और सखी, की ब्याह की एक रसम हूँ तो हते?
0: कौन सी?
1: जा मैं ब्याह के बाद ब्याहला के घरवारे दूल्हा दुल्हन को संग बिठाए के कलेऊ करवा में।
0: हाँ, कुंवर कलेऊ कहे हैं जाकू।
1: हाँ सखी, और कुंवर कलेऊ करवात भये जो दुल्हन की बहने, भाभी, सखी, सहेली मिलके दूल्हा को खूब सता में, बातें तरह तरह के सवाल पूछे, पहेली छंद सुने, जैसे परीक्षा है रही होए।
0: हाँ बहना, जे तो बहुत प्राचीन परंपरा है। और बहना, जब ब्रज में रामलीला को मंचन हुई ना, तो या मैं हूँ कुंवर कलेवा को बड़ो विनोदी दृश्य उभरे है, जब चारों भाई कुंवर कलेवा पे अपनी सास के पाछे बैठ जाएं, तो सीता जी की भाभी जिनको नाम है सिद्धि, और बिनकी सखी सहेली चुटकीले में, और कहे हैं, अरे हमने तो सुनो है कि तुम चारों भाई बड़े वीर हो, बड़े बड़े राक्षसन ते रक्षा के काजे ऋषि तुम्हें लेके गए, पर यहाँ तो चूहा की नैया छिपे बैठे हो सास के पाछे। और एक उर्मिला की सखी वो राम जी ते कहा के वे
1: कहा
0: कि अरे राम जी, एक बात बताओ, बुढ़ऊ राजा दशरथ तो इतेक सुंदर ना है, पर तुम तो कितेक सुंदर हो, कहा कामदेव के छाए हो। और तुम्हारी अयोध्या नगरी वो तो बड़ी ही विचित्र है, वहां तो महतारी खीरते ही बालक जंदे में। तो लखन हूँ जवाब दे में है। वे कहें, चलो हमारे यहाँ तो खीरते ही सही, पर बालक को महतारी जने हैं, तुम्हारे यहाँ तो मिथिला में जनकपुरी में धरती ते ही छोरी है जामे।

0: अरे सखी, हास परियास करनो तो ब्रजवासिन को स्वभाव होए, चाहे कोई अवसर होए, ब्रजवासी विनोद करवे ते चूके ना है।
1: जे तो सही बात है। और सखी देखो, कलेऊ करत भये मन भोजन पे ही अटक गयो है।
0: तो चोना सखी, आज अपने श्रोतान को भोजन थारी लीला सुनवाई के ब्रज के भोजन को स्वाद ले लियो जाए।
1: बिल्कुल, तो सुनो श्रोताओ, भोजन थारी लीला।

0: भैया कन्हैया, आज तो बड़ो ही आनंद आयो। खिसलनी सिला कैसी माखन जैसी चिकनी है, एक ही पल में ऊपर से नीचे बीजरी सारा पेट्यो के बस पूछे ही मत, आनंद आ गयो।
1: भैया मोहू को तिहारे संग बड़ो ही आनंद आवे है। रात भर पपैया की तरह बाट जो हूँ कि कब सकारे तिहारे संग गौचारण को जाऊं, वहां सब मिलके खेलें कूदें, अनेकन रूप धार के सगरे दिना आनंद लें। याद है बादना, तालवन के मीठे फल कैसे खाए आते, याद है ना?
0: सोना याद, खूब याद है। पर कन्हैया, ताल के फलन ते तो अधिक आनंद वा गधा के लड़वे में आयो, गधा के लड़वे में। और भैया कन्हैया, तू तो हमारे जीवन को रक्षक है, जो तू वादना न हो तो ना, तो हम तो वा गधा ने पहुंचा दिए होते स्वर्ग में सूदे।
2: हाँ भैया, तू तो स्वर्ग को पहुंच जाते।
0: हाँ भैया, तारो गधा बन के आयो, गधा। कंस को मामा कहूं को, कैसे मीठे फल और काहुए खामन न दे। लूम कहूं को,
2: लूम कहूं को,
0: अरे फलवा के बाप के है का, इन्हीं लक्षणन ते असुर बने हो, इन्हीं लक्षण।
2: और का है भैया,
3: ठीक है, नहीं बात है, बिल्कुल ठीक कह रहा
1: है। अरे भैया, फलन की चर्चा ते तो मेरी भूख और चमक आई, अब वही मैया की छाक ना आई, सूरज तो लठ सो सूदो ठाड़ो है गयो, नेक देखो तो सही।
0: हाँ हाँ, अरे कन्हैया, सूरज तो चमक तो हो, मेवादार मगध को लड्डू सो लग रहा है, लड्डू सो,
4: लड्डू सो लग रहा है, यार लड्डू सो।
2: अरे सारे गपक मत जाइयो।
1: भैया मंस का तू यो बताए, या बन को नाम कहा है?
0: अरे कन्हैया, मैंने खाई है बन की खीर। हाँ, पर सुंदर बड़ो है।
4: हाँ भैया,
0: कदमन की छैया, पर्वत सरोवर पशु पक्षी बड़े मनोहर दिखे हैं भैया कन्हैया।
1: अरे या बन को नाम है काम बन।
0: काम बन?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: यहाँ शिव जी ने कामदेव को भस्म करयो हो, यही ते या को नाम है काम बन।
5: कहा गई भैया कन्हैया, शिव जी ने कामदेव को भस्म
1: करयो हो।
0: पर नाना भैया, कामदेव को भस्म करवे की

0: सूरत ना आए अब। कन्हैया मैं तो भाई अपनो चेला बनाऊंगा चेला। और सुने, और जब स्त्री को रूप बना के सखीन के घर माखन खायो करूंगा, और जब चाहूं असुरन के कान पकड़ के सारे ने जमुना में फेंक दूंगा। और भैया सुने, जब है जाए रात तो मैं जसोदा मैया बनके कन्हैया तेरे संग सोया करूंगा। सुनी?
1: अरे भैया मनसुखा, ओ मनसुखा।
0: हाँ
1: ये बोल ना रहे हो?
0: हाँ हाँ बोल, कहा के
1: देख छाक लेके को आ रहे हो जी से?
2: हाँ भैया।
0: हाँ है? अच्छा मैं देखूं?
1: हाँ तू अपनी दूर
0: ऐसे कर ले, मैं अपनी दूर दृष्टि से देखूं।
1: हाँ भैया देख।
0: अरे अरे ये तो कोई सखा आ रहा है। सखा
3: कहा कह रहे हो? सखी की ठौर पे सखा कैसे आ गए हो?
4: दिखा ना हो गए यार।
0: अरे ना ऐसा ही लग रहा हूँ तो भैया।
3: मेरे
0: आखने बाहर के
4: देख।
0: अरे पूछे मत, मेरे पेट में हूँ तो मुँह से ऐसे कूद रहे हैं, अरे जैसे राम जी की सेना लंका में कूदी है। और सुने मैं बताऊँ तो है? मेरी बात सुने।
4: हाँ सुना है,
2: बताए।
0: फूले हैं कदम बन मोदक समान घन, और खीर तो तलैया भरी लाग रही दुख में।
2: वाह भैया मनसुखा,
0: खीर तो तलैया भरी लाग रही दुख में, चलत ब्यार तेज बोले खड़खड़ पात। चलत ब्यार तेज बोले खड़खड़ पात, पापर समान भ्रम पीपर के रूख में। पीपर के रूख में हलुआ सी कीच बीच रेणुका पंजीरी जैसी। हलुआ सी कीच बीच रेणुका पंजीरी जैसी, धूप तुरी माखन सी रवि तब सुख में। सृष्टि मेरी दृष्ट में अटूट अन्नकूट भई। सृष्टि मेरी दृष्ट में अटूट अन्नकूट भई, और रचेता रसोईया तो भयो भारी भूख में।
4: वाह वाह वाह वाह।

0: छल सो धारो गोप रूप तहां खेल समाने।
1: राम राम भैया।
2: अरे भैया कन्हैया, ये कौन आएगा भैया?
3: ये कौन सा गोप है भैया?
2: ये तो कोई नयो सोई दिख रहा है भाई।
4: अरे सुने भैया,
2: हाँ?
4: या देख के तो मोह धरसो लग रहा है।
2: धरसो लग
4: रहा है। और भैया देख,
2: हाँ?
4: आकाश की नाई कितनो विशाल है, और देख पागहू तो नीकी नाय बांध राखी।
3: हाँ भैया,
4: और देख यहाँ ना
2: टेढ़ी मेढ़ी बांध
4: राखी, और
2: लठियाऊ ओंधी रखा, ओंधी टेढ़ी राखी भाई।
4: कन्हैया भैया, अरे भैया कन्हैया, जा गोप को कछु नाम और अतो पतो तो बता।
5: अरे जी नयो सखा है।
4: अच्छा
5: या
4: ये कहाँ से आया भाई?
2: नयो है भाई, कोई
5: नयो है ही नयो, नयो मित्र
2: नया सखा बना रहे भैया।
4: पर ये है कौन
1: भैया? मैं तो बताऊं।
2: हाँ बता।
1: मैं तो के मामा को, मामा को,
2: मामा को, मामा को, पापा को,
4: पापा को भैया।
1: आज ही सकारे आया हूँ,
2: देख लो आज ही आया हूँ।
1: बुआ ने कही वन में ही चले हो जा, यहाँ अकेलो सांस तो कहा करे।
2: अच्छा,
4: मैंने तो तू पहली बार ही देखे हो।
5: चलो भैया कदमन की छियान में विश्राम करें
4: हम। भैया चलो
5: चलो, वहीं छाक आ जाएगी। चलो
2: चलो चलो चलो चलो चलो भाई चलो।
4: तो कान्हा सुनो, सुने ओ कान्हा, बात तो सुने।
2: सुना है?
4: सुनो कान नब गोप में, पूरब देखो नाए, हाव भाव पहचानिए असुर रूप को हुआ है। देखो सावधान भी तो आते
2: भाई, ये
3: बात तो ठीक कह रहा है
2: भाई।
4: और सुने
2: हाँ?
4: अंतर्गत है क्रूरता, बोलत मधुरे बेन, सावधान मिल खेलिए हे मोहन सुखदेन। तुम तो बहुत होशियार हो यहाँ, सावधान नहीं जो वो कछु यहाँ पे शक लग रही है।
5: देख भैया मन सुखा,
4: हाँ
5: तू कोई चिंता मत करे।
4: हाँ।
5: दाऊ

0: अरे भैया आ देखो सही ओ देखियो भैया आए इसमें कैसा लट्ठो तो ठाड़ो है
1: हां भैया है तो लोए सो
2: अरे मनसुखा ले तो एक घोड़ा पे सवारी कराऊं समझ ले तू जीत गए हो
3: अरे ना ना मैं ना अरे सवारी
0: ओ मनसुखा ए बैठ जा जाए मतिया और देख ओ सुन तू ब्याह की गोरी तो मिलेगी ना
3: अच्छा तू ना माने ले तो पहले बामन को बेटा ही श्री गणेश
0: करेगा
3: ना बैठेगो चल चल
2: अरे मनसुखा समर के बैठियो पौन की तरिया भाजूंगो गिर गयो तो दोष मत जीजो
0: अरे भैया देखियो ओ सुनियो सही कह रोई
3: तो कह रहेगा भैया
4: अरे ओ अरे रुक तो सही अरे भगत से कन्हैया के पास कबूतर अरे रुक तो सही अरे देख भाई कहाँ गिर गई अरे मैं कहाँ करूँ बता दो सही अरे यार काल कोठरी में कहाँ ले आयो अरे अब रोऊं तो मेरी कौन सुनेगो अरे भूख के मारे में तो वैसे ही आवाज ना निकल रही अरे हो मैं सुन तो सही कहाँ ले आया तू अरे मुझे
5: अरे भैया कन्हैया ये आंधी आ गई है कहाँ है ये तो आंधी की तरह से अरे भैया क्या करो
0: अरे भैया देखो ये गोप तो ये आ गया है अरे मनसुखा कहाँ है भैया
2: अरे वो तो पूरो लालची है भोजन भक्त मीठे मीठे फलन को देख के वही रह गए हो हाँ
0: अच्छा भैया कन्हैया ओ भैया कन्हैया
3: हाँ भैया
0: लो भैया खेलेंगे अब तो
3: दोस्त आँख मीच ले या गोप की
0: अच्छा दादा ए ले पकड़ लियो कन्हैया ओ कन्हैया है पकड़ लियो ला भैया ला मेरे पोत गए और पीठ पे बैठा है
3: मोर तो यहाँ की पीठ पे बड़ो ही आनंद आवेगो
2: अरे दो आ जाओ
0: अरे भैया कन्हैया भली भात बैठियो यहाँ की पीठ पे ये बहुत तेज भाजाई
3: अरे बर की तरिया चपट जाऊंगो चिंता ही मत करे बलराम भैया
0: और देख मेरा पोता ने पूरी चिड़चिड़ा सा समझ लियो
3: अच्छा
2: कन्हैया आज तेरो मेरो मेल भयो है आज तो अपने मित्र कंस को काज साध लूं
3: अरे बलराम ओ बलराम
0: भैया
3: जे तो ओ भैया बलराम
0: हाँ भैया
3: ओ जे तो बड़ी क्रूरता से भरी बात सुना रहे हो है
0: अरे अरे ओ श्रीरामा ये वह कन्हैया को मोर भंग कर रहा ओ बाजारी में मुरली ओ चलो भैया चलो ओ चलो भागियो

0: अरे
1: अरे ना कन्हैया, मर गयो ये तो सारो।
2: अजी एक ही मुक्का में मार के कर दियो सारे को ढेर।
0: और का क्यों ना तेने करो होगा?
1: हाँ ना तेने करो, मैंने ना करो।
3: ले भैया आ गई छाक हूँ।
4: अच्छा भैया।
3: हाँ भैया।

0: अरे भैया कन्हैया।
1: हाँ भैया।
2: अरे आज तो मैया ने खीर भेजी है, खीर।
1: अरे तो खीर दिख रही है। अरे हाँ। इसको तो देख, मगध के लड़ुआ हुए हैं।
2: अरे लड़ुआ ने तू खा ले भैया, वो तो खीर बहुत अच्छी लगे। ले ओ कते प्याज दे
1: ना, ओ कते काय को पीवे। मैं लाऊं कदमन के पत्ता।
2: अरे ना वो तो
1: कदम के पत्ता के धोना बना लीजो
2: है, जल्दी कर।
1: हाँ और देख किसमें सन्ने तू लेगा के या को देखो श्री रामा को।
2: अरे तू किसमें सन्ने तई को खिचन दे
1: काजू ये आवे।
2: चली आमन दे कटे मा
1: कटे मा। अरे भैया बलराम ओ दादा।
2: हाँ कहा के है
3: भैया। देखो हाँ। इन सलान पे ही थारी कटोरा बन गए हैं।
1: अरे हम भैया बन तो रहे हैं।
3: कैसी हाँ। स्वच्छ सलाह है।
1: अरे हम
3: ले आ तो तलैया ले आंजरी में जल।
1: मैं ला रहा हूँ भैया। ए ले मनसुखा।
2: अरे बस।
1: अरे और ले ले।
2: अरे मैं कोई भोजन भट्ट हूँ।
1: ए नहीं ना करो।
2: बस बस, बस बस बस बस
1: ले ले नेक्स्ट और ले।
2: और भैया कन्हैया दे। कन्हैया तू ले ले।
1: अरे हाँ भैया कन्हैया
2: तू ले।
1: देख सबकी थारी ऐसो करे ना कछु तू भी तो ले ले ना का देख।
3: भैया मैं तो सबकी थारी ते चाखूंगो, कैसा स्वाद आवेगो भैया।
1: अरे वाह भैया कन्हैया
2: आज खूब भंडारो भयो।
1: अरे वो चकान चक के भैया
2: और आंदे खीर थोड़ी सी पेट में होरी जैसी की मची जाए।
1: अरे वाह भैया वाह
2: ले ले
1: डाट। अरे नंद के भाव तारी ऐसी भोजन ऐसी धारी।
2: बोल कन्हैया लाला की जय। बोल कांबन भोजन थारी की जय। बोल पूछरी के लोठा की जय।
4: अब भैया आपने भोजन थारी लीला को आनंद लियो बहना।
5: हाँ सखी।
4: वैसे तो कन्हैया की हर लीला के पीछे ब्रजवासीन को कल्याण करना ही हतो। जैसे या लीला में व्योमासुर नाम को असुर मार के कन्हैया ने ब्रजवासीन की और गैया मैया की रक्षा करी। और आपने सुनो के बाद में छखारी कन्हैया के ताई छाछ लेके गयी।
5: हाँ और कन्हैया पे वारी हो गयी। सखी ब्रज गोपिन को प्रेम हु बड़ो निरालो हतो। कबहू तो कन्हैया को देखे बिना चैन नहीं पड़तो।
4: हाँ।
5: और कबो बिन ते झगड़ती, कबो बिन की बंसी ले लेती।
4: हाँ पहले तो बिने मीठी छाछ पिलाती और फिर मैया ते शिकायत करवे पहुंच जाती कि मैया तेरो लाला हमते रोज रोज झगड़ा करे, हमारी मटकी फूरे, कपरान ने भी जो दे। सुनो तो हरी किशन और साथिन के स्वर में कितने प्यारा लोक गीत है।

0: बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनवाया आपने।
1: हाँ।
0: और अब यही लोकगीत के संग ही हम अपने कार्यक्रम को समापन करें। तो श्रोताओ, अब मोकू यानी के वंदना को
1: और मोकू यानी वंदना जोरी को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दियो। नमस्कार।
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनते हैं ये नाटक।
3: आइए सुनते हैं नाटक फुलमो रांझो। लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।

0: था घर मेरा नसीब, मेरी रानी मेरा राजा, मेरी रियासत मेरा दरबार।
1: ये लड़की कौन है जो अकेले ही खेल रही है?
0: बस आ गया।
1: अभी एक तो दिनों से ही दिख रही है यहाँ कोठी पर।
0: दो तीन चार, चौथा घर मेरा नसीब, बस आ गया। कितना अच्छा लग रहा है।
1: ये स्टापो भी भला कोई खेल हुआ? और अकेले खेलने में इसको भला क्या मजा आ रहा होगा?
2: लड़की, ए लड़की।
0: अरे अरे, पाँव क्यों रख रहे हो?
2: अरे कौन हो तुम?
0: पाँव क्यों रख रहे हो? चौथे खाने से निकलना है तो फांद कर निकलो ना। ये खाना तो मेरा घर पक्का हो चुका है।
2: क्या पक्का हो चुका है? अरे चौथा खाना भी स्टापू में ही है ना, और स्टापू तो स्वयं कारदारी कोठी में है जो कि पूरी की पूरी हमारी है, समझी?
0: कोठी तुम्हारी हो या किसी राजा वजीर की, पर अब स्टापू का चौथा खाना मेरा हो गया है। बड़े जत्न से चौथी खानी तक पहुंची हूँ। एक ही टांग पर उचकने के लिए बहुत संभालना पड़ता है अपने आप को। घर तो घर है ना, खेलोगे?
2: अरे मैं लड़के वाले खेल नहीं खेलता। मेरे साथ खेलना है तो दंड पला खेलो। रामू का बेटा दंड लेने को जाए, रामू का बेटा हाँफ हाँफ जाए।
0: अरे अभी मैं बहुत छोटी हूँ, पेड़ पर थोड़ी चढ़ सकती हूँ। स्टापू में तो हम एक पाँव पर उछल उछल कर चलने और अपने को गिरने से बचाना सीखते हैं। बापू कहता है ये सीख लो तो सारी उम्र काम आता है।
2: अरे स्टापू क्या, थोड़ी सी जगह में फुदकते रहना है? अरे हमको मिलना क्या गया है?
0: अच्छा चलो, मेरी ना तुम्हारी, ना स्टापू ना दंड पला, हम कीकली डालते हैं गोल गोल घूमकर।
2: अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं,
0: मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, हम दोनों अपने अपने पाँव के पंजे एक दूसरे के पंजों से जोड़कर कीकली खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं कीकली।
2: अरे क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, तो खाम का गले पड़ रही हो मेरे।
0: भेड़ भेड़ भे भे, ले ले कितने छे, खाना क्या, भरू भरू, मरना कब जब तब,
2: क्या कर
0: रही हो? मरना कब जब तब, वहाँ से निकली जन्म जनानी,
2: छोड़ो मेरा हाथ,
0: वहाँ से निकली जन्म जनानी, जन्म जनानी के 18 बच्चे हम सब सच्चे।
2: ये क्या किया तुमने, कमर तोड़ के रख दी मेरी।
0: संतुलन बनाकर नहीं रख सकोगे तो कमर क्या, कुछ भी टूट सकता है।
2: अरे गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आने लगेंगे तो गिरूंगा नहीं क्या मैं, है? मैं आज से तुम्हारा यहाँ ना बंद करवाता हूँ। तुम हो कौन? मैं तुम्हें एक दो दिन से ही देख रहा हूँ यहाँ पर।
0: मेरा बापू यहाँ काम करता है।
2: अच्छा, कौन है तुम्हारा बापू, क्या नाम है उसका?
0: काकूराम।
2: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पर तुम तो कोई काम नहीं करती ना, सारा दिन खेलती रहती हो अकेले ही।
0: खेलती चाहे मैं अकेले ही हूँ, पर मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, चौथा खाना अब ये मेरा हुआ, कोई भी इस खाने में पाँव नहीं रख सकता।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने बापू के साथ यहाँ क्यों आ जाती हो? तुम यहाँ कोई नौकरी तो करती नहीं हो?
0: बापू किसके पास छोड़े मुझे, मेरे घर में बस मैं और बापू ही हैं, और कोई नहीं।
2: और तेरी अमड़ी, अमड़ी नहीं है क्या?
0: ना।
2: क्या हुआ उसे? तेरे बापू को छोड़ किसी और के साथ तो नहीं चली गई क्या?
0: ये जो जंगल है ना,
2: हाँ?
0: इसके पार एक नदी है।
2: हाँ रोती तो?
0: बस उसी में चली गई, बिल्कुल अकेली, मैं अकेली रह गई हूँ।
2: क्या बात थी?
0: मुझे क्या पता, बहुत पुरानी बात है, मैं पता नहीं पैदा भी हुई थी या नहीं।
2: हाँ बहुत बुरा लगता होगा तुम्हें, है ना? खैर जो हो गया सो हो गया, चलो खेलते हैं।
0: हम दो ही तो हैं, क्या खेलेंगे?
2: अरे लुका छुपी खेलते हैं ना, तुम मीठी दो मैं छुप जाता हूँ।
0: मुझे नहीं आती मीठी देना, वो एक दो तीन पूरा नहीं आता ना, बस चार तक ही आता है।
2: अच्छा,
0: चौथा खाना, वो भी इसलिए कि चौथा खाना तय है मेरा घर।
2: अच्छा अच्छा, गिनती नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम बांसुरी बजाती रहना।
0: मुझे बांसुरी बजाना भी नहीं आता।
2: ओह चलो बाबा, छिपूंगा भी मैं ही और बांसुरी भी मैं ही बजाता रहूंगा, जैसे ही मैं बांसुरी बजाना बंद करूं तुम मुझे ढूंढने आ जाना, ठीक है?
0: ठीक है।
2: तो ठीक है, अब मैं छुपने जाता हूँ, ठीक है?

अरे अरे सुनो, मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। कहाँ हो? आ जाओ ना सामने, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आ जाओ बाहर निकल कर, मैं दोबारा मिट्टी दे लूंगी।

0: अरे बस इतने ही कलेजा तुम्हारा है, छोटी हो ना। अरे मैंने कह तो दिया कि जब बांसुरी बजाना बंद कर दूंगा, पर बांसुरी बजाते बजाते मैं ऐसा खो गया कि बांसुरी बजाना बंद ही नहीं हो पाया। बांसुरी बजाते बजाते मैं सारा जंगल लांघकर रावी नदी तक पहुंच गया, पत्थरों पर।
1: अच्छा
0: हाँ, चल तुझे भी दिखाता हूँ, बहुत मनोरम स्थान है, बांसुरी बजाने के लिए भी और लुका छिपी खेलने के लिए भी। हाँ। चल।

0: गई रांझो।
1: अरे आओ फुलमू आओ। अरे आज तुम्हें देर नहीं हो गई पहुंचने में।
0: तुम्हारे परिवार की कोठी तो रावी के बिल्कुल किनारे पर है। मुझे तो टिब्बे से भागकर ढक्की उतरनी होती है ना। रांझो तुम बांसुरी नहीं बजाया करो। मैं धूप से अनुमान लगाकर अपने आप आ जाया करूंगी।
1: क्यों, क्या बात है? मेरी बांसुरी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या?
0: अच्छी तो लगती है, बहुत अच्छी लगती है। खींची चली आती हूँ, पर जैसे ही तुम्हारी बांसुरी सुनाई देती है ना, तो मैं सुध-बुध खो बैठती हूँ राजू। ढक्की भी मुझे सरपट भागते हुए उतरनी पड़ती है। एक दिन पहले ही मेरा पाँव मुड़ गया था, और एक दिन तो पाँव के अंगूठे का नाखून टूटते टूटते बचा था।
1: नहीं भाई, हमें अपनी फुलबू तोड़नी फोड़नी थोड़ी है। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है?
0: ठीक है।
1: मैं थोड़ी सी बांसुरी बजाकर अपने पहुंच जाने की सूचना दे दिया करूंगा। तुम आती रहना आराम से।
0: बिल्कुल।
1: मैं तुम्हारी तरह इस बांसुरी के बिना भी नहीं रह सकता। ये भी छुरमैया है, तेरी तरह माँ विहीन।
0: बांसुरी की भी भला कोई माँ होती है क्या?
1: कभी ये भी अपने

0: पेड़ तने और टहनियों का अंग रही होगी। पेड़ जब समूचा होता है ना तो उसमें प्राण होते हैं। प्राण तो जड़ों से जुड़े होते हैं, कट जाने पर टहनी बेजान हो जाती है। अब जब मैं इसमें फूंक भरता हूं तो इसकी सांस चलती है, फिर ये गाती है, मुझे नचाती है। और नहीं बजाऊं तो कुछ नहीं, बस एक मुर्दा भर।
1: कितना सोचते हो तुम, वो भी दूसरों के बारे में रांझो। रांझो, हम दोनों हमेशा हमेशा इकट्ठे रहेंगे, आगे भी, अब मेरा मतलब बड़े होकर भी।
0: अरे हो तो गए बड़े, और कितने बड़े होंगे भला, हैं? अच्छा पहले तुम्हारी नाक बहती थी ना, अब बहती है क्या?
1: तुम्हें तो बस मजाक ही सोचता है। मेरा मतलब है कि बड़े हो जाने पर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तब तो।
0: अरे ब्याह तो मेरे बाप दादा का भी हुआ था, क्या पता मेरा भी हो जाए। पर हाँ, हमारा प्रेम अमर है। अरे शादी ब्याह इसे समाप्त नहीं कर सकते, ब्याह के बाद भी हम ऐसे ही हैं।
1: अरे अच्छा दिखाओ मैं तुम्हें तुम्हारा अमर प्रेम। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो ना, बड़ा होशियार बन रहे हो ना। तुम्हारी तो मैं हड्डी पसली एक करके रख दूंगी, बताती हूँ तुम्हें, रुको तुम।
0: बस बस सुनो मेरी बात, सुनो, मेरा प्रेम तो अमर है पर तुम्हारा प्रेम तो बहुत लड़ाकू है। अरे लड़ाकू नहीं बल्कि हलाकू है।
1: चले जाओ यहाँ से। मैं तो चली, फिर कभी नहीं आऊंगी।
0: अरे फुलमू,
1: मैं जा रही हूँ।
0: तुम तो नंगे पांव चल पड़ी। अरे तुम्हारी खड़ा हूँ।
1: रांझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रही ना, तुम्हारी नहीं रही ना, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम स्टापू में मेरा चौथा खाना हो। ऐसा हुआ ना तो मैं जान दे दूंगी रांझो।
0: अच्छा अच्छा फुलमू सुन, मेरी बात तो सुन, सुन सुन। देख मैं इस बात के लिए तो जान नहीं दे पाऊंगा कि हम बिछुड़ गए हैं, पर अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो सुन, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सच कह रहा हूं मैं।
1: इसे मत कहो।
0: मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा पुलमू।
1: नहीं।
0: दीपक केवल तभी तक दीपक है जब तक ज्योति प्रज्वलित रहे, समझी?
1: रांझो
0: हाँ,
1: साथ जीने की बात करते हैं ना, मरने की बात क्यों करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
0: अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ, अभी मेरे रिश्ते की भला कौन सी कोई बात हो रही है, हैं? अच्छा अब तो मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, हैं? ये हुई ना बात।
2: अरे भाई जल्दी चलो।
3: अरे चलो चलो चलो।
0: ओ फुल्मू,
1: अब यहाँ इतने लोगों में आवाज तो ना लगाओ, कितने श्रद्धालु आ जा रहे हैं।
0: अरे बड़ा चक्कर पड़ गया है फुल्मू,
1: आज माता के डेरे कैसे आ गए?
0: अरे गदियों के डेरे ऊंचाई वाले इलाकों में जा रहे हैं ना, बस वही देखने आ गया मैं।
1: हाँ क्या चक्कर पड़ गया, तुरंत बताकर इधर उधर हो जाओ। नर्सों से तो तुमने बांसुरी भी नहीं बजाई।
0: किसी कारिंदे ने या फिर मुकदम ने ही मेरे बापों से हम दोनों की शिकायत लगा दी है।
1: अब क्या बनेगा?
0: अरे बनना क्या है, मेरे बाबू का नाम जेठा सिंह है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, देखना।
1: ओई माँ।
0: देख फुलमो, जीवित रहना है और वो भी साथ साथ, तो भरमौर छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा।
1: हम कहाँ भाग पाएंगे? पांगी चल पड़े क्या? हा? गद्दियों के साथ छिपते छिपाते हुए।
0: हाँ हमें तो जाना ही पड़ेगा पैदल, रेंगती हुई भेड़ों के साथ, और बाबू के कारिंदे आएंगे सरपट भागते घोड़ों पर।
1: चलो चलो बाकी की बात कल कर लेंगे जब मैं पानी भर के लौट रही होंगी। चली मैं।
0: हाँ ठीक है। अरे सुन फुलमू, फुलमू एक काम करते हैं, भद्रवाह जा सकते हैं, वहां तो मैं पढ़ते समय आते जाता रहता था, वहां का मुझे सब मालूम है, वहां हमारे कहीं खो जाने का भी कोई डर नहीं है।
1: ताकि जाते ही धर लिए जाएं। और जोर से बोलो, अभी सभी ने सुना नहीं है, बापूजी को पता नहीं होगा कि रांझू और जा ही कहां सकता है।
0: अच्छा अच्छा सुन, वहां से थोड़ा नीचे डोगरे इलाकों में उतर जाए।
1: भद्रवाह का रास्ता क्या है?
0: यहां से चंबा, और चंबा से चुरा, और चुरा से पदरी के रास्ते भद्रवाह।
1: अच्छा
0: हाँ, वहां से और निचले इलाकों में उतर जाएंगे, ठीक है ना?
1: ठीक है।
0: हाँ ठीक है, समझ गई।
1: अब

0: अच्छे से सोच विचार कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। इतनी देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। शांझो, बापू को छोड़ दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। बहुत सीधा है मेरा बापू, उसे तो कोई भी लूट ले। हम बापू को भी साथ ही भगाकर नहीं ले जा सकते क्या?
1: हाँ हाँ, ले चलो। मेरे बापू को क्यों छोड़ना है, बहुत होशियार है, रास्ते में काम आएंगे। अरे मार खाने का इंतजाम करना है ना, तो नरम नरम क्यों खाएं, है भिगोकर खाएंगे ना।
0: अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब तुम नाराज मत हो और इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, सब चौपट हो जाएगा।
1: चौपट हो जाएगा।
0: एक बात है, जब हम लोग वहां पर टिक जाएं, यहाँ तुम्हारा परिवार भी शांत हो जाए, फिर तो मैं अपने बापू से मिलने यहाँ आ सकती हूँ ना।
1: अरे तब की तब देख लेंगे।
0: नहीं रांझू, तुम चाहे आओ या ना आओ, मैं अकेली आ जाया करूंगी। रास्ता ठीक है ना वहां से किसी औरत के अकेले चंबा आने के लिए?
1: देख पडरी वाले रास्ते का तो मैं कह नहीं सकता, हाँ चंबा आने के लिए जम्मू वाला रास्ता लंबा जरूर है, पर उसमें डर वाली कोई बात नहीं।
0: कितनी लंबी है जम्मू वाली राह?
1: नापना भूल गया था मैं। देखो तो सही, मौका कौन सा है और तुम कौन सी बातें कर रही हो। अरे पीछे देखो, पीछे कौन आ रहा है?
0: कौन?
1: अब गायब हो जाए यहाँ से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं।
1: हाँ ठीक है, चल चल चल।

0: नी मेरी जमुए दिरा है चंबा कितनी कदूर।
1: क्या बात है पहलवान, दो तीन दिन से बड़ा तानसन बना हुआ है।
0: बापू
1: आजकल तुझे बहुत याद आ रही है, ऊंची ऊंची रेड़ियां, डूंगी डूंगी नदियां, और ये झोले में क्या डाल रहे हो?
0: वो बापू हम वो हम मतलब हम लड़कों लड़कों ने ना भाग सुनाग जाने की सलाह बनाई हुई है बापू।
1: वहां जाकर क्या करोगे? वो तो पूजा पाठ वाली जगह है, भद्रवा चले जाओ ना चंबा से चुराह के रास्ते।
0: अरे नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं
1: नहीं नहीं बापू, क्या मेरी क्या आंख कान नहीं है? मेरे तो नाक भी है बच्चे सूंघने के लिए, मेरे कान तो दर्जनों हैं, वो भी हवा में उड़ते हुए।
0: अरे बापू आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है।
1: हाँ हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे पता है, चल ओवरी में चलकर बात करते चल।
0: हाँ हाँ चलते हैं बापू, बात जो मर्जी पूछ लो आप, चलते हैं, चलिए आइए। ये क्या बापू, ये क्या कर रहे हो? अरे बाहर से कुंडी क्यों लगा रहे हो बापू? अरे तुमने तो मुझे ओवरी में बंद ही कर दिया। अरे ओवरी में बंद क्यों कर दिया मुझे बापू?
1: दो तीन दिन खाना पानी सारी खातिरदारी ओवरी के अंदर ही हो जाया करेगी।
0: क्या?
1: कुंडी बंद ही रहेगी। अरे कुंडी बंद रहेगी तो पिटाई से भी तो बचा रहेगा ना।
0: बापू बापू मेरी बात तो सुनो बापू, मुझे कब तक बंद रखोगे? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बापू।
1: काकुराम

0: आना जरा।
1: जी अभी आया सरकार।
2: आ गया मालिक।
3: शाबाश आ गया।
0: गौर से देखकर बताना ये ओवरी के अंदर कौन बंद है।
2: ये तो आपके फर्जंद है मालिक। क्या हुआ मालिक?
3: कुछ भी नहीं हो सका। हो तो बहुत कुछ गया होता, अब कुछ भी नहीं होगा।
2: मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार?
0: इन साहब के अगले 2-3 दिन तो अंदर ही कटेंगे। सुन, अभी घर जाकर अपनी बेटी फुलमू से कहना कि अगले 2-3 दिन जितना चाहे उड़ ले, जहां जी चाहे, मगर 2 दिन के बाद जब तक ब्याह नहीं दी जाती उसका घर की दहलीज से बाहर कटा हुआ नाखून भी नहीं आना चाहिए।
2: क्या क्या हुआ मालिक?
0: फुलमू बता देगी ना क्या हुआ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है काकुराम।
1: बाबू खोलो, दरवाजा खोलो बाबू।
0: पर ये जो अंदर मछली की तरह तड़प रहा है ना, उससे अधिक लाडा नहीं है तू।
2: आप माई बाप हैं सरकार।
0: जा सकते हो। हाँ एक बात और, आज रात को सो मत जाना।
2: जी मालिक।
0: ऐसे ही नाटक करना सोए हुए होने का। रात का पहला पहर खत्म होने पर जैसे ही फुलमू उठकर दबे पांव बाहर जाने लगे ना, तो बाजू पकड़कर रोक लेना।
2: ठीक है सरकार।
0: और उसे बता देना कि रांझो नहीं आ पाएगा।
2: जी।
0: बेचारे की मुश्कें कस दी गई हैं। बिना मां की लड़की ऐसे ही आधी रात को उस अंधेरी वीरान जगह पर प्रतीक्षा करती रहेगी, कहीं कोई जानवर खा गया या चुड़ैल चिपट गई। और तुम तो काकुराम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर।
2: नहीं मालिक।
0: जा तू जा। कोई नहीं कोई नहीं। देख तू समझदारी से काम लेगा तो मेरा कोई बैर थोड़ी है तुझसे।
2: जी जी मालिक।
1: बाबू बाबू दरवाजा खोलो बाबू, अब तो खोल दो दरवाजा बाबू।
0: सुन चलो, तुझे भी संतुष्टि हो गई ना कि अब फुलमू दर बदर नहीं होगी।
1: बापू ये क्या क्या?
0: अब वो घर से ही नहीं निकल पाएगी। खाना खाकर आराम से सो जाना।
1: खाना खाकर बापू को दरवाजा खोलो बापू, मेरी बात तो सुनो।
2: हे भगवान, अब क्या होगा, क्या होगा मेरी फुलमू का?
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक फुलमू रांझो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रियंका भंडारी, मंगत राम, विशाल कुमार, दक्ष वशिष्ठ, नितिन गुप्ता और प्रवीण शर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।
6: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस 2 शब्द याद रखिए, कंट्रोल

श्रोताओं, अब सुनिए आज के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 4:10 पर आप सुनेंगे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर वक्त होगा समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा का। 5:10 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी का। 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चहल पहल। पर आप कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम संसार। सायकाल 7:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप आनंद लेंगे गजलों और कव्वालियों के कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मुशायरा। 8:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम। 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11:10 पर आप आनंद लेंगे एक बार फिर से फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश का। ये थे आज के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को ₹150 प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Seychelles for his three-day visit. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said, this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of U.S.'s closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today announced that Bharat Taxi, the country's cooperative ride-hailing platform, will be expanded to 500 cities and towns across the country over the next 2 years. Speaking at the official launch of the Bharat Taxi, he said the initiative, as a transformative step in the cooperative sector, Bharat Taxi aims to provide a fair and transparent mobility platform by making drivers, referred to as Sarathis, direct stakeholders.
4: The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarathis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarathi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarathis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
2: Malik hai shareholder.
3: In Kerala, the Commissioner for Entrance Examinations today released the rank list for the Kerala Engineering, Architecture and Medical Examination. A total of 79,717 candidates have been included in the engineering rank list, while 26,943 candidates have been placed in the pharmacy rank list. Candidates can download their results from the official website cee.kerala.gov.in. Vice President C.P. Radhakrishnan said the strength of any economy across the world lies in the contributions of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi today, he said that in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of the first generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high quality standards. The India Meteorological Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. The IMD said that thunderstorm accompanied with lightning and gusty wind conditions will prevail over East Rajasthan, interior Karnataka and Telangana till tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games, winning 20-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Razian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं

अब वक्त है कुछ खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। इस क्रम में सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है नेहा खातून। इनके पति का नाम है शहजाद। निवासी मोहल्ला धर्मपुरा, कस्बा व थाना सरदना, मेरठ। नेहा की उम्र है 30 साल। ऊंचाई कद है 4 फुट 9 इंच। आंखों का रंग सामान्य है और चेहरे का रंग गोरा है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं। नेहा ने आसमानी सूट सलवार व काला कुर्ता पहन रखा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सरदना, जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है सोनम उर्फ बेबी। इनके पति का नाम है कपिल। निवासी चुड़ियाला मोदी नगर, गाजियाबाद। इनकी आयु करीब 35 वर्ष है। कद 5 फीट है। बालों का रंग काला है। चेहरे का रंग गोरा है और चेहरा गोल है। शरीर की बनावट भारी शरीर है। इन्होंने काले रंग व सफ़ेद छींटदार कुर्ता पहन रखा है और पैरों में चप्पल पहन रखी है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना खरखोंदा, जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर भी दे रखा है जिस पर आप सूचना दे सकते हैं, 8751027136। खोए व्यक्ति का नाम है अंकिता चौधरी। इनके पिता का नाम है प्रवीण कुमार। निवासी B161 अमन विहार कॉलोनी, थाना गंगानगर, जनपद मेरठ। मोबाइल नंबर है 8279520834। अंकिता की उम्र 18 वर्ष है। कद 5 फुट 6 इंच है। बालों का रंग सामान्य है। चेहरा गोल है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गोरा है। अंकिता ने कुर्ती व नीली जीन्स तथा पैरों में जूती पहन रखी हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना लाल कुर्ती, जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अब्दुल कादिर। इनके पिता का नाम है रईस। ग्राम कायस्त, थाना किठोर, मेरठ। मोबाइल नंबर है 7055994375। इनकी आयु 30 वर्ष है। कद 5 फुट 6 इंच है। बालों का रंग काला है। चेहरा लंबा है और रंग गेहुआ है। शरीर की बनावट इकहरा मजबूत शरीर है। इन्होंने काली जीन्स व नीली जीन्स की पैंट पहन रखी है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना किठोर, जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है विदुषी। इनके पिता का नाम है इंद्रपाल। निवासी भीम सिंह नगर, कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ। इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। कद 5 फुट है। चेहरा गोल है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं। इनका रंग गेहुआ है। विशिष्ट पहचान दाहिने हाथ की कलाई पर ब्लेड के निशान हैं। विदुषी ने टी शर्ट और पजामा पहन रखा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कंकरखेड़ा,
जनपद मेरठ में।

1 इंच, चेहरा सामान्य है, शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं, रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अक्षिता, इनके पिता का नाम है शैलेंद्र त्यागी। पता है शैलेंद्र त्यागी, पिता का नाम धर्मपाल त्यागी, मकान नंबर 101 देवी नगर, सूरजकुंड रोड, जिला मेरठ। इनकी आयु 25 वर्ष है, कद 5 फुट 7 इंच है, चेहरा गोल है और शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरे का रंग गोरा है। इन्होंने काली टी शर्ट व ग्रीन लोअर पहन रखा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है सोनिका, पिता का नाम है सुखवीर। पता है सुखवीर, पिता का नाम गंगाराम, ग्राम कोहला, पुलिस थाना भैसुमा मेरठ। मोबाइल नंबर है 9756932366। सोनिका की उम्र 17 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है, चेहरा गोल है और रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने गुलाबी रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखी है, पैरों में हवाई चप्पल पहन रखा है और हाथ में एक गुलाबी पर्स है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना भैसुमा जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का।

0: tenure basis, deputation, or on short-term contract basis or re-employment. The Institute is a premier research organization with a legacy of over 180 years of geomagnetism and allied sciences. Detailed eligibility criteria and application procedures available on the official website, Indian Institute of Geomagnetism, and the page of careers. Kindly refer to www.iigm.res.in/careers. I repeat, it is www.iigm.res.in. Director General Merit Accommodation Project has invited applications for engagement of 4 junior engineers, BR and QSNC, on a contractual basis for 1 year. The upper age limit is 65 years and selected candidates will receive a consolidated remuneration of approximately 50,000 rupees per month. Further details available on the official website at www.dgmap.gov.in. I repeat, it is www.dgmap.gov.in. The National Company Law Tribunal has invited applications to fill various existing and future vacancies on deputation or absorption basis across its benches nationwide. The recruitment covers posts such as Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Programmer, Court Officer, Private Secretary, Senior Legal Assistant, Assistant, Stenographer Grade 2, Personal Assistant, Cashier, Record Assistant, Upper Division Clerk, and Staff Car Driver in pay levels ranging from Level 2 to Level 13 as per the 7 CPC. Interested candidates must submit their applications within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed vacancy information, bench-wise posts, and eligibility conditions are available on the official website. Do refer to www.nclt.gov.in. The Central Forensic Science Laboratory, Bhopal, under the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications for 3 posts of Upper Division Clerk, UDC, in Level 4 as per the 7 CPC on deputation basis. The maximum age limit is 58 years and the application in the prescribed format along with required documents must reach the Director, CFSL Bhopal, within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions are available through the Directorate of Forensic Science Services. Kindly refer to the website at www.dfs.nic.in. The Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahong, Arunachal Pradesh, an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India, has invited applications for 3 assistant professor posts in Tibetan and English. The posts carry pay level 10. As per the 7 CPC and requires a postgraduate degree with at least 55% marks in the relevant subjects. The vacancies include 1 unreserved post and 2 OBC posts. Eligible candidates must submit their applications by 6th August 2026. Detailed eligibility criteria and application forms available on the Institute's website. Kindly do refer to www.cihcs.edu.in. I repeat the website, it is www.cihcs.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार. रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में चेयर प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. समेकित वेतन रहेगा 2 लाख रुपए प्रतिमाह. निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें, सेवाएं और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्वालिटी 2 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 रिक्ति, सहायक CAMO 2 रिक्ति, सहायक 1 रिक्ति, स्टेशन इंचार्ज 2 रिक्तियां तथा प्रशिक्षु तकनीशियन ट्रेनी तकनीशियन 13 रिक्तियां। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए देखिए पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pavanhans.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर टैब पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। TGT अंग्रेजी 2 रिक्तियां, TGT विज्ञान 1 रिक्ति, TGT गणित 1 रिक्ति, बढ़ई 1 रिक्ति और इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। प्रशासनिक या नीतिगत कारणों से रिक्तियों को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। आवेदकों को इसके लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आवासीय स्कूल है। पशुपालन और डेयरी विभाग आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए रिक्तियां। पशु पोषण विशेषज्ञ 1 रिक्ति, भर्ती की पद्धति रहेगी प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और बायोडाटा प्रोफॉर्मा आदि देखने के लिए आवेदक पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है dahd.gov.in। आवेदन इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं। सुश्री अनामिका निगम अवर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग राइट स्टिल्ट फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली 1। ईमेल आईडी है anamika.edu.nic.in। बुनकर सेवा केंद्र वीवर सर्विस सेंटर खानापारा गुवाहाटी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कनिष्ठ बुनकर 10 पद, कनिष्ठ छपाईकर 3 पद, कनिष्ठ सहायक बुनाई 3 पद, कनिष्ठ सहायक प्रसंस्करण 2 पद और परिचारक बुनाई 7 पद तथा बढ़ई 4 पद। इन पदों के विरुद्ध भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या चयन के समय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नोटिस को रद्द करने का या सुधार का भी अधिकार है। योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रपत्र के बारे में देखिए वेबसाइट पर जानकारी। वेबसाइट का पता है www.handlooms.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
5: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन

0: विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे। Well, Karishma was telling us about the last segment of the program where we pay our tributes to the personalities who made a difference. So in that particular section, listeners, we will be remembering the man who made music magic. Well, more on that later in the show. In about 20 minutes, actually. And we also have a selection of news. Our discussion segment, Dateline India, we will be discussing two topics, not just one, but two topics today, and other reports and capsules as well. Let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles for a three-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's vision Mahasagar.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारी में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं।
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat.
0: तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन।
1: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next two days.
0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा।
1: Well, listeners, this is our discussion segment, Dateline India. So let's begin with it. Well, I want to begin with the question, what comes to your mind when someone talks about building a strong economy? Well, I'm sure, if it was a rhetorical question, it must be massive factories or maybe corporate headquarters or rather towering scrapers. Well, certainly they matter a lot. And I'm not denying the fact that but what if I told you that some of India's biggest economic success stories begin in places much smaller, in a village workshop or in a family-owned enterprise or maybe in a tiny manufacturing unit? Well, think about it.
0: बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और हर मोहल्ले में एक ऐसा भरोसेमंद दर्जी होता है जो हमेशा समय पर काम पूरा करता है। और हमारे इलाके की उस पसंदीदा मिठाई की दुकान के बारे में भी जरा सोच लीजिए, जिसके बारे में हर कोई घर आने वाले मेहमानों को बताता है क्योंकि पीढ़ियों से उसका स्वाद वैसा ही बना हुआ है।
1: एंड जस्ट टू ऐड देयर, perhaps a young entrepreneur who started selling handmade products online and now delivers across the country. Well, individually, they may seem like small businesses, but together, they form one of the strongest pillars of India's economy. Well, these are India's micro, small and medium enterprises, which we better know as MSMEs.
0: और हर साल 27 जून को यानी आज दुनिया भर में यूएन एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों एमएसएमई उद्यमों का जश्न मनाने के लिए है जो अर्थव्यवस्थाओं को जमीनी स्तर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया भर के कुल व्यवसायों में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने, वैश्विक रोजगार का 60-70% हिस्सा पैदा करने और दुनिया के GDP में आधी तक का योगदान देने वाले एमएसएमई आर्थिक विकास, इनोवेशन और आजीविका की रीढ़ है।
1: ऑफ कोर्स, ट्रू। द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड जून 27th एज एमएसएमई डे इन 2017, ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइजिंग देयर वाइटल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो टुडे दीज एमएसएमईज, दे आर डूइंग फार मोर देन रनिंग बिजनेसेस। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट एंड दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग जॉब्स, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एज वेल।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वे इनोवेशन को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, और इसके अलावा अनगिनत सपनों को हकीकत में भी बदल रहे हैं। कई मायनों में भारत के एमएसएमई की कहानी भारत के बदलाव की कहानी है।
1: सो करिश्मा, वन स्मॉल आइडिया बिकम्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी एंड वन एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्म्स एन एंटायर फैमिली। This is how actually real economic growth in reality spreads. And as these enterprises continued to grow, India recognized that they needed greater support. And that's why the definition of MSMEs was revised last year, giving businesses more room to expand while continuing to enjoy policy benefits. After all, success should never become a reason to lose support. Instead, growing businesses should be encouraged to dream even bigger. Well, in the year 2025-26, this happened exactly, and it became a landmark year for India's MSME ecosystem. More than 8.7 crore enterprises registered through the Udyam Registration Portal and Udyam Assist platform, bringing millions of businesses into the formal economy.
0: बिल्कुल, और छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस या लोन मिलना अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहता है. सोचिए कि आप अपने वर्कशॉप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोन के लिए महंगी गारंटी या गिरवी रखने के लिए कोई भी चीज नहीं दे पा रहे. बहुत सारे उद्यमियों के लिए यह एक आम समस्या रही है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मजबूत किया.
1: And how did they did it exactly? Well, they increase the ceiling from 5 crore rupees to 10 crore rupees. So collateral free loan guarantees, they were expanded. India's traditional industries are also writing remarkable success stories. We'll tell you about it with an example. Well, if we consider khadi as an example, once seen mainly as a symbol of India's freedom movement, today it has become a symbol of sustainable growth and rural entrepreneurship, don't you think, Karishma?
0: बिल्कुल, और खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1,27,000 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़ों को पार कर गई है. अच्छा शासन सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, यह तब समस्याओं को हल करने के बारे में है जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. उत्पाद बनाना तो बस आधी यात्रा है, ग्राहकों को खोजना भी उतना ही जरूरी है. सरकारी खरीद को बढ़ावा देने वाली पहलों और एमएसएमई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों उद्यमों को ज्यादा पहचान मिल रही है.
1: एंड करिश्मा, एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट्स, एंड दिस वाज डन अंडर द इंस्पायरिंग थीम ऑफ वाइब्रेंट एमएसएमईज विकसित भारत. And this was made even more special, well, with more than 2/3 of the participating stalls, they belonged to women entrepreneurs.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, कई अन्य लोगों ने एससी एसटी और दिव्यांग उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि सच्चे विकास का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को सफल होने का मौका मिले. हर सफल उद्यम के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पीएम विश्वकर्मा है, जो भारत के पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्पित एक योजना है.
1: सो कार्पेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, बास्केट मेकर्स एंड मेनी अदर आर्टिजन्स, दे आर रिसीविंग स्किल ट्रेनिंग, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड डिजिटल सपोर्ट. एंड इफ वी टॉक अबाउट रूरल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस एंड इवन मॉडर्न स्टार्टअप्स, द जर्नी ऑफ इंडियाज़ एमएसएमईज इज बिकमिंग इंक्रीसिंगली इंक्लूसिव.
0: और जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, एमएसएमई की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है. हर सफल उद्यम की शुरुआत एक साधारण सपने से होती है, एक ऐसा सपना जिसे कड़ी मेहनत से संवारा गया हो, जिसे अवसरों का साथ मिला हो और जो इनोवेशन से मजबूत हुआ हो, और इसके साथ ही जिसे आम भारतीयों के दृढ़ संकल्प से ताकत मिली हो.
1: सो ऑर्डिनरी इंडियंस डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, व्हेन मिलियंस ऑफ सच ड्रीम्स दे कम टुगेदर, दे डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड एन एंटायर नेशन. एंड परहैप्स दैट्स द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ इंडियाज एमएसएमई स्टोरी. नो ड्रीम इज एवर टू स्मॉल व्हेन इट्स बैक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडिया. हाउ ग्रेट. नाउ वी मे प्रोसीड. टुडे इट्स ऑल्सो इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस.
0: तो श्रोताओं, कि आपने कभी ये सोचा है कि कभी बिना ठीक से देखे या सुन पाए दुनिया में चलने फिरने की कोशिश की हो कभी आपने? अब सोचिए कि अगर दोनों ही क्षमताएं चली जाए तो क्या होगा. दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह हकीकत है. डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता केवल अंधेपन और बहरेपन का योग नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और बेहद जटिल संवेदी विकलांगता है.
1: So it is a disability with its own challenges, where vision and hearing cannot compensate for one another, making everyday communication as well as mobility, education and even the simplest activities and interactions incredibly difficult. Well, imagine not being able to hear your loved one's voice or see their smile and other people, birds, एनिमल्स.
0: बिल्कुल, और बिल्कुल. और शगुन, जरा सोचिए कि आपको बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता चलता है कि दुनिया आपको समझने के हिसाब से बनी ही नहीं है, तो आप कैसे बातचीत करेंगे? जो लोग सुन और देख नहीं सकते, उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी विकलांगता नहीं होती, बल्कि उनका अदृश्य होना.

0: The investigation teams are paying special attention to seizing the drugs that the drug mafia operating in Bengaluru is trying to smuggle through luxury cars, buses and other vehicles. The other day, a pledge against drugs was organized in schools in each assembly constituency under the leadership of MLAs. After the announcement of Operation Tufan, 417 cases were registered in Kozhikode district alone till June 25th and 422 people were arrested. 2,954 cases were registered in the state. 3,176 people were arrested with narcotics. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: और बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र में बारिश के मौसम में पानी की बूंदों के साथ ही उमड़ता है भक्ति का सैलाब। लाखों वारकरी मन में विठोबा से मिलने की आस को लेकर पंढरपुर का रुख करते हैं। पूरे महाराष्ट्र सहित आसपास के इलाकों से विभिन्न संतों की पालकियां आषाढ़ी वारी में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करती हैं। उन्हीं में से है संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन संत मुक्ताई की पालकी हाल ही में वाना हुई। सुनते हैं ये कहानी हमारी मुंबई संवाददाता से।
2: विठोबा के नाम का जय घोष, तार और मृदंग की गूंज के बीच संत मुक्ताई की पालखी अहिल्यानगर जिले के मुक्ताई नगर तहसील के कोथड़ी गांव से पंढरपुर की ओर चल पड़ी है। लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये केवल एक डिंडी है। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं संत मुक्ताई संस्थान के अध्यक्ष रविन्द्र पाटिल।
3: इस साल 318 साल मुक्ताबाई का वारी का है। मुक्ताबाई की वारी यानी पालखी जो है इसका अनन्य साधारण महत्व है। ज्ञानेश्वर, सोपान, निवृत्ति, मुक्ताबाई ये चार भाई बहनों का जो उपदेश महाराष्ट्र में किया जाता है या उनका इतिहास उसका पुनर्जीवित किया जाता है जो उन्होंने समाज के लिए उपदेश किया है ज्ञानेश्वर के माध्यम से, उसी तरह से समाज में वारी का अनन्य साधारण महत्व है। महाराष्ट्र एक संत की भूमि है। हमारी संत मुक्ताई की पालखी पंढरपुर जाने के लिए 30 दिन लगते है। 600 किलोमीटर का प्रवास है। 5,000 वारकरी इसमें शामिल होते है। इस साल अनन्य महत्व ऐसा है, इसी संत मुक्ताई के लिए पंढरपुर जाने के लिए चांदी का रथ इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहब इन्होंने चांदी का रथ समर्पित किया है। उसके साथ मुक्ताई पंढरपुर में जा रही है।
2: वारी संत भूमि महाराष्ट्र की शताब्दियों से चली आ रही एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो विठोबा के प्रति वारकरियों के अपार प्रेम को तो दर्शाती ही है, साथ ही सभी भेदभावों को किनारे रखकर मानवता की पताका ऊंची रखने की सीख भी देती है। परिक्रमा के लिए राजेश यावलकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
4: Now, let's head to Vijayawada. NTR district in Andhra Pradesh has earned national recognition with its innovative Ignite Cell, winning the prestigious SCOT Award for Excellence in Public Service and Citizen-Centric Governance. The award was presented at a function in New Delhi recently. Let's find out more details.
5: The Ignite Cell, which stands for Information for Growth through Nurturing Income Generating Innovation, Technology and Encouraging Entrepreneurs, was launched in line with the state government's long-term development vision. The initiative operates at the district collectorate and the aspirational blocks of Penuganchu Prolu and Ibrahimpatnam. A different government department runs the cell each day to create awareness about welfare schemes and development programs while providing guidance on financial assistance, technology, marketing and entrepreneurship. NTR District Collector Dr. Lakshmi Shah said, "The initiative has strengthened last-mile delivery of government services, promoted innovation and encouraged self-employment, reflecting NTR District's commitment to effective people-centric governance." The collector described the award as a recognition of the collective efforts of Team NTR District and congratulated officials for successfully implementing the initiative. He said the honor would inspire the administration to work with greater commitment towards achieving the goals of Swarna Andhra 2047 and Viksit Bharat. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vijayawada.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। और श्रोताओं, अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि जय

0: और इसके साथ ही तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अकिलन को भी आज हम याद कर रहे हैं। वे तमिल साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है।
1: Well, today we're also paying tributes to R.D. Burman, the pluralist who redefined film music, fondly known as Pancham. Well, Pancham, the eminent musician and composer, brought together Indian musical traditions and Western rhythms in a distinctive style.
2: 27 June 1939, S.D. or Mrs. S.D. ko ladka hua.
0: तो आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे और इसके साथ ही उन्होंने कई पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनूठा मिश्रण दिया था।

और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ करिश्मा और शगुन चोपड़ा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर

0: चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहा, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम, राम।
0: तो नीलम बहन आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये लोकगीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: सुनीता पांचाल द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम प्रवीण यादव है
1: और मैं हूं दर्पण त्रिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
0: खेल बार बार हमें चौंकाता है, कभी कोई छोटा देश, कभी कोई अनदेखी टीम, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ऐसे खेल जाते हैं कि पूरा खेल ही बदल जाता है। उस दिन सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं जीता जाता, बल्कि ये यकीन भी जीतता है कि हौसले का कोई आकार नहीं होता।
1: जिंदगी में भी कई बार हम खुद को अपनी परिस्थितियों में छोटा मान लेते हैं, लेकिन पहचान कभी शुरुआत से नहीं बनती, उसे हिम्मत और मेहनत बनाती है। क्योंकि खेल हो या जिंदगी, दुनिया आपको आपके कद से नहीं, आपके दम से पहचानती है। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसी ही खबरें हैं जहां पर छोटे छोटे देशों ने विश्व स्तरीय मंचों पर अपना परचम लहराया है और हम सबको प्रेरित किया है। आइए नजर डालते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और साथ के साथ बैडमिंटन से जुड़ी भी कुछ खबरों पर नजर डालेंगे।
1: आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में क्या क्या रहा कल खास, इस पर एक नजर डालेंगे
0: जी। और सेमीफाइनल के क्या समीकरण है उस पर नजर डालेंगे। फीफा विश्व कप को कैसे भूल सकते हैं, फुटबॉल की दुनिया में कौन कौन सी टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुकी हैं, उस पर नजर डालेंगे।
1: और बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 मैच, खेले गए मैच के बारे में,
0: और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी मैच पर भी डालेंगे नजर। FIH प्रो लीग में भारत का दबदबा कायम है, साथ के साथ अन्य कई खेल खबरों पर होगी नजर। एथलेटिक्स पर नजर डालेंगे, साथ के साथ वॉलीबॉल पर नजर डालेंगे। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे दर्पण और प्रवीण के साथ। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: जी, तो शुरुआत करते ही हैं उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बात कर रहे हैं फीफा विश्व कप की।
1: Yes, he's round the last defender, onto his right foot. Yeah, it's a goal!
2: तो बात करते हैं कल खेले गए फीफा विश्व कप फुटबॉल में नॉर्वे वर्सेस फ्रांस की। बहुत ही बढ़िया और कमाल का मैच रहा जिसमें फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया। फ्रांस की ओर से उस्मान डेम्बेले ने हैट्रिक लगाई और फ्रांस और नॉर्वे दोनों ही क्वालिफाइड राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
0: दूसरी ओर सेनेगल और इराक के बीच भी ग्रुप आई का मुकाबला खेला गया, जो मुकाबला एक तरफा रहा। सेनेगल ने 5-0 से अपना पहला विश्व कप खेल रही इराक को मात दी। सेनेगल भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुका है।
2: और वहीं केप वर्दे वर्सेस साउथ अरेबिया का मैच, जो कि 0 ड्रॉ की स्थिति में रहा और जिसमें ग्रुप एच के अंदर केप वर्दे पहली बार खेलते हुए राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं।
0: जी, केप वर्दे की कहानी शानदार रही है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बसा एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है, पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किए, स्पेन को ड्रॉ पर रोका और कल सऊदी अरब को भी ड्रॉ पर रोका, जिसके चलते अपने ग्रुप में दूसरा पायदान हासिल करते हुए पहुंच चुके हैं वो राउंड ऑफ 32 में। क्या कहानी रही है केप वर्दे की। तो वहीं स्पेन ने कल जीत हासिल करी यूरुग्वे के खिलाफ। यूरुग्वे और स्पेन के बीच में ग्रुप एच का यह मुकाबला खेला गया जिसको स्पेन ने 1-0 से जीता। आपको याद दिला दे कि यूरुग्वे वो टीम रही है जिसने पहले 2 संस्करण फीफा विश्व कप के जीते थे, 2 बार ओलंपिक का गोल भी हासिल किया है, लेकिन कल 42वें मिनट में एलेक्स बयेना के गोल के चलते यूरुग्वे को हार मिली और यूरुग्वे ग्रुप स्टेज से इस विश्व कप से बाहर हो चुका है।
2: और वहीं न्यूजीलैंड और बेल्जियम के बीच खेले गए मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराकर 5-1 से न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और क्वालिफाइंग राउंड में अपनी जगह और पक्की कर ली है।
0: यूं तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो रैंकिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो इस विश्व कप में खेल रही सभी 48 टीमों में से सबसे नीचे है, लेकिन उनसे उम्मीद थी एक अच्छे प्रदर्शन की बेल्जियम की टीम के खिलाफ। उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं, पहले 20 मिनट कश्मकश जरूर जारी रही लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। जब उनके कोच डैरन बेजली से पूछा गया कि आप किस तरह देखते हैं इस कैंपेन को, तो उन्होंने बताया कि निराशा जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी है कि हम फीफा विश्व कप तक पहुंचे और एक अच्छी टक्कर दी।
3: It's probably still sinking in, you know, that we're out and that we have to go home. This was a tough evening tonight. You know, we knew we would have to survive. We knew, you know, that when Belgium put their team sheet in, that, you know, this is a really strong team and the first 20 minutes

0: tough, you know, living, you're staying in the game, surviving. And, you know, I thought the guys did a great job defending, you know, last gasp defending, emergency defending, you know, and we were staying in the game, and that was what the plan needed to be. We needed to stay in the game as long as we can, open the game up second half, you know, and try and win the game tonight, get that win that we wanted. But then we conceded a really poor goal, and, you know, then we have to chase a game because, you know, this is a team that are not just going to go, let's lose 2-0. We opened the game up, made a lot of attacking changes, you know, and against a team like this, you know, you run the risk of conceding goals like we did. But, you know, when I look back, I'm so proud of the players. They worked so hard today, but our World Cup exit isn't really tonight. It was, you know, when we're leading twice against Iran and leading against Egypt, they were the points that we needed to qualify out of this group, and we didn't do that, and we left ourselves a tough task to beat Belgium tonight.
1: और इसी दौरान एक और मैच खेला गया इजिप्ट और ईरान के बीच, जो कि एक एक की बराबरी पर रहा, जिसके अंदर इजिप्ट ने अपनी क्वालिफाइंग राउंड में जगह पक्की कर ली है, वहीं ईरान की स्थिति अभी साफ नहीं है।
2: जी, और अब नजर डालते हैं आज होने वाले मुकाबले। आज यानी कि 12 बजे के बाद जो मुकाबले शुरू होंगे वो भारतीय समय के अनुसार कल, लेकिन यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के समय के अनुसार आज वो मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे होने वाली है पनामा और इंग्लैंड के बीच। पनामा और इंग्लैंड ग्रुप एल का हिस्सा है, और वहीं क्रोएशिया और घाना भी ग्रुप एल का हिस्सा है। क्रोएशिया बनाम घाना, पनामा बनाम इंग्लैंड, ये दोनों मुकाबले एक साथ शुरू होंगे। जैसा आप जानते हैं, फीफा की गाइडलाइंस के हिसाब से हर ग्रुप का आखिरी मुकाबला एक साथ शुरू किया जाता है, और इंग्लैंड की टीम पर खासी नजरें होने वाली हैं, क्योंकि बतौर फेवरेट्स मानी जाती है इंग्लैंड, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन रहा है इस विश्व कप में वो उतना सराहनीय नहीं रहा है। घाना के खिलाफ ड्रॉ खेला था इंग्लैंड ने, जिसकी उम्मीद इंग्लैंड के फैंस नहीं कर रहे थे। पनामा की टीम हालांकि इंग्लैंड के सामने कच्ची मानी जाती है, लेकिन इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस टुशेल कहते हैं कि भले ही पनामा बड़ा नाम ना हो, लेकिन अपने दिन पर वो जरूर उलटफेर कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास उनको बिल्कुल भी हल्के में लेने का समय नहीं है।
3: We see a well-coached, a well-drilled team from a coach who's there now since 5-6 years. It's not the most famous, the most well-known football nation, most glamorous football name, but they were strong into this group. They can play in the role of an underdog. They can play without any pressure. So that's what we expect. It's a complex game. We expect them from time to time defend again in a deep block. So we have to try to break it down, accelerate the game in the right moments. But we see also high press against our goal kicks, against our goalkeeper when in game. We see ball possession phases. So yeah, it's a complex one. It's a complex one. We are in the role of the favorites. We have to do some stuff better, details better than against Ghana. But it's another challenge, and we need another top performance to be able to win.
2: जी हाँ, टॉप परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि घाना के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाए थे। खैर, घाना की टीम भी शानदार प्रदर्शन करती आ रही है इस विश्व कप में। आपको बता दे कि घाना उन 4 टीमों में से है जिसने अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, यानी घाना की वो जो डिफेंस की दीवार है उसको कोई भी टीम तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाई है। लेकिन क्रोएशिया को दमखम दिखाना होगा, क्योंकि घाना तो राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना चुका है। क्रोएशिया की टीम के लिए लगभग करो या मरो का ये मुकाबला होने वाला है, और इसलिए घाना के कोच कार्लोस क्वेरियोज कहते हैं कि हम क्रोएशिया को हल्के में नहीं ले रहे हैं।
4: Playing against a great team, which is Croatia, with a lot of wonderful players, experienced players. And for sure it will be tough, intensive for both sides. But at the end of the day, I do believe it will be a lot of fun and entertainment for everybody. And I hope with the inspiration of my players that we'll be able to express good football, the best football on the day, on the pitch. And if we're able to do that, I'm sure that we'll be close, more close to win, which is the target that we have in our mind to play for win, as always. So
1: जी हाँ, आप जिनको सुन रहे थे वो घाना के कोच थे, लेकिन वो हैं पुर्तगाल से, और पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच भी आज भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। और पुर्तगाल में कौन है?

0: ये शायद भारतीय दर्शकों के लिए बताने की जरूरत नहीं। जी हाँ, रोनाल्डो, जिनको देखकर भारतीय लोग के अंदर एक अलग सा ही उत्साह आ जाता है, और इस मैच का आनंद भी भारतीय उसी तरह उठाएंगे जिस तरीके से उन्होंने बाकी मैचों का आनंद उठाया है।
1: जी, ये ग्रुप के का मुकाबला है और इसी समय शुरू होगा ग्रुप के में एक और मुकाबला, डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान। याद दिला दें आपको, उज्बेकिस्तान भी अपना पहला विश्व कप खेल रही है, हालांकि उनके राउंड ऑफ 32 में जाने के जो समीकरण है वो नहीं बन रहे हैं, उज्बेकिस्तान बाहर हैं, तो इसलिए अपनी साख के लिए खेलेगी। दूसरी तरफ डीआर कांगो की अभी भी उम्मीद बरकरार है। इसके अलावा भी कुछ मुकाबले खेले जाने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया ग्रुप जे के एक मुकाबले में आमने सामने होंगी, तो दूसरी तरफ उसी समय शुरू होगा अर्जेंटीना का मुकाबला। एक तरफ रोनाल्डो पर नजर रहेगी तो अर्जेंटीना के मेसी पर भी नजर रहेगी और जॉर्डन के खिलाफ ये मुकाबला होगा। तो फीफा विश्व कप में पर तो नजर बनी ही रहेगी, लेकिन भारतीय खेल प्रशंसकों की नजरें क्रिकेट पर भी बनी हुई है। फीफा विश्व कप की चर्चा को विराम देते हैं, रुख करेंगे अब क्रिकेट का।
2: Yes, he's round the last defender, onto his right foot. It's a goal!
0: तो जी हाँ, बात करते हैं कल खेले गए T20 मैच भारत और आयरलैंड के बीच में, जिसमें भारत को आयरलैंड से 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
1: जी, और आयरलैंड की वो टीम जो वैसे तो जायंट किलर्स के रूप में देखी जाती है, क्योंकि हम सबको याद है 2007 के विश्व कप में कैसे उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, 2011 में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 2015 में वेस्ट इंडीज को हराया था, लेकिन भारत के खिलाफ ये उनकी पहली जीत है। और भारत टू टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है जहां तक T20 विश्व कप की बात होती है, और इसीलिए आयरलैंड के लिए कल की ये जीत बहुत ज्यादा खास रही है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह सूरत हाल रहा मैच का। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में 30 रन पर 3 विकेट गवाई, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी करते हुए कप्तान लॉर्कन टकर के अर्धशतक के बदौलत 182 रन उन्होंने बनाए। दूसरी तरफ भारत की पारी लड़खड़ाई और अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बल्ले से रन निकले, 49 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, लेकिन बाकी का बल्लेबाजी क्रम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया। आयरलैंड के लिए कई हीरो साबित हुए, जिनमें एक हीरो थे जय मुंद्रा, और कमाल की कहानी है, जय मुंद्रा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, अंडर 14 क्रिकेट इन्होंने राजस्थान में खेली, लेकिन किस्मत ले गई इनको आयरलैंड, और कल भारत के खिलाफ डेब्यू करते हुए इन्होंने संजू सैमसन और शिवम दुबे का विकेट लिया और आयरलैंड को जीत दिलाई। खैर, भारतीय टीम की आलोचना इस बात पर हुई कि परिस्थितियों को समझने में और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में भारतीय टीम नाकाम रही। जब अभिषेक शर्मा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी।
3: नहीं, आई फील विकेट में थोड़ा बहुत तो कुछ था। आई फील जैसे आयरलैंड ने बैटिंग की, देयर वाज फ्यू शॉट्स जो एग्जीक्यूट हो रही थी और कई शॉट्स थी जो मुश्किल थी मारनी, तो आई फील उसमें उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की और एग्जीक्यूट किया प्लान। एंड बाकी बैट्समैन का भी आई थिंक यही था कि जो शॉट्स थोड़ी लिमिटेड शॉट्स थी जो यहाँ पे लग रही थी, बट आई फील दे प्लान्ड रियली वेल एज अ टीम। वी हैव शोन दैट इंटेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स कि हमें जब भी एक डोमिनेट करना है, जब भी हमें मौका मिलेगा या कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू कम आउट एज अ यू नो डोमिनेटिंग टीम। सो आई थिंक प्लान्स वही थे हमारे आज भी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए अच्छी तरह। नहीं सर, ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि जो भी दो टीम्स दोनों खेलने आती है आई फील, बट जो उस टाइम पे अच्छा खेलती है प्लान्स एग्जीक्यूट करती है। और आई फील जैसे आयरलैंड ने बैटिंग बॉलिंग इवन फील्डिंग में जैसा एज अ ग्रुप पर आए काफ़ी, तो आई फील दे ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री। हमें कुछ आई फील कोई थोड़ी चीज़ें थी जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम एज अ टीम। ऑब्वियसली आप जब भी खेलते तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम द टीम एंड देन गो टू द नेक्स्ट मैच। आई फील इट्स one of those match and obviously we learn a lot of things as a group. They played really well, they truly deserved the victory.
0: तो जी हाँ, बात करते हैं महिला विश्व कप 2026 की, जिसके अंदर पाकिस्तान और नीदरलैंड का मुकाबला अभी चल रहा है, और शायद नीदरलैंड एक बहुत बड़ा उलटफेर करने की राह पर है, और उनको चाहिए 22 गेंदों में 39 रन।
1: जी 22 गेंदों में 39 रन चाहिए, 4 विकेटें हाथ में है, बड़ा उलट फिर हम क्यों कह रहे हैं। नेदरलैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमें वैसे तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा उलट फिर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेदरलैंड्स की महिला टीम पहली बार T20 विश्व कप का हिस्सा बनी है और आज तक इस विश्व स्तरीय मंच पर कोई भी मुकाबला नहीं जीती है। तो अगर पाकिस्तान को हराने में ये टीम कामयाब होती है तो एक बड़ा उलट फेर माना जाएगा और साथ के साथ नेदरलैंड्स की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा। खैर दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि आज शाम दो मुकाबले होने वाले हैं इसी विश्व कप में। वो दोनों मुकाबले जो होने वाले हैं वो दूसरे ग्रुप से हैं जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें शिरकत करते हुए नजर आएंगी। कल शाम उसी ग्रुप से श्रीलंका और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला हुआ जिसको श्रीलंका ने एक बॉल रहते जीता। 152 रनों का लक्ष्य था, श्रीलंका की टीम ने लड़खड़ाते हुए किसी तरह अंतिम ओवर में जीत हासिल करी। स्कॉटलैंड की टीम के लिए वो जीत जरूरी इसलिए थी क्योंकि अगर स्कॉटलैंड उस मुकाबले को जीत जाता तो सीधा पहुंच जाता अगले विश्व कप का, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता, लेकिन वो नहीं हो सका। श्रीलंका ने जीत दर्ज कर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी, लेकिन श्रीलंका सेमीफाइनल में तब पहुंचेगा जब वेस्ट इंडीज को अपने अंतिम मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज आज ब्रिस्टल में आयरलैंड से भिड़ेगा। वैसे तो अगर आप कागज पर देखें वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है, लेकिन हाल ही में हुए मुकाबलों में एक बारिश से ग्रसित मुकाबले में डीएल मेथड के चलते आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया था और इसलिए वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज जानती हैं कि आयरलैंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो खुद भी कहती हैं कि हमारी टीम भी हमेशा बतौर अंडरडॉग ही आती है क्योंकि आज की डेट में शायद हमें उतना मजबूत नहीं आका जाता जितना 2016 में आका जाता था, लेकिन फिर भी हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं।
4: But yeah, women's cricket has grown a lot since then. I actually think that back in 2016, things were probably a bit more set up for us to do really well. I think back then, women's cricket had a lot to do with natural talent and we flourished a lot. Whereas now, we probably are underdogs as we're meant to be. And I think every time we come to a World Cup and we perform really well, we're punching above our weight. Hopefully we can go into the next match against Ireland, win that one, and continue coming into this tournament as underdogs and performing really well. And I guess surprising people.
0: तो जी हाँ, एक और मुकाबला आज खेला जाना है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड भारतीय समय अनुसार 11 बजे द ओवल में।
1: जी द ओवल लंदन का मशहूर मैदान। और ये मुकाबला क्यों जरूरी है आपको बता दें, न्यूजीलैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है वो इस बार जतोजहद कर रही है सेमीफाइनल में पहुंचने की। अगर वेस्ट इंडीज हार जाती है अपने मुकाबले में तो फिर न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार रहेंगी और फिर न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को हरा दे तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में बना रहेगा। तो कई सारे समीकरण हैं, ये ग्रुप बी की हमने बात करी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय प्रशंसक अगर आप हैं तो आपका जो दिल है वो ग्रुप ए की तरफ है जहां पर भारतीय टीम कल नहीं, आज नहीं, कल अपना मुकाबला खेलने वाली है। भारत का अगला मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, लॉर्ड्स के मैदान में 28 जून को वो मुकाबला खेला जाने वाला है जो भारत के लिए एक तरीके से करो या मरो का मुकाबला है। अगर भारत जीतता है तो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, हारता है तो फिर उसको घर वापस आना पड़ेगा। और बड़ी आलोचना भारत की हुई है फील्डिंग को लेकर क्योंकि आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया उसमें 4 कैच छूटे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया उसमें 3 कैच छूटे। राधा यादव जिनको बेस्ट फील्डर माना जाता है भारतीय टीम का, उनसे भी कैच छूटे। तो राधा यादव से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने बताया कि सूरज का आंखों में पड़ना, क्योंकि जिस समय पर मुकाबला हो रहा है और जिस एंगल पर बॉल आ रही है वो कहीं ना कहीं इस बात का कारण बना है।

जी हाँ, तो उम्मीद है कि भारत वापसी करेगा, मजबूत वापसी करेगा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। खैर, उस पर तो नजरें बनी रहेंगी, नजरें बनी हुई हैं हॉकी की दुनिया पर भी, जहां पर कल भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ, आइए उस पर नजर डाल

0: भारत की टीम है बाईं तरफ जहां पे पहुंची अब्बास, अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
1: तो भारत ने कल 2-1 से नहीं 7-1 से पाकिस्तान को मात दी। आपको याद दिला दे, 3 दिन पहले हुए मुकाबले में 4-3 से भारत ने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ और कल भी मुकाबले को एक तरफा बना दिया।
2: और जैसा भारत खेलता आया है पिछले 10 सालों से, हम पाकिस्तान से पिछले 10 सालों से इस गेम में हारे नहीं है और कल भी भारत ने वही वर्चस्व कायम रखा है जिसमें भारत की तरफ से 7 गोल दागे गए, जिसमें सुखजीत सिंह ने 20वें मिनट में, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में, हार्दिक सिंह ने 34वें मिनट में, जुगराज सिंह ने 35वें मिनट में, अभिषेक ने 41वें मिनट में, राजकुमार पाल ने 44वें मिनट में और दिलप्रीत सिंह ने 54वें मिनट में गोल दागकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। और ये अब बता दें आपको दर्शकों की 12 अप्रैल 2016 से हम पाकिस्तान से हारे नहीं है और अभी तक 3278 दिन से टीम इंडिया अजय है हॉकी के अंदर।
1: जी, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का दबदबा कायम रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस हार के चलते पाकिस्तान का FIH प्रो लीग से रेलिगेट होना अब लगभग तय है। खैर, ये तो बात रही हॉकी की। बैडमिंटन और एथलेटिक्स की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर आइए नजर डालते हैं। जी, बैडमिंटन में नजरें हैं US ओपन पर, जहां पर 3 भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जीत अब जगह बना ली है अपनी सेमीफाइनल में। ये 3 खिलाड़ी कौन से हैं? सबसे पहले तो बातचीत हो रही है वुमेन सिंगल्स की, जहां पर देविका सिहाग ने अपना मुकाबला जीत हासिल की है क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल की। उनका सेमीफाइनल मुकाबला आज खेले जाने वाला है और उनके सामने होने वाली है दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लिन क्रिस्टोफरसन, जो 19वें रैंक पर है BWF में। यानी मुकाबला कड़ा होने वाला है, चुनौती कड़ी होने वाली है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि देविका सिहाग अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो दूसरी तरफ दिग्गज श्रीकांत किदाम्बी से भी काफी सारी उम्मीदें हैं, उन्होंने भी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है और जापान के युदाई ओकुमोटो के खिलाफ आज वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं। श्रीकांत किदाम्बी के नाम से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन एक युवा चेहरा भी उभर कर सामने आया है, वो है भारत के रौनक चौहान, जिन्होंने सेमीफाइनल में पुरुषों के एकल वर्ग में जगह बनाई है US ओपन में और अब चाइनीज ताइपे के सूली यांग के खिलाफ वो सेमीफाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बैडमिंटन की दुनिया पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन अब रुख करते हैं एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स में 65वीं इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि खेली जा रही है भुवनेश्वर में, वहां पर कई सारे भारतीय एथलीट्स जदोजहद कर रहे हैं एशियन गेम्स के क्वालिफिकेशन मार्क को हासिल करने की। किन किन खिलाड़ियों ने किया है उस पर नजर डालते हैं।
2: जी हाँ, जो नेशनल इंटरस्टेट चैंपियन इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में चल रही है, उसमें हर्डल रेस के ट्रिपल जंप में 25 वर्षीय भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने 16.92 मीटर की शानदार छलांग लगाकर शीर्ष पर जगह बनाई और उन्होंने एशियन गेम्स के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार कर लिया है। और उसी के अंदर और भी कई खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इस स्टैंडर्ड को पार किया है, जिनके नाम है सेल्वा प्रभु, अब्दुल्ला अबू बकर, मोहन राज जे, जेली वेंगस्टर। और इसी दौरान हर्डल रेस के अंदर तेजस सिरजे ने 110 मीटर की रेस को 13.61 सेकेंड के अंदर जो है वो
1: जी तो उस रेस को पूरा किया है। और इसके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया है। आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स होने वाले हैं इसी वर्ष जापान में और जापान में खेले जाने वाले इन एशियन गेम्स पर सभी की निगाहें होने वाली हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भारत के एथलीट्स वहाँ जाएँ और ढेर सारे पदक हमारे लिए जीत के आएँ। खैर, कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनके नाम हम आपको बताएंगे जिन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल किया है।
2: जी हाँ, हर्डल रेस के अंदर है मानव आर, जिन्होंने 13.66 सेकंड के अंदर क्वालिफाइंग मार्क पार किया। कृष्णा एम है हर्डल रेस के अंदर, जिन्होंने 13.969 सेकंड के अंदर क्वालिफाइंग मार्क को पार किया और डिस्कस थ्रो हैमर थ्रो के अंदर माफ कीजिएगा हैमर थ्रो के अंदर जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करने वाले खिलाड़ी हैं दबजीत सिंह 69.62 मीटर 72 पर पहला स्थान स्थापित किया और प्रवीण कुमार 69.58 मीटर पर दूसरा स्थान हासिल किया।
1: जी तो इन सब पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, नजरें कुछ अन्य खेलों पर भी बनी रही है जिसमें अभी भारतीय खेल प्रशंसकों की जो दिल की धड़कन बनकर आया है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि महिलाओं के डिस्कस थ्रो में सीमा सान्या यादव और निधि ने भी क्वालिफिकेशन मार्क हासिल कर लिया है जो पिछली खबर आई है। उसके साथ साथ एक और खबर ये आई है कि पुरुषों की 1500 मीटर की हर्डल रेस और महिलाओं की 400 मीटर की रेस में विथ्या रामराज और पुरुषों की 1500 मीटर की हर्डल रेस में गुलवीर सिंह ने भी ये मार्क हासिल किया है। खैर एथलेटिक्स पर हमारी नजर बनी रहेगी लेकिन अब चलते हैं एवीसी मेंस कप की तरफ। बात कर रहे हैं हम एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की। जी हाँ, तो भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मात दी थी जिसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में मुकाबला कड़ा होने वाला है। आज शाम 7 बजे भारतीय टीम होगी इंडोनेशिया के विरुद्ध अपना मुकाबला खेलेगी जिस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी। भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी जब इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम गई थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तरफा अंदाज में मुकाबला जीतेगी इसकी उम्मीद तो नहीं की गई थी लेकिन भारतीय टीम ने दिखाया है कि अगर ठान लिया जाए तो फिर बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी जा सकती है। वही वॉलीबॉल टीम ने करके दिखाया है और अब हम उम्मीद करते हैं कि इंडोनेशिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। खैर दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पाकिस्तान बनाम नेदरलैंड्स की आईसीसी वुमेन्स टी20 विश्व कप 2026 में, जहां पर हम आपको बता रहे थे कि नेदरलैंड की टीम उलटफेर की तरफ अग्रसर थी लेकिन वो उलटफेर की जो उम्मीदें हैं उनको पस्त कर दिया गया है क्योंकि नेदरलैंड की टीम ने एक कोलैप्स देखा है। जी हां, 88-5 था स्कोर जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था और केवल एक रन और जोड़कर 5 विकेट गवा दी नेदरलैंड ने जितनी देर में हमने आपको बाकी सारे खेलों की खबरें सुनाई। तो इसके चलते पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीता है और पाकिस्तान की ये इस विश्व कप में पहली जीत है। नेदरलैंड्स की टीम बिना कोई मुकाबला जीते बाहर हो गई है लेकिन इस विश्व कप में जो बड़ा मुकाबला है वो कल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आकाशवाणी पे आप लाइव कमेंट्री का आनंद ले पाएंगे। आज खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में इतना ही। मेरा नाम है दर्पण
2: और मेरा नाम है प्रवीण
1: और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ हमें इजाजत दीजिए। कल 5:30 बजे खेल जगत की सभी खबरों के साथ हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

0: किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म

0: लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन, रक्तदान शिविर एवं फ्री मेमोग्राफी टेस्ट का आयोजन और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वरांजलि। 23 जून मंगलवार को कृषि भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं को बताया,
1: सभी राज्यों को आग्रह किया है कि जो उपलब्ध जल है उसका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए। मनरेगा जो अभी तक चल रही है, इसके बाद विकसित भारत जी राम जी चलेगा, उसमें भी निर्देश दिए गए कि इनको ठीक करके रखें ताकि कम वर्षा भी हो तो पानी को हम संग्रहित कर सके और उस पानी का बेहतर उपयोग कर सके। ऐसी फसलें जो जलवायु अनुकूल भी हो और डाइवर्सिफिकेशन भी हम करें, इनमें फसल विविधीकरण के कारण एक फसल पर निर्भरता कम हो जाए, इंटरक्रॉपिंग और एक साथ बाकी फसल लगाएं, दलहन मोटा अनाज और तिलहन ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी ठीक से हो सकती है, तो उसकी सलाह भी राज्यों को दी गई है। और राज्यों से ये भी कहा कि अगर सामान्य बुआई से बारिश का अंतर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वैकल्पिक फसलें कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि हम खेत खाली नहीं रहने देंगे किसान के, इतना पानी तो गिरेगा कि कोई ना कोई फसल हो जाए, तो उसकी तैयारी भी की है। एक बीज की व्यवस्थाओं का बड़ा सवाल है, वर्तमान परिस्थितियों में बीज की पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रखी और 1% बीज ऐसे जिलों के लिए सुरक्षित भी रखा है कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम उपलब्ध करा सकें तब जब दोबारा बोने की जरूरत पड़ जाए। खाद अभी हमारे पास खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त है, लेकिन जिन जिलों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है वह समय पर पहुंचे उनकी भी पहचान की गई है ताकि बारिश अगर हो जाए तो तत्काल बोनी की जरूरत पड़ेगी, समय पर वहाँ बोनी हो सके। एक ये आग्रह किया कि 75 से लेके 100 मिलीमीटर वर्षा जब हो जाए, मतलब जमीन में पर्याप्त नमी हो जाए तब बोनी करें, थोड़ी सी बारिश में बोनी अगर कर दी तो बीज खराब होने की संभावना रहेगी। वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और समय पर फसल का बदलाव, इसके बारे में भी हमने तैयारी की है, क्योंकि मानसून अगर बहुत कमजोर रहा तो चारे का संकट भी पैदा होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। जिन क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थिति रहने की संभावना है वहाँ फसल बीमा योजना का व्यापक कवरेज हो, और जिला प्रशासन को हमने आग्रह भी किया, राज्य सरकारों को ये निर्देशित किया कि वो जिला प्रशासन को कोऑर्डिनेट करने के लिए सबसे प्रभावी इकाई के रूप में सक्रिय करें।
0: 20 जून शनिवार को जनपथ स्थित फ्री मिशन लॉज सेंट जॉन द एवेंजेलिस्ट नंबर 22 द्वारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस समारोह के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर और फ्री मेमोग्राफी टेस्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में फ्री मिशन लॉज सेंट जॉन द एवेंजेलिस्ट नंबर 22 के रीजनल ग्रैंड मास्टर पुनीत सोहल ने बताया,
2: ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, ये अपनी कड़ी का 25वां ब्लड डोनेशन कैंप है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे जो कि 24 जून को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में उसके आसपास हम इस तरीके के कार्य करते हैं कि जिसमें हम सोसाइटी के कुछ लोगों की मदद कर सकें और अपना आपस में इस तरीके के काम करें जिसमें ब्लड डोनेशन भी है और आईज चेकअप, मेडिकल चेकअप वगैरह। आज जो ये कैंप है इसके साथ में हमने मेमोग्राफी का भी एक चेकअप कैंप लगाया हुआ है। इस साल हमारे मिला के कोई 9 ब्लड डोनेशन कैंप पूरे नॉर्दर्न रीजन में लगाए जा रहे हैं। 28 तारीख जो है अगले संडे हमारा एक वॉकाथॉन के नाम से एक प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे दिल्ली में हम कोई 400-500 मेंबर्स मिल

0: के कनॉट प्लेस में हम वॉक करते हैं। ये जो वॉकाथॉन है ये हर एक सिटी में तो अगले संडे सुबह 6 बजे हर सिटी में साथ के साथ होगा ये कार्यक्रम।
1: मैं जनरल संजय अग्रवाल हूँ। मैं आर्मी से 2017 में रिटायर हुआ था। बहुत लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं आर्मी में रहते हुए मैंने बहुत बार ब्लड डोनेट कराया है, उसके बाद भी करता रहा हूँ, और हमेशा ब्लड डोनेट करने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है दिल में कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो हमें यही उम्मीद है कि जितने यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं उनका ब्लड काम आएगा, और अगर हम उसमें किस तरह से भी असिस्ट कर सकें That is the best thing we can do.
2: मैं हरीश दुआ। 24 घंटे में आपका ब्लड रिकवरी हो जाती है, प्लाज्मा भी 48 घंटे में हो जाता है, 72 घंटे में आप पूरा रिकवर कर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आज की डेट में भी मैं देना चाहूंगा, लेकिन मेरी एज ऐसी हो चुकी है कि 74 मैं अभी भी पूछ के आया उनसे, वो कहते हैं हम नहीं ले सकते। 65 साल तक तो मैं देता रहा हूं, लेकिन मैं आज की डेट में भी देना चाहूंगा, मैं फिट हूं। रेड क्रॉस वालों की अपनी एक लिमिट है कि वो एक एज के बाद वो नहीं लेते। लोग ज्यादा से ज्यादा आए, जुड़े रक्तदान में सहयोग दें।
3: मेरा नाम खुशवंत सिंह देखी है। जून का महीना जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में 24 तारीख को हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे यानी कि भाईचारा दिवस मनाते हैं। ऐसी कोशिश की है कि पूरा का पूरा महीना जून के में कुछ ना कुछ चैरिटेबल काम किया जाए। पिछले 25 वर्ष से ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप 20 तारीख के आगे पीछे या 23 हो या 21 हो 22 हो जब भी हो, जिसमें बहुत से लोग जो वॉक इन होते हैं वो आके रक्त देते हैं। इस समय रक्त की बहुत ज्यादा कमी है ब्लड बैंक्स में, क्योंकि थैलेसीमिक्स को बहुत खून चाहिए होता है। ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में चल रहे हैं। ये हमारा जो है फ्लैगशिप कैंप है, लेकिन इसके अलावा 7 ब्लड कैंप और लग चुके हैं अलग अलग सिटीज में।
4: मेरा नाम विक्रम पॉल है। ब्लड डोनेट करना शुरू में तो एक लगा था कि जैसे शौक है, बस बाद में एक हॉबी बन गई। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी नेगेटिव है। हमारे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि तेरा ब्लड ग्रुप ऐसा है कि बहुत रेयर है, मिलता नहीं है, तो जितना दान करोगे उतना अच्छा होगा। रेगुलरली मैं ब्लड डोनेट करता रहता। अगर मैं कभी रेडियो में भी सुन लूं किसी को किसी अस्पताल में खून की जरूरत है, उसको ए बी नेगेटिव चाहिए, तो मैं पहुंच के वहां भी डोनेट कर देता हूं। रूटीन का काम है मेरे लिए। तो ये कई बार तो कहते हैं कि 6 महीने में देना चाहिए, पर मैं जब पूछता हूँ अपने दोस्त से तो कहते हैं यार तेरा बॉडी अच्छी तगड़ी है, तो 2 महीने भी देते कुछ नहीं होगा तेरे को, देता रहा बस।
5: मेरा नाम अंजू थदानी पॉल और ये मेरे हस्बैंड है। शायद आज इसलिए ज्यादा हो रहा है कि हम दोनों ने इकट्ठे दिए, ये ब्लड डोनेट करते रहते हैं। मैं मतलब मेनली तो 6 महीने में एक बार कर दे। ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट थिंग दैट

दिल्ली केंद्र द्वारा स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत केडिया बंधुओं पंडित मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज कुमार केडिया द्वारा सरोद और सितार पर जुगलबंदी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुत है उसकी एक झलक।

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: श्रोताओ, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे संप्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नईयां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अन्तिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे एकम एकम इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे संप्राप्तः। सामाजिक अंतर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्री मोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और आज शनिवार है तो हमारे बहन भाइयों को सुनने को मिलेगा उन्हीं की पसंद का लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले अपने बहन भाइयों को याद दिला दें कि आज 27 जून है और आज के दिन हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। बहन भाइयों, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था।
1: बिल्कुल शशि भाई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दुनिया भर में सभी व्यवसायों का लगभग 90% कुल रोजगार का 60% से 70% और वैश्विक जीडीपी का 50% प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, इस दिन का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना, नवाचार को बढ़ावा देना और महिलाओं और साथ ही युवाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना है।
1: और भारत सरकार द्वारा इस दिन कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। छोटे व्यवसायों को सहायता के लिए सरकार ने उद्यम पंजीकरण और क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाएं भी लागू की हैं।
0: बिल्कुल, तो बहन भाइयों, ये तो आपने जाना अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के बारे में। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है और अधिकतर जो काम हो रहे हैं आज इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली किए जा रहे हैं और पढ़ने लिखने का तरीका भी अब बदल चुका है। डिजिटली माध्यम से ही आजकल विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो भारत सरकार भी विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में मदद कर रही है और इसके लिए सरकार ने दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल की व्यवस्था की है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। ये पोर्टल शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तकें और प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, और इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक्स, वीडियो और क्विज उपलब्ध हैं। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कोर्स और प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में सामग्री का समर्थन करता है।
0: बिल्कुल, और दीक्षा से जुड़ी पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड होते हैं जिन्हें स्कैन करके छात्र सीधे संबंधित डिजिटल सामग्री यानी कि ऑडियो वीडियो तक पहुंच जाते हैं। आप दीक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दीक्षा मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही दीक्षा पोर्टल की और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार,
2: हवलदार जय प्रकाश, ग्राम पाचौता बुलुंगसर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: महाशय ऋषिपाल खदाना को सुनवा दीजिए साहब।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: नाम नोट कर ले
0: जी।
2: करण खुशी नंदनी राधिका प्रतिज्ञा राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, शशि बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: खदाना को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: शशि भाई राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल को जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: दो चार नाम है जी, चौधरी मनवीर सिंह, चौधरी हरवीर सिंह और लड्डू और उसकी वाइफ है जी जलेबी और धर्मेंद्र जी।
0: हेलो ग्राम संसार,
5: शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: राजेंद्र जाटव और आबिपुर मानकी पोस्ट मोदी नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज मैं इटेरा गांव में हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर है। राज के कलाकार है ऋषि पाल खदाना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी, हमारी सिस्टर है बाला और ललित कुमार, मनोज कुमार, सुशीला, रजनी, हर्ष, गौरव, अस्मिता, मिन्नी, ये पूरे इकेड़ा गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
6: मैं सोनूगढ़ रोड जिला बंदरा से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: सुनो शिपल खतरना को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: तो एक नाम है
0: जी,
6: मेरी मम्मी फूलवती के पिताजी है मनबल से कोटा वोटा। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ, गांव रामसावा, जिला सहारनपुर।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: ब्रजपाल खड़ाना को सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: एक नाम लूंगा सर जी, हमारे

0: अरे भाई यार, अंजलि से बस असर बता। राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जी गाँव टोंगरा जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: हाँ सुनाओ जी, ऋषिपाल खदाना जी को
1: जरूर सुनवाएंगे
2: कुछ नाम भी है जी।
1: जी,
2: सोहनी शर्मा है, भवेश शर्मा, यश भारद्वाज।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल खदाना से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सोराम बोल रहे, डानी मिट्टी से, जिला भिवानी हरियाणा से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज नीलम चौधरी को सुनवा देना जी। एक
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: पोता है जी दीक्षांत, एक पोते आरती जी, वो भी सुनना चाहते हैं।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
2: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: नीलम चौधरी बड़ी अच्छी कलाकार है जी, उनकी रागनी सुना देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: अरे सबसे हैं जी, सुशीला शर्मा, सोनू शर्मा, लीलाधर शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार,
3: खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: नीलम चौधरी को अच्छी से रागनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, रामबती, चंद्रकांत, अजय कुमार, मोहन, आरव। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
4: सर नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: नीलम चौधरी को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के नाम है सर, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, पिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
5: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज नीलम चौधरी को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं गांव पनियार, जिला हिसार, हरियाणा से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: नीलम चौधरी को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के नाम जी, साहिल, ममता, विशाली। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार,
7: ग्राम संसार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: अशोक कुमार शर्मा।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज नीलम चौधरी को सुनाएंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
8: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मंटू शर्मा बोल रहा हूँ सर, गांव से एडा से।
0: मंटू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: नीलम चौधरी की आवाज में सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर नीलम चौधरी से ये रागनी, किस्सा रहेगा चंदर किरण का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सचिन जी सहरसे राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: केशव कुमार को सुनना चाहूंगा, साथ में बनवारी लाल यादव जी है गामड़ी वाले, और शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा मंदिरगढ़ से, राहुल सैनी सहरसे जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना छतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: केशव कुमार जी की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवा दो सर, दो एक नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
2: पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार। महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: केशव कुमार को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: एक केशव जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: जी,
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: केशव कुमार को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, पोती पोतान, कुछ नीतीश, एमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, मीसा, कंचन और भांजा मेरा गोविंद, मनोज, हरिचंद और संजीव, ज्योति, गीता, पूरे गांव की फरमाइश। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं? आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: केशव कुमार को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर सिंगारिया, सतीश सिंगारिया के भी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर केशव कुमार से ये रागनी, किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर

0: 3332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में

0: देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, मोटे अनाज यानी कि इनको आजकल श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, पोषण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे किसान बहन भाई जैसे जानते ही हैं कि जो मोटे अनाज में जो अनाज आते हैं, जिसमें कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके अलावा श्री अन्न में जई है, कोदो है, कुटकी है, रागी है और समा, ये भी मोटे अनाज में ही आते हैं। अब वो बात आती है कि क्या खास बात है मोटे अनाजों में।
1: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा, जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद

0: बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है, तो वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है और व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
1: बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज यानी कि स्वी अन्न उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होता ही है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने समझा कि जो मोटे अनाज होते हैं, स्वी अन्न होते हैं, पोषण की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। लेकिन मोटे अनाज उपभोक्ताओं तक तभी पहुंचेंगे जब आप इनकी खेती करेंगे। तो ऐसे में बाजरा है, मक्का है, जो मोटे अनाजों में ही आते हैं और आप इनकी खेती करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक जानकारी सुनवाते हैं जिसका विषय है मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, मक्का वैज्ञानिक, और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ की फसलों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई उसकी बिजाई, बीज, खेत की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। चाहे उसमें गर्मी की जुताई हो, चाहे बीज को बाजार से लेना हो, और चाहे उर्वरकों का प्रबंधन। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर खेती वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी कहीं कहीं उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण कुछ हमारे किसान भाई बहुत सी फसलें अगेती भी लगाने लगे हैं। और जब हम बात खरीफ फसलों की करते हैं तो उसमें विशेष तौर पे आज हम बाजरा है, मक्का की बात करते हैं, जिसको हमारे बहुत से किसान भाई मोटे अनाज भी कहते हैं, और ज़्यादातर किसान इनको खाने में भी प्रयोग करते हैं और दूसरे उत्पादों में भी इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मक्का और बाजरे की खेती किस तरीके से की जाए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके और किसान को लाभकारी खेती सिद्ध हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मक्का है, बाजरा है, इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप बताना चाहेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई उस पे अमल करके मक्के और बाजरे से अच्छा ही नहीं लाभकारी भी उनके लिए सिद्ध हो।
3: जी बिल्कुल, जो मक्का और बाजरा जैसे आपने कहा कि जो वर्षा आधारित मुख्य फसलों में अपने देश में इस मौसम में आती है, और जो इन फसलों का अगर कोई किसान इसका लाभकारी उत्पादन लेना चाहता है तो इसमें दो चीज़ें बड़ी मुख्य निकलने बल के आती है। एक तो बुआई का तरीका और दूसरा है उसके अंदर खरपतवार का पूरा अच्छे से प्रबंधन। तो जो शुरू के इसके दोनों फसलों में जो 30 दिन का खरपतवार का प्रबंधन होता है, उसमें जब बुआई करते ही उसके अंदर जो शाकनाशी हो गया या फिर आपके पास पशु चलित ऐसे इम्प्लीमेंट है या आप उसकी निराई गुड़ाई कर पाते तो अच्छा है। तो शुरू के 30 दिन इनके बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आप जो इसकी बुआई का तरीका है, हालांकि
2: जी
3: हम जानते हैं कि सारी किसान बड़े रिसोर्स पुअर हैं, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे आप अलीगढ़ का क्षेत्र लीजिए,
2: जी
3: आलू बहुत होता है। अब आलू के अंदर तो वो मेड़ बना के बोते हैं और बाजरे को फ्लैट में बोते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेड़ बनानी है जो आलू के लिए बना रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप संकर मक्का, हाइब्रिड संकर जो बाजरा है या साधारण बाजरा है, उसका आप लगा के देखिए, आपको 30 से 40% आपको उपज का इजाफा मिलेगा। ऐसे ही मैं मक्का में बात करता हूँ, मक्का में भी ये है, आप मेड़ बना के बुआई करिए। जो पानी ज़्यादा बरसता है तो भी
2: जी
3: उसकी नाली में पड़ा रह जाता है, पानी अगर कम बरसता है तो भी नाली में भरा रह जाता है, तो वो आगे तक चलता है। और जो छोटा पौधा जब होता है तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में 15-20 दिन लगातार बारिशें होती है तो पौधा दब जाता है या तो मर जाता है, नहीं मरता है तो भी मरे जैसा होता है, तो उसमें फसल में काफी नुकसान होता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो बुआई का तरीका बड़ा अच्छा करें, दूसरा आप खरपतवार प्रबंधन करें, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छी किस्मों का चयन करें। अच्छी किस्म मतलब जो गुणवत्ता युक्त किस्में हैं और जिनका बीज उपचारित है, तभी आप उसको सबसे अच्छा उपज ले सकते हैं। और क्योंकि ये फसलें दोनों ऐसी हैं जो आप देखिए बाजरा 70-80 दिन

0: में आ जाता है, 90 दिन में, मैक्सिमम 100 दिन में आ जाता है। ठीक
1: जी
0: है, ऐसे मक्का भी 80-90 दिन से लेके 110-120 दिन की फसल है। तो कम दिन में आप ये समझिए प्रतिदिन ये फसलें रोज की अगर दिनों का भाग देना तो 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो आपको जो शुरू का जो कृषि कार्य है वो काफी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आप बीज लेंगे, उसको उपचारित करेंगे, अगर जैसे मैं आपको बाजरे की बात करूं कैसे उपचारित करना है, तो आप उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है उसका 4 प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें, या थेराम जो होता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। जो बाजरे का बीज है वो
1: जी
0: आप 3 से 4 किलो ही लेना, ज़्यादा बीज नहीं बोना है, क्योंकि इसमें बीज भी छोटा होता है, दूसरे इसमें कल्ले भी फूटते हैं, सभी अपन लोग जानते हैं। तो जब आप 3 से 4 किलो बीज लेते हैं तो बहुत सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर में अच्छी बाजरे की उपज लेने की। ऐसे अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का का बीज है वो आप लें, जो सर्टिफाइड किस्म है, अच्छी किस्म है, उनका बीज लें। अगर आप अपने पास खुद बीज पैदा किया है तो बीज उपचारित करना जरूरी है, नहीं तो जो बाजार से ले रहे हैं अमूमन आपका बीज उपचारित आता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मक्का का जिक्र किया, जैसे आपने प्रमाणित बीज की बात करी, मक्का में एक शंकर मक्का होती है, संकुल मक्का होती है, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या अंतर है और कौन सा बीज अच्छा रहता है?
0: देखिए, संकर और संकुल मक्का है। संकुल मक्का के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे संकर मक्का का एक मिश्रण है। एक बड़े लेवल पे देखा जाए, वैसे ये साइंटिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भुट्टे रहते हैं। जैसे उसके अंदर भुट्टे लगना आज से स्टार्ट होंगे तो 10 दिन तक उसके अंदर भुट्टे आते रहेंगे, ठीक है ना। और हरे भुट्टे भी उतने दिन तक चलते हैं, नर मंजरी भी उतने दिन तक चलती है। तो उसमें आपकी परिपक्वता एक समय नहीं होती है, ये
1: जी
0: संकुल मक्का हो गई। तो आप इसका बीज अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 3 बार तक आप बो सकते हैं उसी बीज को, वो सब संकुल मक्का है। उसमें पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 3, 4, ऐसे करके आपका विजय है, उसके बाद में हमारा कंपोजिट वैरायटी भी है, ये होगी संकुल किस्में। और
1: जी
0: संकर किस्में वो होती है, दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो बच्चे होता है उसको संकर कहते हैं। तो उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसमें केवल 2 ही पेरेंट इन्वॉल्व है, संकुल के अंदर बहुत सारे पेरेंट इन्वॉल्व है। और जो उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता की जो संकर किस्में हैं उनमें ज्यादा रहती है संकुल किस्मों की बजाय।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई मक्का बरसात में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई मक्का पहले भी लगाते हैं, तो क्या एक ही बीज का प्रयोग करते हैं या इसकी अलग अलग किस्में हैं?
0: देखिए, हर समय जब भी आप बीज का चयन करते हैं तो अमूमन वैसे तो ये रहता है कि आप बीज अगर सही है तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, ये आपके फसल चक्र पे डिपेंड करता है। जैसे आज आपने लगाया और आपको खेत चाहिए 100 दिन बाद खाली,
1: जी
0: तो आप वैसी किस्म चयन करें जो 100 दिन बाद आपका खेत खाली कर दें।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि कोई अमेरिकन मक्का बोलता है, कोई मीठी मक्का बोलता है, और कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न के लिए मक्का उगाते हैं, तो ये तीनों की किस्में अलग अलग होती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न बोलते हैं वो
1: जी
0: एक चीज़ है, उसकी किस्म सबसे अलग है। जो मक्का की स्पीसीज होती है जिया मेज करके बोलते हैं, और आगे अगर उसके सेकर आटा लगा देते हैं इसका मतलब मीठी मक्का है। तो उसका दाना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, जब बुआई करते हैं तो बहुत सिकुड़ा हुआ दाना होता है।
1: जी
0: और उसकी जो बीज दर है वो आपकी 7 से 8 किलो 1 हेक्टेयर की होती है, साधारण मक्का 20 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। तो मिट्टी मक्का अमेरिकन भुट्टा एक ही है लेकिन साधारण मक्का से डिफरेंट है। बेबी कॉर्न क्या करते हैं, साधारण मक्का ही है लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो भुट्टा होता है वो छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है तभी तोड़ लेते हैं। तो उसकी जो अंदर की जो भुट्टा होता है, गुल्ली जिसको कहते हैं,
1: जी
0: वो गुल्ली बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसके अंदर आपका राइबोफ्लेविन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से। और सबसे अच्छा है वो हाइजेनिक है, इसमें कभी पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। अगर लोड कोई छोटा मोटा इसने डाला भी है तो इसके ऊपर 6 से 7 पत्तियां लगी होती हैं,
1: जी जी
0: उन पत्तियों के अंदर लिपटा रहता है। तो ये बहुत ही मतलब
1: सुरक्षित
0: हेल्दी, सुरक्षित और ऐसे करके सेफ वाला एक स्नैक बनता जा रहा है। इसको आप ऑर्गेनिकली भी पैदा कर सकते हैं अपने घर में। अगर कोई किसान भाई या कोई चाहे कि मैं पैदा करना चाहता हूँ, वो 4 मक्का के दाने लाएं, उनको लगाएं, और जब भुट्टा आने लगे उस समय उस भुट्टे को 3-4 दिन में तोड़, एक भुट्टा तोड़ेंगे नीचे या ऊपर फिर भुट्टा आएगा, ऐसे 3 भुट्टे एक ही पौधे पे आते हैं। जैसे हम भिंडी की सब्जी तोड़ते हैं ना,
1: जी
0: बैंगन की तोड़ते हैं या भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक भिंडी तोड़ी उसके ऊपर फिर भिंडी आ जाएगी, ऐसे ही इसके अंदर भुट्टा आता है, वो बेबी कॉर्न है।
1: जैसे बाजरे की बात करते हैं डॉक्टर साहब, बाजरा पहले होता था कि वो उसको खाते हैं और खाने हुए उसका आटा खराब होता है, क्या नई किस्में कुछ ऐसी निकाली जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक गुण भी हों और उसका आटा भी ज्यादा दिन तक रखा जा सके?
0: देखिए, जो बाजरा है उसके अंदर नई किस्में जितनी भी आ रही है अपने देश में पिछले 5-7 साल में, उनके अंदर हाई आयरन और हाई जिंक है।
1: जी
0: जिंक है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम कोविड के टाइम में देखा तो जिंक की टेबलेट काफी लोगों को दी गई, तो इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की, और जो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आजकल जितनी भी वेरायटी हमारी रिलीज हो रही है, जिसमें अगर आप देखें राजस्थान पर, गुजरात और हरियाणा के लिए KBH 108 है, GHB 558 है, फिर एक बहुत ब्लॉक

0: इस महाराष्ट्र में बुआई करना चाहता है, तो उसमें भी एक MP MS 17 कावेरी सुपर बॉस बायो 448 है, MP 78 बेहतर है, और संकुल किस्मों में आपकी राज 171 है, PCB 164 है। संकुल किस्म में बाजरे में या तो कुछ थोड़ी बहुत कोई खाने के लिए या पशु के चारे के लिए ज्यादा उगाई जाती है। जो बाजरा है बेसिकली जो आप कह रहे हैं, तो इनके अंदर बायो फोर्टिफाइड किस्मों का विकास हो रहा है, लेकिन जो आटा खराब हो रहा है
1: जी
0: तो उसमें क्या रहता है, रेंसिडिटी रहती है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही खराब होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन का कार्य जो पूसा संस्थान कर रहा है, वो उससे नई नई रेसिपी बना रहा है, उसके अंदर आपको रेंसिडिटी कम करने के लिए उसे प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी रेंसिडिटी कम हुई है उसको, जैसे हम 5 दिन रख पा रहे थे तो अभी 20 दिन रख पा रहे हैं, तो वो प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर है। ऐसी कोई किस्म नहीं है जिसके अंदर बाजरे का आटा खराब नहीं होता, बाजरे का आटा खराब सब में होता है अगर, लेकिन वो प्रोसेसिंग आप ठीक कर देते हो तो आपका ठीक रह सकता।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी भी किस्में निकाली गई हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है,
0: जी
1: कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो इस जलवायु को भी सहन कर सके, किस्में निकाली गई कुछ?
0: देखिए, अभी क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो एक साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में, धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा होता है। तो जब भी हम कोई किस्म को ब्रीड करते हैं तो उस किस्म को जितने भी उसकी प्रोजीनी है, जैसे 1,000 प्रोजीनी लगाई हमने,
1: जी
0: उनके बच्चे लगाए, 1,000 में से अगर 4 बच्चे ठीक कर रहे हैं, दूसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तीसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं कि ये किस्म अच्छी है और किसानों को दी जाएगी।
1: जी
0: तो वो जलवायु प्रतिरोधन क्षमता हम लोग पहले से डेवलप करते हैं, दोनों जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट है। अगर नहीं रहेगा तो आप देखिए, पिछले काफी सालों से हमारा मक्का और बाजरे का उत्पादन काफी बड़ा है, स्पेशली मक्का का तो बड़ा है लेकिन बाजरे का भी काफी बड़ा है। तो ये इसलिए बढ़ पा रहा है कि हम लोगों ने एक प्राकृतिक वेरिएशन है उसमें उनके बच्चों में से वो निकाल के ला रहे हैं, और वैसी किस्म को हम लेके आ रहे हैं जो आपकी जलवायु के प्रतिरोधन या सहिष्णुता होती है। दूसरा यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो
1: जी
0: वहाँ एक छोटी ड्यूरेशन की वेरायटी HHB 67, 67 मतलब वो 70 दिन की फसल है, और
1: जी
0: सबसे ब्लॉकबस्टर वेरायटी रही ये, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप हुई, अभी HHB 67+ भी आ गई है उसकी। तो ये चीज उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपको रहना है तो उस हिसाब से चीज आनी चाहिए, और ये दोनों फसलें ऐसी जगह हैं, ये उसी जगह होती है, बाजरा वहां होगा जब 500 mm से कम रेनफॉल होगी, मक्का वहां होगा जब 500 से 700 mm रेनफॉल होगी,
1: जी
0: दोनों का एरिया अलग है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम तो यही चाहेंगे कि आप किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो धान की फसल लगाते हैं उसको छोड़ के मक्का और बाजरा की लगाएं, जिससे पानी की भी बचत हो।
0: देखिए, हम किसानों को यही सलाह देंगे कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक संभावना है, अगर आप धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट करेंगे, मक्का और बाजरा को, जहाँ पे मक्का हो सकता है वहाँ मक्का करिए, ज़्यादा रेतीली ज़मीन है वहाँ पे आप बाजरा करिए, और वहाँ पे जैसे जैसे आप पानी को बचाएंगे, आप देखिए 3 से लेके 5 इरीगेशन लगती है मक्का और बाजरे में,
1: जी
0: और आप चावल में लेंगे तो आपकी 25 से कम कहीं नहीं लगती। तो आप देखिए, जो आप पानी ऊपर नीचे से डाल के ऊपर लेके आ रहे हो, और उसके अंदर आप चावल के अंदर भी काफी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपके नीचे जा रहे हैं, किसान भाई ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास जो पैदा हो रहा है, अब नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड से, उसको जरूर आप एक अंदाज में देख करके देखें, और इन फसलों की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा। मार्केट क्योंकि इन दोनों फसलों का काफी है, ये जैसे बायो फोर्टिफाइड हो गया, मिलेट का भी अपना है पूरा
1: जी
0: जोर है तो उससे है, और मक्का एक औद्योगिक फसल है, 95% से ज्यादा मक्का उद्योगों में प्रयोग होती है, बायोइथेनॉल के लिए भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर इससे छोड़ के निश्चित रूप से वहां जाते हैं तो आपका सेहत, मिट्टी का सेहत, और तीसरा पर्यावरण, तीनों की सुरक्षा होगी, और चौथा जो मैंने आपको बताया, जो आपकी मिट्टी के अंदर जाके पानी प्रदूषित हो रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है, उससे भी हमें निजात मिल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया किस तरीके से मक्का और बाजरे की खेती कर सकते हैं, अगर इसमें भी तकनीक का किसान भाई प्रयोग करें, जैसे सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, उसमें बूंद बूंद सिंचाई है, आपकी फवारी सिंचाई है, उसके द्वारा भी अगर करते हैं उसमें भी पानी की बचत होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी।
0: जी
1: डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शंकर लाल जाट और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं सत्येंद्र यादव।

0: जगत में।
1: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये रागिनी, और इस रागिनी के कलाकार थे सत्येंद्र यादव।
2: नीलम बहन, आज का जो समय है वो इंटरनेट डिजिटल मीडिया का समय है, और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर बैठे ही कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, अगर वो अपने फोन का, इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। और देखिए, आजकल तो हर क्षेत्र में तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, हर विभाग के अपने अपने ऐप हैं और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है? तो हमारे जो किसान बहन भाइयों को घर बैठे ही जरूरी जानकारियां हैं वो मिल जाएं, इसके लिए किसान सुविधा ऐप भी आ चुका है और हमारे जो किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किसान सुविधा ऐप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सलाह, इस तरह की 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, किसान सुविधा ऐप की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ऐप मौसम की जानकारी, वर्तमान तापमान, बारिश और नमी के साथ साथ अगले 5 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बताता है, और इस ऐप के माध्यम से देश भर की मंडियों के भाव और फसलों की दैनिक और नवीनतम मूल्य की जानकारी मिलती है, और इस ऐप के माध्यम से स्थानीय डीलरों के पास खाद की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी आसानी से मिल जाती है, और साथ ही इस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान भाइयों को आसानी से मिल जाती है, और इसके अलावा किसानों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: बिल्कुल, तो नीलम है ना, ये तो जानकारी रही किसान सुविधा ऐप की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाइए कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल, और इसके साथ ही हमारा आज का गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जो कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को 1 महीने के भीतर सील भी किया जा सकता है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की संख्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से प्रशासन को दें।
1: 1 महीने का टाइम है। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000, नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।
0: दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा कुछ नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से संबंधित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित टेक फोर फ्यूचर कार्यक्रम के समापन समारोह में आज सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीक के जरिए समाधान देना था। समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, नए विचार और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
2: हम आपको रोबोटिक लैब्स और स्मार्ट क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बने। आपकी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है जो आज की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्रा सिंह कल चांदपुर खुर्द से चांदपुर कला लिंक रोड और माजरा रोड में उच्च वोल्टेज तारों के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के कुलपति के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई जानकारी में श्री संधू ने बताया कि बैठक में नई तकनीकों के बढ़ते असर और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान में बेहतर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधु ने कहा कि आज के समय में प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करना या संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्वविद्यालय ने बताया कि CUET UG 2026 की परीक्षा देने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी CSAS 2026 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और 100 से अधिक BA कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि पंजीकरण केवल CUET UG 2026 की आवेदन संख्या के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके पास से प्रतिबंधित नशीले दवाओं की 1300 गोलियां बरामद हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 22 लाख रुपए से अधिक नकद, करीब 35 लाख रुपए के सोने के गहने, 6,20,000 रुपए के चांदी के गहने और एक स्कूटी भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में जमीन और अचल संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 4 स्थानों पर छानबीन की है। यह अभियान सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के ठिकानों पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया गया। छापों के दौरान एजेंसी ने धन के लेन देन, संपत्तियों, कंपनियों के वित्तीय विवरणों और कई अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर

0: चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर और एसेंट के सर्किट विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और सक्षम विनिर्माण भागीदारी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्वाभाविक केंद्र बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों और जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। MSME दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने MSME क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी में बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि शिविर ने बच्चों को केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार, अनुशासन और संस्कृति मूल्यों से भी समृद्ध किया है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्री गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10,000 पौधे लगाने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 106,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में यह संख्या बढ़कर 188,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 178,000 से 187,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन GI।
0: राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल के

0: फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कल समझौता हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। श्री सूद ने कहा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
1: फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे जिसमें
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला क्वीन अनानास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
0: राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षकों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए पेश है मुशायरा।
4: सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है मुशायरा। मुशायरा उर्दू अदब की एक अहम और दिलकश रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। आज भी इसकी महफिलें बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मुनक़द की जाती हैं। उर्दू ज़बान की शीरनी और शायरी का हुस्न आज भी लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। मुशायरों में मोहब्बत, इंसानियत, कौमी यकजहती और समाजी मसाइल पर भी रोशनी डाली जाती है। अलावा बरी मुशायरा न सिर्फ अदबी ज़ौक़ की तस्कीन का ज़रिया होता है बल्कि ज़बान व अदब की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। तो आइए सामेईन मुशायरा सुनते हैं। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब अतहर शकील।
5: मोहतरम सामीन खातिन हजरात, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर मुनक़िद होने वाली इस शेरी नशिस्त में मैं अतहर शकील दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए हजरात, आज की इस शेरी नशिस्त में शिरकत करने वाले शोरा इकराम के असमाए ग्रामी मैं एक मरतबा पढ़े देता हूँ। जनाब वाजिद मेरठी मेरठ से तशरीफ लाए हैं। जनाब डॉक्टर फुरकान सरधनवी सरधना से तशरीफ लाए हैं। जनाब आदिल रशीद साहिब दिल्ली से ही तशरीफ़ फरमा है और मैं अतहर शकील नगीनवी नगीना से हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए एक ऐसे मोतबर और नौजवान लबो लहजे के शायर से दरख्वास्त करते हैं जिसका ताल्लुक मेरठ से है, लेकिन उसने अपनी आवाज़, अपने कलाम, अपने लहजे से अपने आप को उर्दू दुनिया में बहुत जल्द मनवाया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जनाब वाजिद मेरठी से कि वो अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए वाजिद मेरठी माइक पर।
6: बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेरों से मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मतलब कुछ यूँ है कि रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया, रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया, हमने उनका दर्द भी सहना छोड़ दिया। रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया, हमने उनका दर्द भी सहना छोड़ दिया। शेर हाजिर करता हूँ कि किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया।
5: अपनों ने भी अपना कहना
6: किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया। और शेर इसमें है कि अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया, जीने के अंदाज़

0: बदले हैं वाजिद, जीने के अंदाज भी बदले हैं वाजिद, अब हमने जज्बात में बहना छोड़
1: बहुत अच्छा
0: दिया।
1: है, वाह वाह
0: जीने
1: वाह,
0: के अंदाज भी बदले
1: जीने
0: हैं
1: के अंदाज भी
0: वाजिद,
1: बदले हैं वाजिद,
0: अब हमने जज्बात में बहना छोड़
1: वाह
0: दिया।
1: वाह
0: और एक गजल के चंद शेर और समाप्त कर लीजिए कि
1: अता
0: मतलब है
1: करें।
0: कि हुआ कम न जिसका असर जिंदगी भर,
1: हुआ कम न जिसका असर
0: हुआ कम न
1: जिंदगी भर,
0: जिसका असर
1: असर
0: जिंदगी
1: जिंदगी भर,
0: भर, नजर में रही वो नजर जिंदगी
1: वाह
0: भर।
1: क्या कहने,
0: हुआ कम न जिसका असर जिंदगी भर,
1: नजर में रही वो,
0: नजर में रही वो नजर जिंदगी भर।
1: वाह
0: और
1: वाह
0: शेर
1: वाह
0: है
1: वाह,
0: कि हम उनके तसव्वुर में खोए हुए
1: हम
0: हैं,
1: उनके तसव्वुर में खोए
0: हम
1: हुए
0: उनके
1: हैं,
0: तसव्वुर में खोए हुए हैं,
1: वाह
0: ना हो उनको शायद खबर जिंदगी
1: क्या
0: भर।
1: कहना है,
0: हम
1: वाह वाह वाह,
0: उनके बहुत शुक्रिया कि हम उनके तसव्वुर में खोए
1: बहुत
0: हुए
1: अच्छा, हम
0: हैं,
1: उनके तसव्वुर में
0: ना
1: खोए
0: हो
1: हुए
0: उनको
1: हैं,
0: शायद खबर जिंदगी
1: बहुत
0: भर।
1: क्या
0: और
1: कहना है
0: शेर
1: वाजी, वाह बहुत
0: इसमें
1: अच्छा है,
0: बतौर खास शेर हाजिर करता हूं
1: अच्छा
0: कि
1: करें, इरशाद
0: कहें बेहुनर हम उसे किस हुनर से,
1: कहें
0: वाह वाह
1: बेहुनर
0: वाह,
1: हम,
0: कहें
1: कहें बेहुनर
0: बेहुनर
1: हम
0: हम उसे
1: उसे
0: किस
1: किस
0: हुनर
1: हुनर से,
0: से,
1: वाह क्या
0: ना
1: कहें,
0: आया हमें ये हुनर जिंदगी
1: वाह वाह
0: भर।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कहें बेहुनर हम उसे किस हुनर से,
1: वाह वाह वाह
0: ना आया हमें ये हुनर जिंदगी
1: वाह वाह,
0: भर,
1: बहुत
0: वाह, ना
1: अच्छा,
0: आया हमें ये हुनर जिंदगी भर।
1: अच्छा
0: वो
1: है अच्छा
0: मेरी
1: है,
0: उड़ानों से खाइफ था शायद,
1: वो मेरी
0: वाह,
1: उड़ानों से खाइफ था
0: वो
1: शायद,
0: मेरी उड़ानों से खाइफ था शायद, कतरता रहा मेरे पर जिंदगी
1: वाह
0: भर।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: अच्छा,
0: वाह,
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: मेरी
1: वाह वाह,
0: उड़ानों से खाइफ था शायद,
1: बिल्कुल कतरता
0: वाह,
1: रहा मेरे पर
0: कतरता रहा
1: जिंदगी भर,
0: मेरे पर
1: वाह वाह वाह,
0: जिंदगी भर।
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: मकता
1: शेर है,
0: कुछ
1: वाह
0: यूं है
1: वाह,
0: कि
1: अता करें,
0: कतरता रहा मेरे पर जिंदगी भर, हाजिर
1: इरशाद
0: करता हूं कि
1: इरशाद,
0: ना
1: ठीक है,
0: उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद,
1: वाह वाह वाह,
0: वाह,
1: बहुत
0: ना
1: अच्छा,
0: उतरेगा एहसान एक
1: एक पल
0: पल का
1: का
0: वाजिद,
1: तीन
0: करें
1: अंक,
0: माँ की खिदमत अगर जिंदगी भर
1: क्या
0: भर।
1: कहना
0: वाह वाह
1: है,
0: वाह,
1: इबादत हो रही
0: और
1: है,
0: दो तीन
1: वाह
0: शेर
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: हाजिर करता हूं
1: अता
0: कि
1: करें
0: मतलब कुछ
1: अता
0: यूं है
1: करें
0: कि
1: अता करें,
0: आदमी
1: वाह,
0: से जल रहा है आदमी,
1: आदमी से
0: आदमी
1: जल
0: से
1: रहा
0: जल
1: है
0: रहा, आदमी
1: आदमी
0: से,
1: से,
0: आदमी से जल रहा है आदमी,
1: वाह
0: अंदर अंदर गल रहा है
1: बहुत,
0: आदमी,
1: अंदर अंदर
0: वाह
1: गल
0: वाह
1: रहा
0: वाह
1: है
0: वाह,
1: आदमी,
0: आदमी
1: अंदर
0: से
1: अंदर गल
0: जल
1: रहा
0: रहा
1: है
0: है
1: आदमी,
0: आदमी,
1: अंदर
0: अंदर
1: अंदर गल
0: अंदर
1: रहा
0: गल
1: है आदमी,
0: रहा है आदमी। और शेर बतौर खास के मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में,
1: मुश्किलें ही मुश्किलें
0: वाह,
1: हैं राह में,
0: मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में, फिर भी लेकिन चल रहा है आदमी,
1: हाँ वाह
0: मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में, फिर
1: वाह
0: भी
1: वाह वाह वाह,
0: लेकिन चल रहा है आदमी,
1: बेशक बेशक,
0: फिर भी
1: वाह
0: लेकिन चल रहा है आदमी। और
1: वाह वाह,
0: मकता है कि आदमी को खुद से वाजिद क्या है बैर,
1: आदमी को खुद से
0: आदमी
1: वाजिद
0: को
1: क्या है
0: खुद से
1: बैर,
0: वाजिद क्या
1: क्या
0: है
1: है
0: बैर,
1: बैर,
0: एक घुटन में ढल रहा है आदमी,
1: हाँ वाह वाह वाह वाह
0: आदमी
1: वाह वाह
0: को,
1: वाह वाह
0: बहुत शुक्रिया कि
1: वाह वाह
0: आदमी
1: वाह
0: को खुद से
1: वाह वाह,
0: वाजिद क्या है बैर,
1: वाह
0: एक
1: वाह
0: घुटन में ढल
1: ढल
0: रहा
1: रहा है
0: है
1: आदमी,
0: आदमी।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: चंद शेर तरन्नुम से पेश करके फिर
1: इरशाद
0: ज़हमत
1: इरशाद
0: तमाम,
1: अता करें,
0: मतलब बतौर खास, मालूम है नुकसान मगर काट रहा
1: मालूम है
0: है,
1: नुकसान मगर काट रहा है,

0: क्या
1: है, और
0: कहना।
1: शेर बतौर खास,
0: अच्छा
1: उस शख्स की मजबूरी ये हालात
0: उस शख्स की मजबूरी
1: समझिए,
0: ये हालात
1: उस
0: समझिए।
1: शख्स

0: जो
1: आजकल
0: देती
1: मियाँ हैं।
0: है
1: आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा अखबार।

0: जी साहब बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: आपने
1: बहुत
0: बड़े अच्छे
1: शुक्रिया।
0: कलाम से नवाजा। तहतुल लफ्ज़ में भी जितने अशार पढ़े वो भी बहुत खूबसूरत थे, और तरन्नुम भी आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, शायरी भी बहुत खूबसूरत। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
1: बहुत बहुत
0: वाजिद
1: शुक्रिया।
0: मेरठी साहिब। आइए हजरात एक और ऐसे शख्सियत के हुजूर चलते हैं कि जिसने जितना काम शायरी के हवाले से किया है उससे कहीं ज्यादा काम नसर के ताल्लुक से भी किया है। लोग उनको अपनी किताबें दिखाकर, अपने मुसव्वदे दिखाकर किताबें छपवाते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर फुरकान सरधनवी से कि वो अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर फुरकान सरधनवी।
2: बहुत शुक्रिया अतर साहब। गज़ल का मतलब समाप्त कीजिएगा बगैर
0: जी
2: किसी
0: अशार
2: तमहीद के।
0: अता गए।
2: अगर वादों में थोड़ी भी सदाकत हो तो आ जाना,
0: अगर
2: वादों में थोड़ी भी सदाकत हो तो आ जाना, मेरे दिल से तुम्हारे दिल को निस्बत हो तो आ जाना। अगर वादों में थोड़ी भी सदाकत हो तो आ जाना, मेरे दिल से तुम्हारे दिल को निस्बत हो तो आ जाना, अगर दिल से तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो आ जाना, अगर दिल से तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो आ जाना, जहां वालों से टकराने की हिम्मत हो तो आ जाना।
3: क्या बात है।
2: और मुझे तुम छोड़कर यूं जा रहे हो तो चले जाओ,
0: मुझे तुम
2: छोड़कर यूं जा रहे हो तो चले जाओ, मगर तुमको कभी एहसास फुरकत हो तो आ जाना, मगर तुमको कभी एहसास फुरकत हो तो आ जाना, और जमाने की निगाहों में न आ पाओ किसी सूरत। जमाने की निगाहों में न आ पाओ किसी सूरत, अगर मिलने की ऐसी कोई सूरत हो तो आ जाना। जमाने की निगाहों में न आ पाओ किसी सूरत, अगर आने की ऐसी कोई सूरत हो तो आ जाना। और शेर सुनिए, किसी सूरत नहीं कटते तुम्हारे हिजर के लम्हे, किसी सूरत नहीं कटते तुम्हारे हिजर के लम्हे, तुम्हें आने की मेरे पास फुर्सत हो तो आ जाना, तुम्हें आने की मेरे पास फुर्सत हो तो आ जाना, और तुम्हारी सब खताओं को नजरअंदाज कर दूंगा, तुम्हारी सब खताओं को नजरअंदाज कर दूंगा, तुम्हारी सब खताओं को नजरअंदाज कर दूंगा, जरा भी दिल में एहसास नदामत हो तो आ जाना।
0: क्या कहना।
2: तुम्हारी सब खताओं को नजर अंदाज कर दूंगा, जरा भी दिल में एहसास नदामत हो तो आ जाना, और तड़पता है दिले मुस्तर तुम्हारी याद में हमदम, तड़पता है दिले मुस्तर तुम्हारी याद में हर दम, अगर दिल के किसी कोने में उल्फत हो तो आ जाना।
0: वाह वाह वाह।
2: तड़पता है दिले मुस्तर तुम्हारी याद में हर दम, अगर दिल के किसी कोने में उल्फत हो तो आ जाना, और तुम्हारे दीद की हसरत सदा बेचैन रखती है,
0: तुम्हारे दीद
2: की हसरत सदा बेचैन रखती है, जरा भी तुमको एहसास मोहब्बत हो तो आ जाना, जरा भी तुमको एहसास मोहब्बत हो तो आ जाना। खास तौर से शेर पर तवज्जो चाहता हूँ कि नजा का वक्त है सरहाने सब मौजूद हैं यूं तो, नजा का वक्त है सरहाने सब मौजूद हैं यूं तो, तुम्हारा दिल तलबगारे अयादत हो तो आ जाना। नजा का वक्त है सरहाने सब मौजूद हैं यूं तो, तुम्हारा दिल तलबगारे अयादत हो तो आ जाना, और सुना है तुमको पछतावा है अपनी बेनियाजी पर, सुना है तुमको पछतावा है अपनी बेनियाजी पर, अगर इसमें जरा सी भी हकीकत हो तो आ जाना, अगर इसमें जरा सी भी हकीकत हो तो आ जाना। और गजल का मकतब समाप्त कीजिएगा कि यकीनन तुमको रोकेगी अना इस काम से फिर भी, यकीनन तुमको रोकेगी अना इस काम से फिर भी, अगर फुरकान की तुमको जरूरत हो तो आ जाना, अगर फुरकान की तुमको जरूरत हो तो आ जाना। बहुत शुक्रिया तर साहब।
0: हजरत ये थे डॉक्टर फुरकान सरधनवी साहिब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। हम दरख्वास्त करेंगे कि दो तीन शेर और पढ़ दें वो।
2: गजल का मतला समाप्त कीजिएगा।
0: इरशाद।
2: तेरा ये जख्म दिल दागे जिगर, तेरा ये जख्म दिल दागे जिगर, अच्छा नहीं लगता झलकता गम तेरे रुखसार पर, अच्छा नहीं लगता झलकता गम तेरे रुखसार पर, अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी बेवफाई ने वहां पहुंचा दिया मुझको,
0: तुम्हारी बेवफाई ने
2: वहां पहुंचा दिया मुझको, जहां अपने सिवा कोई बशर अच्छा नहीं,
0: जहां अपने सिवा कोई बशर अच्छा नहीं लगता
2: और तेरे दीदार की ख्वाहिश मुझे ले आई है वरना,
0: तेरे दीदार की ख्वाहिश,
2: सुनिए कि तेरे दीदार की ख्वाहिश मुझे ले आई है वरना, तेरे कूचे से मेरा यूं गुजर अच्छा नहीं लगता तेरे दीदार की ख्वाहिश मुझे ले आई है वरना, तेरे कूचे से मेरा यूं गुजर अच्छा नहीं लगता, वो ये मेरा हुस्न जन हुस्न नजर है ऐ जफा परवर, मेरा हुस्न जन हुस्न नजर है ऐ जफा परवर मुझे तेरे सिवा कोई बशर अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरे सिवा कोई बशर अच्छा नहीं लगता, और यकीनन बेटियां होती हैं वजह इज्जत और राहत, जहां पर ये नहीं होती वो घर अच्छा नहीं, जहां पर ये नहीं होती वो घर अच्छा नहीं लगता यकीनन बेटियां होती हैं वजह इज्जत और राहत, जहां पर ये नहीं होती वो घर अच्छा नहीं लगता, और जो नावाकिफ हो आदाब सफ़र से राह मंजिल में, जो नावाकिफ हों आदाब सफ़र से राह मंजिल में, मुझे फुरकान ऐसा राहबर अच्छा नहीं लगता, मुझे फुरकान ऐसा राहबर
0: वाह। डॉक्टर फुरकान सरधनवी माइक पर थे और अपनी मुरस्सा गज़लों से नवाज रहे थे। आइए हजरात अब उस शायर के हुजूर चलते हैं कि जिस शायर की शायरी, उसका लहजा, उसका तहत जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो इंसान खूबसूरत है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उस शायर को माइक पर बुलाने की जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि उस शायर की जितनी ज़रूरत मुशायरों को है उससे कहीं ज़्यादा अदबी हलकों को, अदबी नशिस्तों को है। मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ जनाब आदिल रशीद साहिब से कि वो अपने कलाम से नवाजें।
1: बहुत शुक्रिया अतर शकील साहब आपके इस हौसला अफजाई और इस मोहब्बत के लिए। एक मतलब ये समाज फरमाइए कि लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं,
0: लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं
1: कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते।
4: बहुत अच्छे
1: लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। शेर यह है कि फ़ायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का,
0: फ़ायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का
1: आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते,
0: आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं
1: सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है जो बहादुर है वो बुजदिल से नहीं मिलते हैं, सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है,
0: जो बहादुर हैं वो बुजदिल से नहीं मिलते हैं।
1: एक गज़ल के दो तीन शेर ये सुन लीजिए कि ज़माना लाख उसके फ़ायदे बतलाए मत लेना घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना, ज़माना लाख उसके फ़ायदे बतलाए मत लेना, घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना,
0: बहुत दौलत कमाना तुम तरक्की खूब करना

0: बहुत अच्छा है,
1: अच्छा मशवरा,
0: वाह
1: वाह वाह, क्या
0: कहने
1: कभी
0: से।
1: भी उसके हम पेशा से कोई राय मत
0: अरे
1: लेना। मैं एक नज्म जो है वो मैं सुना
0: इरशाद,
1: देना चाहता हूँ।
0: अता करें अता।
1: नज्म का उन्वान है एतराफ।
0: एतराफ।
1: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना,
0: मैं सुबह
1: बहुत
0: होते
1: अच्छा
0: ही
1: है।
0: हर रोज ये बदन
1: मैं
0: अपना,
1: सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना
0: हाँ
1: दहकती काम की भट्टी में झोंक देता हूँ।
0: वाह
1: वाह। मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना दहकती काम की
0: भट्टी
1: भट्टी
0: में
1: में
0: झोंक
1: झोंक
0: देते,
1: देता हूँ।
0: बहुत अच्छा,
1: थपेड़े गर्म हवाओं के तन पे सहता हूँ,
0: वाह
1: वो सर्दी सहता हूँ जिसमें कि खून जम जाए।
0: वाह, बहुत अच्छे।
1: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना दहकती काम की भट्टी में झोंक देता हूँ।
0: वाह वाह
1: थपेड़े गर्म हवाओं के तन पे सहता हूँ,
0: वाह,
1: वो सर्दी सहता

0: तमाम दिन की मशक्कत का बस ये मकसद है कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए जो पीछा छोड़ दे माजी की तल्ख परछाई, जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई। तमाम दिन की मशक्कत का बस ये मकसद है कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए जो पीछा छोड़ दे माजी की तल्ख परछाई, जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई, जो पीछा छोड़ दे कारे बुजदली मेरा कि जब किसी की वफाओं को गिरवी रखकर मैं तमाम आरजी खुशियां खरीद लाया था।
1: वाह वाह
2: बहुत अच्छे।
0: जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई, जो पीछा छोड़ दे एक कारे बुजदली मेरा कि जब किसी की वफाओं को गिरवी रखकर मैं तमाम आरजी खुशियां खरीद लाया था, ये बदनसीबी है मासूम हाय है उसकी कि इस जहान की हर एक शय मयसर है। ये बदनसीबी है मासूम हाय है उसकी कि इस जहान की हर एक शय मयसर है, बस एक सच्ची मोहब्बत को मैं तरसता हूँ।
1: वाह बहुत अच्छे।
0: बस एक सच्ची मोहब्बत को
1: बहुत
0: मैं तरसता हूँ।
1: क्या कहने आदिल रशीद साहब?
2: मेरी नज़र में बड़ा कलाम वो होता है जिसको सुनने के बाद बग़ैर किसी कोशिश के वो हाफ़ज़ में महफूज हो जाए। ऑल इंडिया रेडियो की इस नशिस्त में हमारे दरमियान एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर मौजूद हैं जिनका कलाम सुनने के बाद बग़ैर किसी कोशिश के हाफ़ज़े में महफूज हो जाता है। वो बेहतरीन और मुमताज़ गज़ल को शायर होने के साथ साथ बेहतरीन नाज़िम मुशायरा भी हैं। मैं उनको इन चार मिसरों के हवाले से उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी आज की नशिस्त में अपना कलाम पेश करें कि वो मुफक्किर भी है अदीब भी है, वो मुफक्किर भी है अदीब भी है और शायर भी है ख़तीब भी है, उसकी बातों में है बला का रस, वो सरापा ज़बान नकीब भी है। यानी मेरी मुराद है आज की इस शेरी महफिल के शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब अतहर शकील साहब जो नगीना से तशरीफ़ लाए हैं, कई शेरी मजमुओं के तख्लीकार भी हैं, कि बराए करम वो भी अपना कलाम पेश करें।
1: शुक्रिया डॉक्टर फुरकान साहब। एक मतला और दो चार शेर मुलाहजा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि कहीं शराफत कहीं शरारत, कहीं मुसर्रत कहीं उदासी, कहीं शराफत कहीं शरारत, कहीं मुसर्रत कहीं उदासी, वो चांद चेहरा वो चंद यादें लिए है दिल में मकी उदासी। वो चांद चेहरा वो चंद यादें लिए है दिल में मकी उदासी। और ये शेर भी देखें कि कभी जो उस माह रूह के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा, कभी जो उस माह रूह के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा, हर अहले दिल ये पुकार उठा नहीं उदासी नहीं उदासी। कभी जो उस माह रूह के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा, हर अहले दिल ये पुकार उठा नहीं उदासी नहीं उदासी। तेरी निगाहों की शोखियों ने उतारे चेहरों से सबके चेहरे, तेरी निगाहों की शोखियों ने उतारे चेहरों से सबके चेहरे, जो तूने देखा है हंस के मुझको लगी है हर एक जबी उदासी। जो तूने देखा है हंस के मुझको लगी है हर एक जबी उदासी, सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही ये क्या सितम है गजब है उसका, सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही ये क्या सितम है गजब है उसका, गुलाब चेहरा गजाल आंखें और उस पे बिखरी हंसी उदासी।
0: हाँ, हाँ, क्या कहने,
1: सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही ये क्या सितम है गजब है उसका, गुलाब चेहरा गजाल आंखें और उस पे बिखरी हंसी उदासी। मैं साथ उसके ये चंद लम्हे जरा सा हंस लूं जरा सा रो लूं, मैं साथ उसके ये चंद लम्हे जरा सा हंस लूं जरा सा रो लूं, हमेशा फिर मैं तेरा रहूंगा तू कर ले मेरा यकीन उदासी। जरा सा उस
0: क्या लहजा है, वाह वाह वाह।
1: मैं साथ उसके ये चंद, शुक्रिया, मैं साथ उसके ये चंद लम्हे जरा सा हंस लूं जरा सा रो लूं, हमेशा फिर मैं तेरा रहूंगा तू कर ले मेरा यकीन उदासी। और ये शेर भी देख लीजिए कि जहां भी पाया मुझे अकेला करीब आई मेरे यकायक, जहां भी पाया मुझे अकेला करीब आई मेरे अचानक, नहीं रही कैद होके जाना कहीं ये खलवत नशी उदासी, नहीं रही कैद होके जाना कहीं ये खलवत नशी उदासी। और ये मक्ता भी मुलाहजा फरमा लें कि सदाएं सजाए फिरता है अपने रुख पर बगैर तेरे भी जो

0: तबस्सुम।
1: वाह,
0: सजाए फिरता है, सजाए फिरता है अपने रुख पर बगैर तेरे भी जो तबस्सुम, तुझे खबर क्या के दिल में अथर शकील के है मकी उदासी। तुझे खबर क्या के दिल में अथर शकील के है मकी उदासी। शुक्रिया,
2: बहुत खूबसूरत।
0: दो तीन शेर और मुलाजा फरमा लें।
1: जी जी,
0: तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ।
1: जी जी।
0: ये हवा रोज ही छू कर तेरे गेसू आए,
1: ये हवा रोज ही छू कर।

0: आए,
1: वाह वाह वाह
0: रौनकें सब तेरे जाने से हुई हैं काफूर।
1: वाह।

0: फरमाए, मख्ता मुलाजा फरमाए, फिर आपकी जहमत तमाम।
1: इरशाद इरशाद,
0: उस परीजाद को शीशे में उतारें कैसे,
1: बहुत अच्छे, वाह।
0: उस पर

0: शुक्रिया। हजरत, आज की शेरी नशस्त का इख्तिताम अब हुआ चाहता है। मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली किसी नशस्त में फिर मुलाकात होगी। मैं एक मरतबा फिर से आज की इस शेरी नशस्त में शिरकत करने वाले शोरा इकराम के अस्माए गिरामी पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ जिन शोरा इकराम ने शिरकत फरमाई, जनाब वाजिद मेरठी मेरठ से, जनाब डॉक्टर फुरकान सरधनवी सरधना से, आदिल रशीद साहिब दिल्ली से, और मैं अथर शकील नगीनवी नगीना से। शुक्रिया।
1: सामीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब अथर शकील। इसी के साथ अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम, इस फिल्म से लिया गीत। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की।

0: श्रोताओ, हमारे भी जहन में, नजर में, प्रशंसकों में अगर कोई है तो वो है सिर्फ तुम। देखिए, हिंदी फिल्मों ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए और कई गीत उन फिल्मों की पहचान भी बने। आज फिल्म संगीत में हम आपको इसी तरह के चर्चित फिल्मों के टाइटल गीत सुनवा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये खूबसूरत गीत। आवाज है श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत शिवहरी का।
1: चांदनी

श्रोताओं, चांदनी फिल्म से लिया गीत अभी आप सुन रहे थे। और निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसी सदाबहार फिल्में होती हैं जो हर वक्त हर मौसम हमें गुनगुनाने पर, हमें झूमने पर मजबूर भी कर देती हैं। और इनके जो गीत होते हैं उनसे हमारी कोई ना कोई यादें ज़रूर जुड़ी होती हैं। ऐसा ही ये फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं तुम बिन फिल्म से लिया गीत। आवाज़ है चित्रा की।

0: श्रोताओं, तुम बिन फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया और इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान

0: आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का

0: कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के दो विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में

0: रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast petrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honor at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of

0: Tsushiro Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova. 11-5, Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat programme on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्दबुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सिशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सिशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सिशेल्स के

0: को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि एसआईटी की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस तीन मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन टीईटी के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले टीईटी के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में चार महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से दो हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलव्वस हो गए हैं, जिससे सालिस मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। एहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। यूएस ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ

0: किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी।
0: जी
1: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब,
0: जी
1: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए।
0: जी
1: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
0: जी
1: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं,
0: जी
1: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर।
0: जी
1: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया।
0: जी
1: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है।
0: जी
1: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ।
0: जी जी
1: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है।
0: जी
1: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें।
0: जी
1: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझ

0: ते हैं ऊर्जा को लेकर?
1: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
0: जी।
1: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता

0: है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर GV राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों

0: जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
1: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत पे आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
0: जी,
1: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केन्या और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Shri Dulal Roy.
1: He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries: Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

0: जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा।

0: in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatieh area a day after Israel and Lebanon signed a US-brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in US. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है रात की 11:10 और पूरे 20 सेकंड। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

दोस्तों घड़ी की जो ये सुइयां हैं वो 11 बजे का समय पार कर चुकी हैं, बल्कि अब तो समय हो गया है 11:11। शहर की जो रफ्तार है वो भी अब धीरे धीरे थम रही है और आप खिड़की से बाहर झांक कर देखेंगे तो चांद भी आज कुछ ज्यादा ही फुर्सत में नजर आ रहा है। दिन भर की भागदौड़, काम का जो स्ट्रेस था, ट्रैफिक का जो शोर था, वो सब कहीं पीछे छूट गया है और अब तो वक्त है बस खुद के लिए, अपने लिए, अपनी यादों के लिए, अपने उन सारे वादों के लिए और सबसे बड़ी चीज उन सारे ख्यालों के लिए जो दिन भर की भागदौड़ के बीच में कहीं ना कहीं हमारे मन में तो चलते रहते हैं लेकिन हम उनसे बातें कर नहीं पाते। तो इस खामोश रात में आप बातें करते हैं अक्सर दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से। तो चलिए आज की इस खूबसूरत सी रात का आगाज करते हैं इसी प्यारे से गीत के साथ जो अभी आप सुन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप सब भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, मेल भेजना है ipradiodelhi@gmail.com पर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौड़, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

तो दोस्तों बस कहने की देर थी और आप सबके संदेश हम तक पहुंचने शुरू हो गए और आप सब अपने दिनचर्या को लेकर अपने दिन भर की बातों को लेकर हम तक पहुंच गए हैं। जैसे ये हमारे पास संदेश आया है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा विमला अनेजा यहां से लिखते हैं और कहते हैं नमस्कार आरती बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई, थैंक यू। और इस वक्त जो ये वक्त होता है ये एक्चुअली हमारा खुद का वक्त होता है जिसमें हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, अपने आप से ही जवाब करते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं। और ऐसे में अगर कोई हमसे पूछ ले कि कैसा रहा आपका दिन, तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए हमसे भी हमारी थकान के बारे में पूछा गया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसा रहा आपका पूरा दिन, क्या क्या किया आपने पूरे दिन में और कितना थक गए हैं आप, ये आप मुझे बताइए बस IP Radio Delhi@gmail.com पर लिख कर।

तो और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि ये हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदी लहरे, तो ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे श्रोता हैं और बहुत सारे खूबसूरत गीत।

तो श्रोताओं, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप सबका जो ये दिन है वो कैसा गया, क्या क्या थकान रही, क्या क्या आपकी लाइफ में आज के दिन में अड़चन आई है और क्या क्या आपको खुशियाँ मिली हैं, वो सब अगर आप हमारे साथ बांटना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। जैसे हमारे साथ मौसम की जानकारी बांटी है हमारे एक श्रोता ने, लिखने वाले हैं कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, कहते हैं आज तो हमारे यहाँ बहुत ही गर्मी है और इस गर्मी के लिए ये गीत हम सबको सुनवाना चाहते हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे आपका ये जो गीत है वो बहुत जल्द आप तक पहुंचे। वैसे मुझे लग रहा है ये पहुंच रहा है क्योंकि यही गीत की फरमाइश बहुत सारे और भी श्रोता ने करी है और

तो दोस्तों हमारे पास अगला जो संदेश आया है वो है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का। कहते हैं, नमस्कार आरती जी, सारा दिन गुजर जाता है कमाने की दौड़ धूप में, घर की छत बचाने में अपना सुकून गंवाना पड़ता है, उम्र बीत जाती है अपनों की उम्मीदें पूरी करने में, गैरों का नहीं अपना घर बनाना आसान नहीं होता। तो बहुत अच्छी और खूबसूरत प्यारी सी लाइनें आपने लिखी हैं और सच में इंसान दौड़ भाग में लगा होता है हर वक्त किसी न किसी की, कभी अपनी कभी अपनों की उम्मीद पूरी करने के चक्कर में, और ऐसे में बहुत सारा वक्त उसका ऐसा गुजर जाता है जो लम्हा उसे जीना था वो जी नहीं पाता है। तो फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप इस लम्हे को तो बिल्कुल जीना शुरू कीजिए क्योंकि ये आपका ही है। अगला जो संदेश है वो है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, और ये कहते हैं किसी भी फिल्म का गीत सुनिए सुनना है। इसके साथ ही हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा और निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, इनका ये संदेश आया है। इसके साथ ही हमारे पास अगला जो संदेश है वो है सतीश अनेजा का, गर्मी यौवन पर है इसलिए अपने काम सुबह शाम निपटा लेते हैं, रात का माहौल तो आकाशवाणी के रंगों में रंग जाता है जिससे मन को बहुत सुकून मिलता है और इंद्रप्रस्थ को सुनने के बाद नींद की आगोश में खो जाते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण ऊर्जा भरी रहमतों भरी हमारी होती है जिसका स्वागत करते हैं। तो सही में आप सब इसके रंगों में रंगे हैं आकाशवाणी के और इंद्रप्रस्थ के गीत सुन रहे हैं, तो फिर बनता है ना आपको भी छत पे ले जाना और बादल के दर्शन कराना जिसके पीछे छिप रहा होता है चांद।

और ये जो हमारे पास श्रोता अगले आए हैं वो है नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज हिमांशु कहते हैं, आज दिन भर बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया, वुडन फर्नीचर का काम करते हैं, थककर चूर हो गए हैं, अब खुले आसमान के नीचे छत पर सोया हुआ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थकान तो दूर हो गई और नींद भी अच्छी आएगी अगर मेरी पसंद का गीत सुना दे तो। तो चलिए पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो पसंद है वो पूरी हो जाए। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले श्रोता की तरफ, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से ये लिखते हैं, हमारे पास अगला जो संदेश आया है वो है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, मुझे लगता है कि शायद इनका जो संदेश है ये पहले भी लिया जा चुका है। इसके साथ जो अगले संदेश हमारे पास आए हैं वो भी बहुत सारे रिपीटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो दोस्तों ऐसा था ना कि जब छोटे थे तो कई बार छतों पर जाके सो जाया करते थे, और या फिर नीचे सो रहे हैं लाइट चली गई और फिर छत पर कब चले गए और छत से कब नीचे ले आया गया ये हम लोगों को एहसास ही नहीं होता था, बचपन कुछ ऐसा ही था। और लेकिन आज का जो जमाना है इसमें हम छत पर गए हुए भी कई बार समाना बीत जाता है, हमारी अपनी ही छत होती है लेकिन हमने उसे देखा भी नहीं होता कई बार तो, जबकि कभी रातें गुजर जाती थी तारे गिनते हुए नींद आ जाती थी। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है, आप ये भी हमें बता सकते हैं, अपने दिन भर की थकान के साथ आप ये बातें भी हमसे, अपने ख्याल भी शेयर कर सकते हैं।

दोस्तों बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ। ये हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनेद मुआवर, सबिया मुजावर, मिखाइल और जैनब, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले जो संदेश के साथ हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नजफगढ़ जय बिहार से शाहरुख फारूक, शबनम शहनाज, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता हैं वो हमारे पास बहुत बार अपना संदेश भेज चुके हैं और उनका संदेश ऑलरेडी शामिल हो चुका है, पर शायद वो कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। तो आप कृपया कार्यक्रम को ध्यान से सुना कीजिए। कई बार आप ऐसी शिकायतें करते हैं जो शिकायत सही मायने में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपके संदेश ले चुके होते हैं। ये हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सानिया सपकाल और विशाल सपकाल का। इसके साथ ही अगला जो संदेश है वो हमारे पास फिर से इन्हीं का आया है, छत्तीसगढ़ पलारी से। लेकिन अगले श्रोता जुड़े हैं वो है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। इन्होंने एक बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश की है, तो ये गीत भी आप तक पहुँचेगा। लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। ये हमारे पास आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। बहुत सारे और भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदाब नमस्कार करते हुए नासिर शेख। और इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं नजफगढ़ जय बिहार से शाहरुख फारूक और शबनम शहनाज, ये हमारे साथ जुड़े हैं। आगे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ और भी जुड़े हैं। ये हमारे साथ टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही नागाचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

तो अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम जस

निवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधे श्याम और वंदना भावना बिंदु कोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से ये हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो भाई जितने भी गीत बज रहे हैं वो आपकी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद भी बन चुके हैं। अगले जो श्रोता हमारे साथ हैं वो है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता शोभा और कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी और ये भी किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए आप सबके लिए पेश है गुरु फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, चलते चलते कुछ और संदेशों को अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना लेते हैं। और ये हमारे पास आया है अभिजीत गवाड़कर राही का, श्रीमती सरिता गवाड़कर प्रिंस एकांश और बदलापुर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं प्रणीता गवाकर, सिद्धांत गवाड़कर और अर्जुन गवाड़कर। इसके साथ ही आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, एकांश सुमित और कुमारी ध्वनि ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा पीहू स्वर्णकार, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दिया। लेकिन हर चीज़ जो शुरू होती है उसका एक अंत भी होता है, तो ये कार्यक्रम भी शुरू हुआ था लेकिन अब ये अपने अंत पे बढ़ ही नहीं गया है बल्कि पहुंच चुका है। तो कार्यक्रम का जो आखिरी नगमा है वो है आप सबके लिए। इसी के साथ मैं आप सबको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन इंद्रप्रस्थ पर आप और भी कार्यक्रम सुनेंगे आगे, और भी गीत आपके लिए आएंगे, और भी आपके लिए चीजें आती रहेंगी, तो उन्हें भी सुनना ना भूलिएगा। लेकिन फिलहाल अपनी दोस्त आरती को फिलहाल

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सुबह 4:55 पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10:15 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा का। आज का जो सुरों का सफ़रनामा है वो लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। और आज का जो सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम है वो आधारित है अलका याग्निक पर। जी हाँ, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आज सरिता, लाई हूँ आपका पसंदीदा शो सुरों का सफ़रनामा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो सुरों का सफ़रनामा। और आज के सुरों का सफ़रनामा में हम आपका के लिए जो एक बेहतरीन गायिका लेकर आए हैं वो हैं अलका याग्निक। दोस्तों जब भी 90 के दशक के रोमांस की बात हो, बारिश की बूंदों की बात हो या फिर पहली मोहब्बत का जिक्र हो, एक आवाज़ हमारे कानों में मिश्री घोल देती है। जी हाँ, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर लगता है दिल का हर कोना गुनगुना उठा। जी हाँ, आज का हमारा ये सुरों का सफ़रनामा है वो डेडिकेट है बॉलीवुड की आइकॉनिक मेलोडी क्वीन अलका याग्निक जी को। और अपनी यादों की खिड़की खोल लीजिए दोस्तों, क्योंकि सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है। और शुरुआत करते हैं खूबसूरत से एवरग्रीन ट्रैक के साथ। इससे पहले जो आपने गीत सुना साया फिल्म का, इसमें भी अलका याग्निक जी ने अपनी आवाज़ से इस गीत को सजाया है। लेकिन जो अगला गीत है वो, जी हाँ, एक ऐसा गीत जिसने अलका को सुपरस्टार बना दिया। ऐसा करते हैं, ज़्यादा समय बातों में ज़ाया ना करते हुए पहले उस गीत को सुनते हैं और उसके बाद हम बातें करेंगे बहुत सारी।

जी हाँ, हमें पता चल रहा है कि आपको भी मज़ा आ रहा है ये खूबसूरत गीत सुनकर। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज अलका याग्निक जी की, और एक वो ऐसा गीत जिस गीत ने उन्हें बना दिया सुपरस्टार। जी हाँ, ये वो गीत है जिसे सुनते ही सबके पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। और उस गाने की एक खासियत मैं ये बताऊं कि जब उस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो अलका जी का गला बहुत ख़राब था और उन्हें तेज़ बुखार था, और वो चाह रही थी कि ये जो गीत है इसकी रिकॉर्डिंग टल जाए। लेकिन तारीफ करनी होगी लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की कि उन्होंने उनसे कहा कि वो बस एक बार कोशिश तो करें उस गीत को गाने की। और फिर अलका जी ने टूटी फूटी आवाज़ और साथ ही साथ बुखार में जब वो गाना गाया, तो वो गाना जब रिलीज़ हुआ, पर्दे पर आया, तो अलका की आवाज़ और अभिनय माधुरी दीक्षित का। जी हाँ, उस गीत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अलका जी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। और फिलहाल जो हमारा कार्यक्रम है सुरों का सफ़रनामा, इसमें पहला ईमेल भी हम तक पहुंच चुका है। भेजने वाले हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना जी, और ये कह रहे हैं कि कोई भी गीत सुनवा कर कृतार्थ करें। तो दोस्त, आज हम सुरों का सफ़रनामा में बात ही कर रहे हैं अलका याग्निक जी की, तो अगला गीत आप इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से ट्रैक को, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए अपने ईमेल्स के ज़रिए। हम आपको बता दें कि हमारा ईमेल आईडी है IPRadio@gmail.com। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सरिता

दोस्तों, अलका जी का जो गीतों का सफ़र था शुरू तो कोलकाता से हुआ था, लेकिन उनके सुरों की गूंज पूरे देश में, जी हाँ, गूंजने लगी थी और पूरे देश को उनके सुरों की गूंज ने दीवाना बना दिया था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने आकाशवाणी रेडियो के लिए गाना गाना शुरू कर दिया था और जब वो मुंबई आई तो उनकी आवाज़ का जादू ऐसा चला कि हर बड़े डायरेक्टर की वो पहली पसंद बन गई थी। चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां उनकी आवाज़ ने हर दिल पर राज किया। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए है और हमने जैसा कि आपको बताया ही कि उनका जन्म कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में हुआ था और अगर आप रेडियो शो सुरों का सफ़रनामा में उनके जन्मदिन का जिक्र करना चाहते हैं तो उनका जन्मदिन 20 मार्च 1966 का हुआ था। और दोस्तों, 20 मार्च का वो दिन था जब भारतीय संगीत के इतिहास में बेहद ख़ास, क्योंकि इसी दिन कोलकाता की इस सुरीली गायिका का जन्म हुआ था। और एक अलका याग्निक का जन्म एक सुरीले परिवार में हुआ था। हमारी मेलोडी क्वीन, जी हाँ, मार्च का महीना बसंत का होता है और उनकी आवाज़ बिल्कुल बहार की तरह जो पिछले 4 दशकों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। और फिलहाल जो अगला गीत है उसका आनंद उठाइए। गीत के उस पार हम फिर आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे अलका याग्निक की।

दोस्तों इसी खूबसूरत से गीत के साथ वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मौसम का मिजाज इतना खूबसूरत है, और ऐसे मौसम में जब हम बात करें अलका याग्निक की आवाज़ की और साथ ही साथ उनकी जोड़ी हो उदित नारायण की, जी हाँ ये जोड़ी बॉलीवुड में दोस्ती और जुगलबंदी के लिए बहुत मिसालें कायम कर चुकी है। और जब हम बात करते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, एक साथ माइक के पीछे खड़े होते हैं तो स्टूडियो में जादू बिखर जाता है, और उनकी आवाज़ में जो मासूमियत और जो केमिस्ट्री होती है वो सीधे दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ही एक दूसरे की सुरों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए इसी जोड़ी का जो एक खूबसूरत सा गीत है सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक को।

दोस्तों हम बात करें अलका याग्निक की, तो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो उनकी माँ ने इतनी सख्त ट्रेनिंग दी थी कि उनका जो पहला गाना था 6 साल की उम्र में आ गया। अलका जी को संगीत विरासत में मिली थी क्योंकि उनकी माँ शोभा याग्निक शास्त्रीय गायिका थी। और हमने आपको पहले ही बताया कि अलका जी ने रेडियो के लिए भी गाना शुरू कर दिया था और उनकी माँ बहुत सख्त थी तो वो अलका के रियाज में किसी तरह की कोई ढील नहीं बरतती थी और यही वजह थी कि 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आ गई

और वहाँ जाकर उनकी प्रतिभा को बिल्कुल सही मंच दिया। अब जब अलका जी मुंबई आईं तो महान फिल्म मेकर राज कपूर जी, जी हाँ राज कपूर जी ने उनकी आवाज़ सुनी। राज कपूर जी उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अलका जी को एक खत देकर उस दौर के दिग्गज संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी के पास भेज दिया। राज कपूर जी ने अलका जी की आवाज़ को बहुत अनोखा और बिच्छू के डंक जैसा बताया और वो कहते थे कि उनकी आवाज़ ऐसी है कि सीधे दिल पर असर करती है। दोस्तों एक वाक्य बताते हैं आपको कि अलका जी अमूमन दिन में रिकॉर्डिंग करना पसंद करती थी। एक बार क्या हुआ कि A.R. रहमान साहब रात के समय में काम करने के लिए वो जाने ही जाते थे, तो उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्डिंग हम रात के समय पे करते हैं, फिल्म ताल का गीत, जी हाँ ताल का जो टाइटल ट्रैक था उसकी रिकॉर्डिंग करनी थी। और अलका जी को रात को स्टूडियो में बुला लिया गया। स्टूडियो में बहुत ही कम रोशनी थी और हम आपको बता दें कि रहमान साहब को हल्की रोशनी में काम करना बहुत पसंद है। वहीं अलका याग्निक जी ने बताया कि उस शांत और जादुई माहौल में जब वो गीत उन्होंने गाना शुरू किया तो अपनी ही आवाज़ की गहराई में वो इस कदर खो गई कि ये गाना इतना रूहानी बन गया। तो उस गाने को हम कैसे भुला सकते हैं, लीजिए सुनते हैं ताल फिल्म का ये गीत।

दोस्तों हम बात करें अलका याग्निक जी की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 1989 में शिलोंग के बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी, लेकिन अपने करियर और काम की वजह से दोनों पिछले 35 से भी ज़्यादा सालों से अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। अलका जी मुंबई में और नीरज जी शिलोंग में। बिना किसी विवाद और सिर्फ आपसी समझ और भरोसे के दम पर उनका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता आज भी बेहद मजबूत है। और हम आपको बता दें कि अलका याग्निक जी के नाम में एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने अपनी जादुई आवाज़ में हजारों गाने गाए हैं और वो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जीतने के मामले में टॉप पर आती हैं और पूरे 7 अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। और हम घड़ी की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि वक्त का पता ही नहीं चला दोस्तों, और सुरों का ये सफ़रनामा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। अलका याग्निक जी की आवाज़ ने हमें हंसाया है, रोना भी सिखाया है, सबसे बढ़कर प्यार करना सिखाया है। उनकी आवाज़ कल भी, आज भी और आने वाले दशकों तक गूंजती रहेगी। तो फिलहाल इसी वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए फिलहाल जाने की इजाजत। छोड़े जा रही हूँ आपको अलका और सोनू निगम की इस खूबसूरत आवाज के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। स्टूडियो की घड़ी में रात की 1 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और

0: सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations.

कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर, आवाजें हैं आशा भोसले और मुकेश की।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की।
1: शील शील कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो चोर से है, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

सिवा तुमको। ये खूबसूरत गीत सुना आपने किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए सुनते हैं अगला गीत, एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ में है और आवाज़ें हैं, जी हाँ, हमने आपको बता दिया, किशोर कुमार की फिल्म का नाम है अपराध।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है अपना देश, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

गजरा। गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म उपहार से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी की।

अभी आपने सुना फिल्म पिया का घर का ये खूबसूरत गीत आवाज़ें किशोर कुमार की। लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है दोस्त, आवाज़ें एक बार फिर किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम आपकी कसम। इस गीत के साथ ही फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए गीत सुनहरे कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना

0: पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्तान जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them

0: दोस्तों, इसी खूबसूरत से गीत के साथ है गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक

0: रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्पिरर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maake Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गज़ल सादगी, जी हाँ सादगी अदा हो गई, वाकई बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो गई, लाजवाब जज्बात और बेहतरीन खूबसूरत गज़ल। बढ़ते हैं एक और लाजवाब गज़ल की ओर, और ये गज़ल है बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गज़ल, और पूरा दुख आधा चांद एल्बम खुशबू से एक शानदार बेहतरीन लाजवाब गज़ल, रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ और साथ में सोनाली राठौड़ की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन लाजवाब गज़ल। और ये गज़ल के लिरिक्स यानी जो गीत हैं प्रवीण शाकिर के हैं और संगीत रूप कुमार राठौड़ का। तो आइए सुनते हैं एक और लाजवाब गज़ल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गज़ल। यह गज़ल जितनी भी गज़लें अभी प्ले की हैं वाकई बहुत ही अनमोल गज़ल हैं। और अक्सर अक्सर ये भी देखा गया है कि जो रैंडमली कोई भी गज़ल या गीत है अक्सर वही सुनने को मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक नयापन हो खूबसूरत गीत में भी और कुछ गज़लों में भी। जी हाँ, वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब गज़लों का समावेश बन रहा है। तो अब सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत गज़ल है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, गालिब पार्ट वन से है। आवाज़ शुमोना रॉय विश्वास की है और ये एल्बम 1999 की एल्बम है और शानदार गज़ल है। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन, अनमोल, खूबसूरत गज़ल एक नई आवाज़ के साथ।

बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गज़ल। हालांकि यह गज़ल न जाने कितने जो गायक या उस्ताद हैं गाई होगी, लेकिन इनकी अदायगी, इनके खूबसूरत अंदाज में लाजवाब गज़ल एक बार फिर से आपने सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत गज़ल।

एक और खूबसूरत गज़ल आ रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और सुंदर कोमल, सुंदर कोमल सपनों की बारात, ये टाइटल है इस गज़ल का। एल्बम इशारा, आवाज़ सोनाली राठौड़ की, प्रोडक्शन ईयर 1997। गज़ल कैटेगरी में शानदार गज़ल है और यह गज़ल वाकई बहुत ही सुंदर है। गीत प्रवीण शाकिर के और आवाज़ से सजाया है रूप कुमार राठौड़ ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गज़ल।

जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर, लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर। यह गज़ल वाकई बहुत ही सुंदर है, बस्ती में टाइटल है और इशारा एल्बम से सुंदर खूबसूरत रचना है। आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की और गीत यानी कि गज़ल जिन्होंने लिखी है वो है कैश उल जाफरी और संगीत से सजाया है रूप कुमार राठौड़ ने। तो आइए सुनते हैं एक और अनमोल खूबसूरत गज़ल।

वाह क्या बात है, बेहतरीन लाजवाब गजलें, वाकई बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम रचना, गजल

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, जिनमें आज आपने सुनी थी बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गजलें। गजलों का कार्यक्रम यानी कि गीत गजल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 4 बजने को हैं और अब कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं थिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म, वोकल रेंडिशन बाय अनन्या वेंकटेशन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक म्यूजिक, वोकल बाय रेंडिशन, वोकल रेंडिशन बाय अनन्या वेंकटेशन, वायलिन पर विदुषी जी उमा और मृदंग पर विदुषी वी एम कानन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि। तदनुसार 28 जून 2026 सुबह के 4:53.10 हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे। श्रोताओं, 5 बजे न्यूज इन हिंदी और 5:05 अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योग उज्जाई प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति गीत हम जिंदा हैं सतीश भाटिया के स्वर में। 5:30 का समय है कार्यक्रम स्वर रंजनी का जिसमें आप सुनेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक।

0: पांच बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी

0: पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा की धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयूर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermani, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermani, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team, SIT, to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting 3 alleged members of the racket. Following the incident, the Maharashtra State Council of Examination postponed today's TET examination. A revised date for the test will be announced later. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress business plenary in London. The U.S. military said it struck multiple targets in Iran at the direction of President Donald Trump, continuing a string of attacks that have shaken the war's uneasy ceasefire. In a post on social media, U.S. Central Command said that American military aircraft targeted Iranian military

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योगा है उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद

होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जायी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जायी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जायी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने

के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज का योगा था उज्जाई प्राणायाम और वृक्षासन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हुआ है 5:20 और ये समय होता है देशभक्ति संगीत का। जी हाँ दोस्तों, तो आज सुनवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत, हम जिंदा हैं, सतीश भाटिया द्वारा देशभक्ति गीत। तो आइए सुनते हैं हम जिंदा हैं देशभक्ति गीत।

जी हाँ श्रोताओं, हम जिंदा रहेंगे। जी हाँ, जिंदा रहना अति आवश्यक होता है। एक और भक्ति संगीत, देशभक्ति गीत आ रहा है, आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। श्रोताओं, 5:30 हुए हैं, ये समय होता है कार्यक्रम स्वर रंजनी का, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। आज आप सुनेंगे विपुल कुमार राय द्वारा राग अहिर तोड़ी में